0: राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल। मैं हूं गगन आपके साथ। आज एक खास विषय है जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। इस विषय को आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। एक टीचर, एक गुरु जिसको हम उस्ताद भी कहते हैं, वो हमारी जिंदगी में रोशनी का काम करते हैं। वो हमें उस राह पर लेकर जाते हैं जिस राह की जो मंजिल है बड़ी ही खूबसूरत है। और कहा भी जाता है कि गुरु का जो स्थान है वो भगवान से भी ऊंचा है। गुरु का ज्ञान हमें जीवन में सफलता दिलाता है। और कहते भी हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। जी हाँ, आज ऐसी शख्सियत से हम मिल रहे हैं जो बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, आध्यात्मिक जीवन में भी बड़ा दखल रखते हैं। और ये सारी तमाम बातें आज हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ एक शख्सियत जुड़ रही हैं। आप हैं जिम्स वसंत कुंज दिल्ली के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर रवि के धरजी। तो सर, सुरोश राधा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: कैसे सर आप?
1: बहुत अच्छे, ठीक ठाक, प्रभु की कृपा से सब ठीक है।
0: वेरी गुड सर। उसी ईश्वर से, परमात्मा से मैं यही कामना करता हूँ कि हम सब निरोग रहें। कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि प्रथम सुख है निरोगी काया, दूजा सुख है घर में माया। इसी प्रकार से कई सारे सात आई थिंक सुख बताए गए हैं और यही सारी बातें मैं आपसे जरूर जानूंगा। तो सर, मैं जो देख रहा था, पढ़ रहा था आपके विषय में, मैं देख पाया कि 38 साल का अनुभव है आपका इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। तो मैं आपसे इस सफर के बारे में जानना चाहता हूं कि इस सफर को आप कैसे देखते हैं। सुहाना सफर रहा, इस सफर में बहुत सारी दिक्कतें आई, परेशानियां आई, क्या कहना चाहते हैं?
1: सफर तो सुहाना ही रहा। ये मेरा जीवन से सबसे पहला मेरा जो उद्देश्य था वो यही था कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में आना है और टीचर बनना है।
0: जी,
1: तो ये मेरा सेकंड या थर्ड बेस्ट ऑप्शन नहीं था, ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन था जिंदगी में। क्योंकि, और वो भी बचपन से, जब मैं सैनिक स्कूल गया था, क्योंकि शिक्षा मेरी सैनिक स्कूल में हुई है, तो मुझे आर्म्ड फोर्सेस में जाना था। मैंने अपना NDA भी क्लियर किया था, UPSC एग्जामिनेशन, फिर SSB के लिए गया। तो जीवन की दिशा पहले से ही निर्धारित थी, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये प्रभु को भी पता था और मुझे भी पता था कि मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो शिक्षा ही है।
0: जी,
1: तो इसलिए उसके बाद जब मैं कॉमर्स कॉलेज गया तो आई वॉज अ टॉपर इन द यूनिवर्सिटी, मगर उसके बावजूद, हालांकि मैं BCOM स्टूडेंट था, तो हो सकता था कि मैं कहीं और निकल जाता, किसी और व्यवसाय में या किसी और प्रोफेशन में चला जाता। और ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज भी आई, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जॉब मिली, अलग अलग ऑप्शन एक कंपनीज में मिली। तो मगर मेरा, क्योंकि पहले से ही डिसाइडेड था कि शिक्षा में ही आना है, तो इसलिए मैं शिक्षा के क्षेत्र में ही आया। और मैंने जीवन भर इसको बहुत एंजॉय किया, क्योंकि शिक्षा से बढ़ के कोई चीज नहीं।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और शायद यही एक वजह है, मेरे मथुरा में कहा जाता है कि गुरुजी दंडौत, गुरुजी पाए लागे। अक्सर हमने देखा है कि लोग चरण स्पर्श के अलावा दंडौत, यानी कि वो दंडवत भी करते हैं, क्योंकि गुरु ही है जो हमारी जिंदगी में परिवर्तन लाता है, एक राह दिखाता है और एक अच्छा इंसान हमें बनाता है।
1: बिल्कुल, जो दंडवत प्रणाम है
0: जी,
1: में एक रहस्य छुपा हुआ।
0: प्लीज प्लीज बताइए सर।
1: जो जी, बहुत बड़ा रहस्य है। जब आप दंडवत प्रणाम करते हैं, दंडवत मतलब एक स्टिक की तरह आप फ्लैट होके गिरते हैं के चरणों में गिरते हैं। जो चरण होते हैं, जो हमारे पांव होते हैं, वो बेस्ट ट्रांसमीटर ऑफ एनर्जी।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। इसी बात पर मैं भी आऊंगा सर। जी जी जी,
1: आपके जो बाल होते हैं सिर के,
0: हाँ,
1: वो बेस्ट रिसिपिएंट ऑफ एनर्जी होता है।
0: क्या बात।
1: तो जब आप गुरु के चरणों में अपना सिर रखते हैं, तो आप गुरु अपनी जो चेतन
0: ऊर्जा
1: होती है,
0: हाँ,
1: उसको आपकी तरफ
0: ट्रांसफर कर रहे
1: करते हैं, आपको देते हैं, और आपकी उसमें जो आध्यात्मिक यात्रा है सुगम करते।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा आपने एक उत्तर दिया। मैं समझता हूँ कि जो हमारे श्रोता हैं इस बात को जानेंगे, समझेंगे। मैंने आपसे कहा कि सर मैं भी इसी बात पर आऊंगा, क्योंकि मैंने जो देखा है, पढ़ा है, और इसके बारे में विस्तार ब्रेक के बाद जरूर जानूंगा। लेकिन मैं इशारा कर देता हूँ अपने लिसनर्स को कि कहते हैं कि जब हम चरण स्पर्श करते हैं और मस्तिष्क तक लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है जो अभी आपने हमें बताया कि ऊर्जा का आदान प्रदान होता है।

सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही होती है। लेकिन सर आज का जो समय है बहुत ध्यान देने वाली बात है कि चरण स्पर्श की जो परंपरा है वो खत्म हो गई और घुटना स्पर्श हो गया है। इस बारे में मैं आपसे जरूर जानूंगा कितना सही है कितना गलत है और अपनी संस्कृति को हम क्यों भूल रहे हैं। सो लिसनर्स यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ये जो बातों का सिलसिला है बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि एक विद्वान क्योंकि एक एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप हैं प्रोफेसर डॉक्टर रवि के धरजी जो कि जिम्स वसंत कुंज दिल्ली में डायरेक्टर हैं और 38 साल का अनुभव है। इस विषय पर जरूर जानेंगे मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरशादन 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरी यानी गगन के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में हैं जिम्स वसंत कुंज के आप डायरेक्टर हैं प्रोफेसर डॉक्टर रवि के धर सर। सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: सर। जो बातों का सिलसिला आपने शुरू किया उसमें मुझे एक बात याद आ गई थी, मैंने बात रखी आपके सामने। चूंकि मीडिया पर्सन होने के नाते जो हम आप लोगों से सीख रहे हैं, क्योंकि आप भी मीडिया स्टूडेंट्स को बनाते हैं, उनको बहुत कुछ सिखाते हैं, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है सर, हम समाज में ये देखते हैं कि चरण स्पर्श की जो कला है, जो खूबसूरती है, वो कम हो गई है। लोग घुटना स्पर्श कर रहे होते हैं। जी,
1: उसका जो कारण है, एक तो ये तो एक घटना है, एक इंस्टेंस है जिसके जो दर्शाता है कि किस प्रकार से हम अपनी जो विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, उससे हम कितने कट गए हैं। एक्चुअली जो जब हम कल्पना करते हैं या समझने का प्रयास करते हैं अपनी जो संस्कृति को, जो इसमें प्रिजर्व्ड है हमारे हिंदू धर्म में जिसको हम फॉलो करते हैं, इससे हम बिल्कुल कट चुके हैं। हम जरूर अपना गर्व करते हैं कि हम हिंदू हैं, हम कहते भी हैं गर्व से को हम हिंदू, मगर धर्म का जो आधार है वो है सनातन धर्म।
0: क्या बात।
1: और जो सनातन धर्म है वो किसी मजहब से जुड़ा नहीं है, किसी पंथ से नहीं जुड़ा है। और यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, मतलब क्योंकि हम बिल्कुल कट चुके हैं अपनी विरासत से, इसलिए हमको बेसिक्स भी नहीं पता।
0: बहुत खूबसूरत।
1: हम अपने जो रिलीजन होता है या जिसको हम पंथ कहा करते थे, और पंथ जो होता है वो सांस्कृतिक और व्यवहारिक होता है।
0: क्या बात।
1: और व्यवहारिक और सांस्कृतिक जो है वो तो दिखता है, वो दिखने में किस प्रकार से हम क्रियान्वयन करते हैं अपनी सोच का और अपनी विचारधारा का।
0: जी,
1: जो विचारधारा और सोच है इसके पीछे जो छुपी है हुई है वो सनातन धर्म है। और जो सनातन धर्म है उसको हमें इससे अलग रखना चाहिए। जब हम हिंदू धर्म, ये हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू पंथ है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे मतभेद भी हुए हैं। कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई सिख है, कोई बुद्ध है, कोई जैन है, मगर जब हम इनकी इवन हम जब गुरबानी में जाते हैं तो वहाँ पे क्लियरली गुरु नानक देव जी कहते हैं मने मग न चले पंथ, मने धर्म सेती संबंध। सो जब गुरु नानक देव जी पंथ की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जो एक एनलाइटेंड माइंड होता है, जो
0: प्रकाशमान
1: शक्ति से जागृत अवस्था में जो सोल होती है, आत्मा होती है, वो किसी भी पंथ के निर्धारित जो होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन से बाउंड नहीं होता। तो फिर वो बाउंड किससे होता है? अगर वो कहते हैं कि बाउंड वो सिर्फ धर्म के बंधन से होते हैं।
0: जी,
1: तो क्लियरली गुरु नानक देव जी भी यहाँ पे अंतर लाते हैं पंथ और धर्म के बीच में, क्योंकि सनातन का मतलब इटर्नल, धर्म हो गया प्रिंसिपल्स, जो प्रिंसिपल्स ऑफ बैलेंस, हार्मनी, लव, कंपैशन, ये है प्रिंसिपल्स। और ये कुदरत में, प्रकृति में,
0: जी,
1: ये एम्बेडेड है,
0: विद्यमान है।
1: यही हमारे ऋषि मुनियों ने इसको पहचाना कि इसमें प्रकृति में क्या क्या नियम है, जैसे साइंस ने ढूंढे,
0: जी,
1: तो हमारे ऋषि मुनियों ने भी ढूंढे, और इसी को यूज करके, इन्हीं के आधार पे उन्होंने अपने अंदर वो सब आयाम ढूंढे जो कि विजिबल नहीं है, दिखते नहीं है, और इस प्रकार से उन्होंने फिर कहा अहम ब्रह्म अस्मि। तो ये एक साइंस है, एक विज्ञान है, एक प्रिंसिपल है, ये विचारधारा है, एक विजन है। और ये विजन किसी की भी संपत्ति, किसी वर्ग की संपत्ति नहीं है,
0: नहीं।
1: ये कट अक्रॉस करता है सब रिलीजियस कैटेगरीज को। और अगर हम सनातन धर्म को समझ लें, जो हमारा मूल है, आधार है, तो इस देश में कभी भी कम्युनल डिस्टर्बेंसेस नहीं होंगे।
0: बहुत अच्छा।
1: सब लोग समन्वय में रहेंगे। यहाँ तक कि अगर आप इस्लाम में भी जाएंगे, क्रिश्चियनिटी में भी जाएंगे, क्योंकि मैंने क्रिश्चियनिटी का भी अध्ययन किया है, तो वहाँ पे भी आप यही मूल सिद्धांत आपको मिलेंगे
0: जी।
1: तो अंतर कहाँ है? अंतर रिलीजन के लेवल पे है, ना कि सिद्धांतों के लेवल पे। जो मूल सिद्धांत है
0: वो सबके एक है जी,
1: वो सबके एक है, मगर अभिव्यक्ति अनेक है। और क्योंकि हम उससे कट गए हैं तो दंडवत प्रणाम क्या, हम सब कुछ भूल चुके
0: सब कुछ भूल चुके हैं सब
1: पता
0: कुछ
1: कि हमारे वेदों में क्या कुछ नहीं है। हमारे वेद जो है उनमें इतना ज्ञान है, मगर आप किसी से भी पूछिए, न वेद का पता है, न उपनिषद का पता है, इवन भागवतम का किसी को नहीं पता है। भागवतम में क्या ज्ञान है, क्या ज्ञान की सरिता उसमें बह रही है
0: जी,
1: उससे भी वंचित है। हम सिर्फ ऊपर ऊपर से एक लिप सर्विस कर रहे हैं, हम कर्म कांड में रिचुअल में फंस गए हैं। और भागवतम इज हाईली क्रिटिकल ऑफ रिचुअलिज्म, हम उसी को धर्म समझ बैठे हैं।
0: ठीक है,
1: ये हमारी अवस्था, उसका कारण है कि हमारी शिक्षा प्रणाली, शिक्षा पद्धति जो है वो अंग्रेजों ने आके बिगाड़ दी। उन्होंने हमें इस ज्ञान से वंचित कर दिया, ये कह के कि संस्कृत जो है कर्मकांड की भाषा है, आप पंडित बन जाओगे, आप रिलीजियस हो जाओगे, आप प्रोग्रेसिव नहीं रहोगे, सुपरस्टिशियस बन जाओगे। तो ये तो रिलीजन के साथ एसोसिएटेड चीजें थी, सनातन धर्म के साथ नहीं है एसोसिएटेड। सनातन धर्म तो अपने में एक साइंस है,
0: बहुत
1: तो और संस्कृत हमने छोड़ दी, तो इसलिए हमको पता ही नहीं है कुछ। हमारे जो पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, हमारे यहाँ कवि किसको कहा जाता था? कवि सीयर पोएट होता था, जो देख सकता है। इसलिए हम फिलॉसफी वर्ड नहीं यूज करते, हम दर्शन वर्ड यूज करते,
0: दार्शनिक।
1: दर्शन का अर्थ होता है देखना,
0: देखना
1: मतलब देख के हम सत्य की अभिव्यक्ति करते थे। हम कंस्ट्रक्शन नहीं करते थे, थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्शन, थ्योरी बनाएंगे, थ्योरी को फिर टेस्ट करेंगे। हम देखते थे, देखने के आधार पे हम प्रत्यक्ष देख के फिर हम कहते थे ये सत्य है। जिस प्रकार हम आंखों से देखते थे, हम वो अपने मन की आंखों से, अंदर जो चैतन्य शक्ति से, चेतना से हम अनुभूति करते थे, फिर सत्य की व्याख्या करते।
0: बहुत खूबसूरत, ठीक है सर।
1: ये सब चीजें हम वंचित हो गए, हमारी शिक्षा पद्धति गिर गई।
0: जी जी, ये सोचना पड़ेगा हम सबको लिसनर्स कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, और दिशा अगर हमारी गड़बड़ हुई तो नो डाउट कि हमारी दशा बिगड़ जाएगी। एक छोटा सा विषय मैंने उठाया, उस पर सर ने जो व्याख्या की, बहुत खूबसूरत व्याख्या की है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर ने जिक्र किया वेद उपनिषद के बारे में, अच्छी बात है अगर आपको पता है, नहीं पता तो प्लीज उनके बारे में जानिए। लेकिन मैं एक और बात रखना चाहूंगा सर इसके विषय में, मैं आपसे ब्रेक के बाद जरूर जानूंगा, कि दूसरों का सम्मान करो, बड़ों का अदब करो, छोटों से प्यार से बोलो। स्कूल कॉलेजेस के बाहर हम देखते हैं तो ये प्यार किस रूप में है, किस दिशा में है? वहीं स्मोकिंग भी कर रहे होते हैं, उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं, गाली गलौज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि शायद ये आम भाषा है, यही हमारी भाषा है। लेकिन वो इस बात को शायद ध्यान रखते हैं कि मुझे अपने मम्मी पापा या भाई बहनों के सामने नहीं बोलना है। लेकिन जब कोई दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं या टीचर भी पास से गुजर रहा होता है, वो अदब भी कहीं ना कहीं हम भूल चुके हैं। तो अगर यही हालत रहे तो जिस तरीके से विश्व गुरु की हम बात करते हैं, तो शायद कहीं हम पिछड़ ना जाएं, क्योंकि भारत एक युवाओं का देश है और इसके बारे में हमें सोचना बहुत जरूरी है। और इसी पर बात करने के लिए यूं समझ लीजिए कि आज हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर डॉक्टर रवि केधर जी, जो कि 38 साल का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा अनुभव है। आप डायरेक्टर हैं जिम्स वसंत कुछ दिल्ली में। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम आपको मिलते हैं। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं गगन, आपके साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं आप हैं डायरेक्टर जिम्स वसंत कुंज दिल्ली से, प्रोफेसर डॉक्टर रवि केदार जी, जो कि बहुत अच्छी अच्छी बातें आप हमें बता रहे हैं। तो सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: सर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो बातों का सिलसिला है यूं ही चलता रहे, लेकिन समय सीमा का मुझे ख्याल रखते हुए मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, जो मैंने आपसे बात रखी थी ब्रेक पर जाने से पहले, आपने बहुत गहराई वाली बातें की, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है इस तरह की बातें को सुनने में, समझने में, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक विकास हो रहा होता है। लोग किस दिशा में जा रहे हैं, स्टूडेंट्स किस दिशा में जा रहे हैं, चूंकि आप एक विद्यालय में हैं, एक विश्वविद्यालय में हैं, एक इंस्टीट्यूशन में हैं, हम भी शारदा विश्वविद्यालय में हैं, ये कल्चर हम देख रहे हैं। तो सर, मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि यूथ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या तो वो सोशल मीडिया के जरिए समझ पाता है या समझ नहीं पाता है, और एक नशा जो है वो नशा स्मोकिंग है, नशा जबकि पढ़ाई का हो सकता था, नशा सिर्फ प्यार का हो सकता था, नशा अदब का हो सकता था। तो ये जो कल्चर चेंज हुआ है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं और कैसे वो अपने व्यक्तित्व में शिक्षा के माध्यम से निखार ला सकते हैं?
1: इसमें सबसे पहले तो जो इसका मूल कारण ये है कि बच्चे को ना घर पे कोई संस्कार दे रहा है, ना कॉलेज में दे रहा है।
0: जी,
1: कॉलेज में हमारी फंक्शनल एजुकेशन हो गई, क्योंकि मैकॉले ने यही सिस्टम एक इंट्रोड्यूस किया, उनको लेबर चाहिए थी, उनको बाबू चाहिए थे, और अभी तक हम उसी शिक्षा पद्धति को चला रहे हैं। तो यहाँ पे सांस्कृतिक और फिलोसॉफिकल एजुकेशन इंसान को नहीं हम बनाते, हम एक रिसोर्स को बनाते हैं। मैनेजमेंट में हम इसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं, हमने ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन रिसोर्स बना दिया है। तो इसलिए उसको सिर्फ फंक्शनल स्किल्स क्या होनी चाहिए, कैसे नौकरी पैसे कमाएगा, कैसे जिएगा, तो ये हम हमारा सारा जो घूम रहा है चक्कर, वो एक ही धुरी के इर्द गिर्द घूम रहा है, वो है कि किस तरह से आप अपना सर्वाइवल एंश्योर करोगे। मगर उस सर्वाइवल जिसका है, उस व्यक्ति का सशक्तिकरण कैसे होगा, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, ना घर पे ना शिक्षा संस्थान में। घर पे पेरेंट्स के पास समय नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर है, सुबह पेरेंट्स निकल जाते हैं 8 बजे, रात को 8 बजे वापस आते हैं, तो बच्चों के लिए उनके पास समय नहीं है, तो उनको मेड संभाल रही है या क्रेश में जा रहे हैं। तो ये संस्कार जो मिलने चाहिए थे बच्चों को मिलने हैं। गुरु नानक देव जी की बात मुझे याद आती है, गुरबानी में वो कहते हैं कि दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक होता है मनमुख, एक होता है गुरुमुख। हम जो आजकल जो हमारी सारी जो शिक्षा पद्धति है वो फंक्शनल एजुकेशन दे रही है, स्किल बेस्ड एजुकेशन दे रही है, या थ्योरी भी दे रही है, तो वो भी इसीलिए है कि रोजी रोटी कैसे कमानी है। तो उसके कारण वो सारा उसका जो बच्चे का जो ध्यान है वो बाहरी संसार के ऊपर केंद्रित है, तो वो मनमुख हो गए हैं। जो माइंड है वो मन है, मन जो है वो कनेक्टेड है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। हमारे सनातन धर्म में जब आप शिव जी को देखते हैं, उनकी मूर्ति को देखते हैं, तो उनके सिर पे चंद्रमा होता है, चंद्रमा जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, उसकी अपनी लाइट नहीं होती और वो ठंडा होता है। तो इसी प्रकार आपका जो मन है, इसके अपने विचार नहीं होते, ये सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है विचारों को, ये अपनी उपज नहीं होती, विचार इसके अंदर से नहीं निकलते, या तो संसार से, बाहरी संसार की जो सेंसरी परसेप्शन से, जो इंद्रियों से उसको सेंसेशंस मिलती हैं, उनसे उनके आधार पे वो अपने विचार बनाता है। जो गुरुमुख होता है वो बाहरी संसार से न कनेक्ट करके अपने आप को अपने हृदय के में जो वास करते हैं, श्री कृष्ण कह दीजिए, ब्रह्म कह दीजिए, कुछ भी, अल्लाह कह दीजिए, खुदा कह दीजिए, जो भी अंदर जैसे भी आपकी संस्कृति है उसके अनुसार जो अंदर वास करता है, उसकी तरफ
0: कनेक्ट होने की कोशिश करता है,
1: कनेक्ट करता है, तो उससे क्या होता है अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ पे चाहे क्रिश्चियनिटी हो, सेक्रेड हार्ट कहते हैं क्रिश्चियनिटी में, हमारे यहाँ पे साइकिक हार्ट कहा गया है सनातन धर्म में, तो चेतना का वास यहाँ पे होता है एक्चुअली इंटरनल, तो वहां से वो कनेक्ट होता है, तो उसके विचारों की श्रृंखला वहां से निकलती है और रिफ्लेक्ट माइंड में होती है, तो माइंड परसीव करता है इनर रियलिटी। जो इनर रियलिटी से जब आप इनर कंट्रोलर से आप कनेक्ट होते हैं, तो फिर आप जो बाहरी संसार जो आपका प्रोजेक्शन है, आप उसके मास्टर बन जाते हैं। श्री अरविंदो कहते हैं पहले स्वराट फिर सम्राट, जो स्वराट बना वही सम्राट बनेगा। सम्राट आप ऐसे नहीं बन सकते, आप बाहर के संसार को बदलने की कोई चेष्टा कीजिए नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत विस्तृत है। आप अपने अंदर की दुनिया जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है। आप उसके अंदर अपनी चेतना में अगर रूपांतरण लाएंगे, उसमें क्वालिटेटिव चेंज लाएंगे, उसमें जब क्वालिटेटिव चेंज आएगा आपका बाहरी संसार अपने आप उसमें एक कायाकल्प आएगा, वो चेंज हो जाएगा।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
1: और इसी के ऊपर लोगों ने कितनी किताबें लिख ली, द सीक्रेट वगैरह।
0: ये जी,
1: क्योंकि अंततः आपके अंदर का जो संसार है, क्योंकि हम इसीलिए कहते हैं ना अहम ब्रह्मा आई एम द लिमिटलेस सेल्फ, तो इसलिए शिक्षा पद्धति का ये अभाव है। शिक्षा पद्धति इसको टारगेट नहीं कर रही, इसको अग्रेस नहीं कर रही। तो हमें ये कंपलसरी कर देना चाहिए कि जो साइंस ऑफ वेदास है, साइंस ऑफ उपनिषद है, ये साइंस है, ये कोई रिलीजन नहीं है, ये मंबो जंबो नहीं है, ये कोई जादू टोना नहीं है,
0: ठीक है,
1: ये ज्ञान है मनुष्य के सशक्तिकरण का।
0: बहुत अच्छा।
1: आप वहाँ पे सशक्त हो जाएंगे फिर आप संसार में कर्म कीजिए।
0: जी जी।
1: आपका कर्म, आप अपनी संकल्प शक्ति से चीजें कर सकते हैं,
0: ठीक है,
1: संकल्प शक्ति से।
0: मैं इसी जी
1: कहता है कि वो जो कर्म आप एफर्टफुल एक्शन जो करते हैं वो व्यर्थ है,
0: कहने का एक आशय यही है। अगर इस बात का निचोड़ निकाला जाए, सर ने जो जिक्र किया कि हमारे जो संस्कार हैं, जो हमने अपने बड़े बुजुर्गों से कमाए हैं, जो हमने उनको अडॉप्ट किया है, वही अगर हम अपने बच्चों में दे पाए तो निश्चित तौर पर उनके व्यक्तित्व में निखार आएगा, और व्यक्तित्व में जब निखार आएगा तो वही एक बच्चा आगे चल के देश के निर्माण में अपना योगदान देगा। बात हुई साधने की, मैं कहूंगा कि अगर आप अपने आप को साध रहे हैं, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है, अंदर जो क्या है, जो एक चेतना है, उससे आपने कनेक्ट अपने आप को कर लिया, तो निश्चित तौर पर जहां संकल्प होगा उसमें कोई विकल्प आ ही नहीं सकता और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ब्रेक के उस पार आएंगे और बात करेंगे, सर ने जो एक इशारा मुझे किया है कि एजुकेशन पॉलिसी, शायद मैं समझ पा रहा हूं या नहीं समझ पा रहा हूं, इसके बारे में हम सर से जरूर जानेंगे ब्रेक के उस पार, कि पुरानी पॉलिसी और नई पॉलिसी में क्या फर्क है और क्या हम बेहतर कर सकते हैं। वर्तमान समय में कुछ चीजें हो भी रही हैं, और अगर इस तरीके से इंसान अपनी जीवन में शामिल कर ले, एक विद्यार्थी अपने जीवन में अच्छी अच्छी बातों को शामिल कर ले, तो निश्चित तौर पर उसकी जय जयकार होती है। और कहते भी हैं कि यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, लेकिन जो अच्छा करता है तो उसकी जय जयकार जरूर होती है। वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, सो कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। और स्टूडियो में आज जो खास मेहमान है, फोनिक हमारी बातें हो रही है, आप डायरेक्टर है जिम्स वसंत कुंज दिल्ली में, प्रोफेसर डॉक्टर रवि के धर सर। तो सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। जिस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं, लाइफस्टाइल के बारे में, हम बात कर रहे हैं व्यक्तित्व के बारे में, हम संस्कारों के बारे में बात कर रहे हैं, एक विद्यार्थी को किस तरीके से अपनी जिंदगी में चार चांद लगाने चाहिए, यही सारी बातें हम कर रहे हैं। हमारे साथ एक एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं प्रोफेसर डॉक्टर रवि केदार सर। आप डायरेक्टर हैं जिम्स वसंत कुंज दिल्ली से। सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: सर। आपने जो एक बात कही कि ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे, शिक्षा हमारे जीवन में एक परिवर्तन ला सकती है, ये सच बात है। और हमारे इसमें संस्कार मिल जाएं, इसमें अदब मिल जाए, कुछ आध्यात्मिक बातें मिल जाएं, तो नो डाउट एक जिंदगी में बहुत अच्छा चेंजेस आते हुए हमें नजर आएंगे। सर मैं इस बात को यूं कहूं कि, या मैं आपसे समझना भी चाह रहा हूं कि पुराने समय की बात करें और अब वर्तमान समय की हम बात करें, शायद एजुकेशन पॉलिसीज थी पहले, कुछ अब आई हैं, तो कितना फर्क आप महसूस करते हैं, क्या बदलाव महसूस करते हैं, क्या सही था क्या गलत है, आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? सर
1: मैं एक तो जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कुछ थोड़ा बहुत बदलाव तो है। जैसे उन्होंने बात की है कि हमारा जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसको हमें रिवाइव करना चाहिए और उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात कही गई है, मगर इसमें जो मैं चाहता हूँ वो ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि जब हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं, हमें ये समझना चाहिए कि उस समय जो ज्ञान जो लिखा जाता था किताबों में वो पोएटिक रूप में लिखा जाता था। मतलब पोएटिक जब मैं कहता हूँ मतलब सिंबॉलिक, सिंबल्स के द्वारा, क्योंकि उस युग के लोग अलग थे, संस्कृति उनकी अलग थी, उनका समझने का तरीका अलग था। वो सिंपल लोग थे, वो पोएट्री की जो सिंबॉलिक भाषा है उसको सहज ही ढंग से समझ लेते थे। हम जिस युग में रहते हैं वो साइंटिफिक युग है, रैशनल युग है। इस युग हम प्रोजेक लोग हैं, हम प्रोज वाले लोग हैं, पोएट्री वाले लोग नहीं है। हमें चाहिए कि उसी ज्ञान को अब साइंटिफिक वे में हमें पेश करने की आवश्यकता है। अब साइंस ने इतनी प्रगति कर ली है कि अब इस साइंस के प्रगति के आधार पे हम बहुत अच्छे से अपनी जो वेद और उपनिषद है उनको साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर उनको हम साइंटिफिकली एक्सप्लेन करते हैं तो उससे बहुत हमारे जो लाभ होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे कहा गया है जहाँ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगी वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगी हमारे यहाँ पे क्योंकि एक भ्रांति रही है स्पिरिचुअलिटी की तरफ गया हाँ, साधु बन जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। ये भ्रांति मन से निकाल लीजिए, क्योंकि ये जो है ये करप्शन है हमारी थॉट का, क्योंकि बीच में जब क्योंकि हम वैदिक ज्ञान से कट चुके थे और बीच में जो अलग अलग जो मूवमेंट्स आए, रिवाइवल्स आए, उनमें संन्यास का बहुत ही ज्यादा फोकस था। उससे हमें लगा कि जो इस तरफ जाएगा तो वो सन्यासी बन जाएगा, साधु बन जाएगा, वो संसार छोड़ देगा। मगर अगर आप वैदिक ऋषि देखो वो सब हाउस होल्डर रहे हैं, वो गृहस्थ थे सारे हमारे। और जो संन्यास और वानप्रस्थ वो तो सिर्फ एक दो आश्रम है हमारे जीवन में, बाकी ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम वो दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है।
0: जी।
1: तो वेद कभी नहीं कहता कि आप अगर इन सब चीजों का अध्ययन करते हो तो आपको साधु बनना है, क्योंकि वेद जिस बात की, जिस ज्ञान की चर्चा करता है वो इंटेग्रल नॉलेज है। वो ये नहीं है, उसमें डिफरेंशिएशन नहीं करता कि ये आध्यात्मिक ज्ञान है और ये सेक्युलर ज्ञान है कि अर्थली ज्ञान है, ये आपको रोटी कमाएगा। वो दोनों को इकट्ठे लेता है, उसमें समन्वय है दोनों का, क्योंकि वो ये इसको कंटिन्यूअम मानता है।
0: जी।
1: और इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ,
0: तंत्र
1: में जब हम बात करते हैं पांच तत्वों की बात करते हैं कि ये संसार पांच तत्वों से बना है, पृथ्वी जल
0: वायु
1: अग्नि वायु और आकाश। ये हम क्या समझते हैं, हम इसका मूल मतलब लिटरल मीनिंग ले लेते हैं। ये सिंबल्स है, पृथ्वी का अर्थ पृथ्वी नहीं है यहाँ पे, पृथ्वी का मतलब है सॉलिड, जो फिजिक्स में हम पढ़ाते हैं
0: जी,
1: थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस। तो पृथ्वी का मतलब है सॉलिड, जल का मतलब है लिक्विड, और जो वायु है उसका मतलब है गैसेस। ये तीन स्टेट्स है मैटर की, और ये स्टेट्स चेंज किससे होते हैं, अग्नि से। इसलिए पृथ्वी जल अग्नि वायु और जब उसको और हीट देंगे लिक्विड को तो वो क्या बन जाएगा, आकाश, क्योंकि मॉलिक्यूल इतने दूर हो जाएंगे कि वहां पे सिर्फ स्पेस रहेगी, सिर्फ अंतरिक्ष रहेगा, वहां कुछ नहीं रहेगा। तो ये सारा साइंटिफिक है,
0: साइंटिफिक
1: हमें समझने की। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर हमें शिक्षा पद्धति को बदलना है और अपने देश को प्रगति की राह पे अग्रसर करना है, सबसे पहले हमें इनका साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन कराना चाहिए सारे हमारे ज्ञान का, और साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी और साइंटिफिक वे में उसको एक्सप्लेन जब हम करेंगे
0: जी।
1: तो हम पाएंगे कि ये ज्ञान हमारे लिए इतने अनलॉक करेगा सीक्रेट्स जिससे कभी आपको बीमारी नहीं होगी।
0: क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी अच्छी बातें सर।
1: आप योग, राजयोग, इनको सबको हमने अलग अलग कर दिया है। हम फ्रैगमेंटेशन में चले गए, हम इंटीग्रेशन में नहीं रहे, जबकि वेद इंटीग्रेशन पे फोकस करता है ना कि फ्रैगमेंटेशन पे। और जितना हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम पाएंगे कि हम अगर हठयोग करेंगे उसी में राजयोग भी हो जाएगा, उसी में आपकी समाधि भी हो जाएगी
0: और सारे काम हो जाएंगे,
1: आपको शक्ति देगा इस संसार में काम करने का। और देखिए एक सुंदर शब्द आता है वेद में, वो शब्द है आर्य। आर्य का शब्द, आर्य शब्द का जो अर्थ है वो महर्षि अरविंद ने बखूबी समझाया है। आर्य किसी रेस का नाम नहीं है, ना किसी भाषा का नाम है। आर्य उस व्यक्ति का नाम है जो कि अपने चैतन्य शक्ति से कनेक्टेड है, जिसमें चैतन्य शक्ति का वास है, क्योंकि उसमें चैतन्य शक्ति है। वो शक्ति जो है न्यूक्लियर एनर्जी से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो शक्ति है।
0: क्या बात?
1: और ऊपर चैतन्य भी है, कॉन्शियस भी है। तो उसमें जब एक कोई संकल्प बनता है, एक इंटेंशन बनता है, तो वो उसमें शक्ति इतनी जाती है उस संकल्प में कि वो क्रियान्वित हो जाता है, एकदम से वो रियलाइज हो जाता है
0: जी।
1: तो ऐसे व्यक्ति का संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता।
0: क्या बात?
1: तो ऐसे व्यक्ति को आर्य कहा गया।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
1: तो ये सब चीजें हम भूल चुके हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है, हम बच्चे बन गए हैं, पूरा अज्ञान के अंधकार में हम घूम रहे हैं। और पश्चिमी सभ्यता और पश्चिमी ज्ञान जो है वो तो बहुत कुछ नहीं है, टिप ऑफ द आइसबर्ग है जब हम उसको कंपेयर करते हैं वेदों के ज्ञान के साथ। मगर हम उसी में डूबे हुए हैं, वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी को डील करता है, जबकि हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों को लेते हैं और उनका इंटीग्रेशन करते हैं
0: जी। जी,
1: क्योंकि अगर आप एक व्हील को देखें, व्हील के अंदर जो हब होता है, धुरी होती है उसके, जिसके एक्सिस होता है, जिसके इर्द गिर्द वो पहिया घूमता है, वो न मोशन में होता है न रेस्ट में होता है, वो ट्रांसेंडेंटल होता है
0: जी। जी,
1: जिसको हम कहते हैं गुणातीत, गुणातीत परा पर ब्रह्म, वो उस अवस्था में होता है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा।
1: और इर्द गिर्द जो घूम रहा है पहिया, वो आपका प्रकृति को दर्शाता है, उसमें स्पेस भी है और समय भी है, काल भी है, इसलिए उसको काल चक्र कहा गया।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छी आपने।
1: दोनों इकट्ठे हैं, हम क्या करते हैं उसको अलग कर देते हैं कि प्रभु अलग है, व्यक्ति अलग है। ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ हम बार बार हम कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, मतलब सर्वव्यापी का अर्थ तो समझो,
0: समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बिल्कुल सही आपने कहा सर कि उस अर्थ को समझना पड़ेगा। और लिसनर्स, मैं बस यही कहूंगा कि इस बात का अगर एक सार निकाला जाए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ, संस्कारों के साथ, संकल्प के साथ, अपने ज्ञान को अर्जित करते हुए, उसमें इजाफा करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाइए। और अगर आपको ऐसे गुरु मिल जाए मिस्टर रवि के धर सर जैसे, तो निश्चित तौर पर उनके आप पैर पकड़ लीजिए, जानिए, समझिए, उनकी संगत करिए, और वहां जब आप बैठे रहेंगे तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा जरूर। ये संस्कार रहे हैं भारत के, ये परंपराएं रही हैं भारत की, क्योंकि आपको वो खाली पात्र रखना पड़ता है, आपको झुकना पड़ता है। लेकिन जिस व्यक्ति में, जिस स्टूडेंट्स में, अगर कहते ना आम भाषा में कहा जाए, ऐठ आ गई कि हाँ गुरु जी, हाँ टीचर जी, मुझे सब कुछ आता है, और आप अदब ना करेंगे, सम्मान ना करेंगे, तो मैं समझता हूं कि आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान की खूबसूरती यही रही है कि हिंदुस्तान विश्व गुरु था, विश्व गुरु, विश्व बंधु बन सकता है, हम आगे चल सकते हैं और हम अच्छा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर अच्छा करेंगे, क्योंकि हम युवाओं का देश है। और अधिक जानकारी के लिए यूं कहूंगा कि सर का एक यूट्यूब चैनल है, वहां पर आप विजिट कर सकते हैं, मिस्टिक मरीनर, कहा जाए तो रहस्यवादी नाविक। तो इस तरीके से बहुत ज्ञान विज्ञान की बातें, जिंदगी को नजदीक लेकर जाने वाली बातें यहां आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सर आखिर में मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, आपने हमें समय दिया, फोनिक हमारी आपसे बहुत अच्छी चर्चा रही। निश्चित तौर पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो लिसनर्स हैं, इस बात का लाभ उठाएंगे अपनी जिंदगी में, अगर वो परिवर्तन ला सके तो हमारी चर्चा जरूर सफल होगी। सर
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे अपने स्टूडियो में निमंत्रण देने का, और आपका और आपके
0: श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सो ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, फिर कहूंगा प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए, और ट्रैफिक के नियम कायदे कानून का अच्छी तरीके से पालन करिए, क्योंकि घर पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा है। फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
6: Suno Sharda.
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है बिंदास सुबह बिंदास बोल। जी हाँ, आज स्टूडियो में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक खूबसूरत बहुत ही खूबसूरत टैलेंटेड एक गेस्ट मेरे साथ जुड़ रही है, तो चलिए मैं

0: यस डॉक्टर है, एनेस्थियोलॉजिस्ट, करेक्ट बोला मैंने आपके आई थिंक, और उसके बाद ये फील्ड, इन दोनों को किस तरीके से आपने बैलेंस करके रखा है?
1: देखिए ताज, हमने हर लड़की का शौक होता है कि उसके सर पे एक ताज सजे
0: जी,
1: और मेरा भी ऐसा ही ख्वाब था। हम लोग जब भी टीवी पर मिस वर्ल्ड मिसेस वर्ल्ड देखते थे, मिस यूनिवर्स मिसेस यूनिवर्स देखते थे, तो अपना भी मन करता था कि कभी कभी ऐसा मौका मिले कि ये ताज हमारे सर पर भी चमके। तो यही एक ख्वाहिश थी, यही एक तमन्ना थी, लेकिन शुरू में ये नसीब नहीं हुआ। पर हाँ, जब मौका मिला तो मौका हमने हाथ से जाने नहीं दिया। और जैसे ही पहला मौका मिला 2017 में मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2017, जो कि उदयपुर में हुआ था राजस्थान में, तो वहां पर मुझे मिसेस गुजरात का टाइटल मिला था एंड मिसेस इंटेलिजेंट का सब टाइटल मिला था
0: जी।
1: फिर बात करते हैं 2018 की, तो एम्प्रेस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट किया था, उसमें भी मैं सिटी एम्प्रेस, स्टेट एम्प्रेस रही थी, कंट्री फाइनलिस्ट रही थी, और वुमेन ऑफ ऑनर अवार्ड भी मुझे मिला गया था गोवा में। और फिर 2019 में मिसेस यूनिवर्स, जो मिसेस कैटेगरी में सबसे ऊंचा
0: खिताब
1: बोलते हैं, वो हुआ था चाइना में ग्वांगजू में
0: जी।
1: तो वहां पे मैंने पार्टिसिपेट किया था एज मिसेस यूनिवर्स मिडिल एशिया 2019, और वहां पे मिसेस काइंडनेस का सबटाइटल भी मिला था।
0: ग्रेट ग्रेट। घर से कितना आपको सपोर्ट मिला?
1: घर से पूरा सपोर्ट मिला है इसमें।
0: अच्छा
1: yes.
0: तो ये जो शुरुआत रही है, यूं कहें कि बचपन से आपके दिल दिमाग में रहा है कि मुझे भी इस फील्ड में आना है, कुछ अच्छा करना है, बेहतर करना है।
1: फैशन शोज में पार्टिसिपेट किया है, तो वो कहीं ना कहीं अंदर था।
0: ओके ग्रेट ग्रेट। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और उसके बाद जो बातों का सिलसिला है लिसनर्स लगातार जारी है, आप कहीं जाएगा मत। मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत टैलेंटेड डॉक्टर चेतना अग्रवाल जुड़ी हुई हैं, जो कि इनके बारे में बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अभी और भी कुछ खास आना बाकी है, आप कहीं जाएगा मत। स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुनोशादा 90.8 FM, मैं हूं गगन और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनोशादा 90.8 FM।

0: सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरी यानी गगन के साथ और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर चेतना अग्रवाल हैं, साथ ही साथ कई खिताब इनके नाम है, जैसे कि 2017 में मिसेज इंडिया यूनिवर्स का खिताब आपके नाम है, 2018 में एम्प्रेस यूनिवर्स का खिताब आपके नाम है और वहीं 2019 में मिसेज यूनिवर्स का खिताब भी आपके सर है, सर माथे है। ये जो ख्वाब आपने देखा बचपन का ही ख्वाब था या जैसे जैसे आप बड़े होते गए आपका ख्वाब परवान चढ़ता गया?
1: बचपन से ही ख्वाहिश थी, लेकिन हाँ धीरे धीरे बढ़ती गई ये ख्वाहिश। पर मिस कैटेगरी में कभी पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला, तो मिसेस कैटेगरी में मैंने अपना ये सपना सच किया।
0: ओह ग्रेट ग्रेट, उसके पीछे कितनी मेहनत रही होगी डॉक्टर?
1: मेहनत इसमें काफी रहती है। लोगों को ऐसे लगता है कि नहीं स्टेज पे आके बस हम ताज जीत लेते हैं, ऐसा नहीं होता। इसमें हमारी पूरी ग्रूमिंग होती है, हमारी पूरी ट्रेनिंग होती है, हमको हमारे बात करने का तरीका सीखना पड़ता है, हम कैसे वॉक करते हैं, हमारी रैंप वॉक ट्रेनिंग होती है, क्वेश्चन आंसर राउंड्स की ट्रेनिंग होती है, हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं सबके सामने उसकी भी ट्रेनिंग होती है, तो काफी ट्रेनिंग रहती है। फिर हमारा टैलेंट राउंड होता है, उसके लिए हम तैयारी करते हैं, चाहे हमको डांस करना है या कोई भी हमको प्रेजेंट करना हो तो उसके लिए भी तैयारी होती है। तो काफी इसमें जाता
0: मेहनत है,
1: बहुत मेहनत लगती है। और हमको एक प्रेजेंटेशन भी करना होता है, जैसे मिसेस यूनिवर्स 2019 में डोमेस्टिक वायलेंस पे हमने एक प्रेजेंटेशन किया था, जिसमें मैंने डिजिटल आर्ट पेंटिंग्स के जरिए अपना पूरा प्रेजेंटेशन प्रेजेंट किया था डोमेस्टिक वायलेंस पे। तो इसमें काफी हमको तैयारी करनी पड़ती है।
0: जी जी जी, ये जो तैयारी है ये तैयारी कौन कराता है? आपको खुद से ही तैयारी करनी पड़ती है या आप जिस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहाँ की टीम आपको तैयार करती है?
1: कंपटीशन की टीम भी हमको तैयार करती है। जब हम वहाँ पे जाते हैं तो हमारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, वहाँ पे अलग अलग ट्रेनिंग सेशंस लिए जाते हैं हमारे वहाँ पे। पर कॉम्पिटिशन में जाने से पहले, पेजेंट में जाने से पहले हमको खुद की तैयारी करनी पड़ती है टू बी प्रेजेंटेबल इन दी कॉम्पिटिशन।
0: ग्रेट, मैं सॉरी प्लीज कंटिन्यू करिए।
1: तो हमारे जो भी हम ट्रेनर्स यहाँ पे लेते हैं, ग्रूमर्स होते हैं हमारे, तो उनसे हम ट्रेनिंग लेते हैं, प्लस अगर जो हमारे टैलेंट राउंड का जैसे मैंने बात की थी तो उसके लिए भी हम तैयारी करके ही जाते हैं यहाँ से।
0: ओह ग्रेट,
1: प्लस हमारे डिजाइनर्स होते हैं जो हमारे ड्रेसेस डिजाइन करते हैं।
0: ओके, डॉक्टर जहन में ये भी सवाल आता है कि मैं समझता हूँ कि कोई एक ऐसे इलाके से आ रहा या आ रही है, अपने सपने को साकार करना चाहता है या चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल दिमाग में एक ये बात भी आ जाती है कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। एक बात होती ही होती है, तो इस मामले में या यूं कहें कि खुलकर आप बताएं कि वो अपने सपने को कैसे साकार कर सकता है, वो कैसे आपकी तरह कोई मिस इंडिया बन सकता है या मिस इंडिया का जो खिताब है उसके सर माथे जा सकता है।
1: ये अच्छी बात है। एक्चुअली आजकल के जो पेजेंट्स हैं वो बहुत ओपन अप हो गए हैं। वो जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही बात कर सके तो आपको खिताब मिलेगा। आप अपनी लैंग्वेज, मातृभाषा जो भी आपकी, उसमें आप अपने क्वेश्चन आंसर राउंड दे सकते हैं। वो आपके सब जवाबों को एक्सेप्ट करेंगे और ट्रांसलेटर्स भी होते हैं जो आपकी भाषा को इंग्लिश में या हिंदी में जो ज्यूरी समझ सके उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उसमें बोल सकते हैं। और दूसरा है कि ट्रेनिंग तो हम सबको लेके ही जानी पड़ती है।
0: जी जी,
1: और वहाँ पे भी वो हमको ट्रेनिंग बहुत अच्छे से देते हैं।
0: क्या कोई रुपए पैसे की अगर हम बात करें तो क्या कोई रुपया पैसा भी आगे चल के खर्च करना पड़ता है?
1: हाँ जी, इसमें रुपया पैसा तो खर्च करना पड़ता है, क्योंकि आपकी ड्रेसेस होती हैं, आपके जो ट्रेनर्स होते हैं, आप जब पेजेंट में जाते हैं तो वहाँ पे आपका पूरा ग्रूमिंग सेशन होते हैं, तो हमको पैसे तो खर्च करने पड़ते हैं। कुछ लोगों को स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती है लकी, पर हाँ इसमें थोड़ा खर्चा तो रहता ही है। आपकी तैयारी होनी चाहिए।
0: क्या बात है, यानी कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दीजिए, अपने आप को बेहतर बनाकर रखिए, चाहे वो वॉकिंग की बात हो, टॉकिंग की बात हो, और जिस तरीके से डॉक्टर चेतना अग्रवाल हमें बता रही हैं कि इन इन बारीकियों को आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। सबसे खास बात यह कि इन्होंने एक सपना देखा और सपने को इन्होंने साकार किया। अब वो चाहे वो मिसेज यूनिवर्स का खिताब क्यों ना हो, लेकिन वो खिताब बचपन से दिल दिमाग में कहीं घूम रहा था कि ये सपने को मुझे साकार करना है। कहते ना कि हिम्मत मर्दा तो मदद है खुदा, कोशिश करते जाइए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती। डॉक्टर चेतना अग्रवाल, आप पेशे से एनेस्थियोलॉजिस्ट, जिसे हम कहते हैं कि बेहोश करने वाली डॉक्टर है। आप इतनी खूबसूरत हैं कि अभी भी हम बेहोश हो ही रहे बिना इंजेक्शन के दवा के। तो इसके बारे में मैं आपसे जानूंगा जरूर, मगर एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा। कोई एक ऐसा गाना जो आपके दिल के बेहद करीब हो, जो आप गाना चाहती हूँ, गुनगुनाना चाहती हूँ, हमारे लिसनर्स को सुनाना चाहती हूँ?
1: ए दिल है मुश्किल।
0: क्या बात है. सो ब्यूटीफुल ट्रैक फॉर ब्यूटीफुल लिसनर्स, सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर. गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ.

0: है दिल है मुश्किल फिल्म का ये टाइटल ट्रैक अभी आपने सुना सिर्फ और सिर्फ सुनोशादा 90.8 एफएम पर। मैं हूं गगन आपके साथ और मेरे साथ बड़ी खूबसूरत डॉक्टर जुड़ी हुई है और क्या कहूं मैं। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर आपसे बात हो रही थी कि आप बेहोशी की डॉक्टर हैं। आपको देख के तो मुझे लगता है कि मरीज वैसे ही बेहोश हो जाते होंगे। ये मेरी तरफ से आपको एक कॉम्प्लीमेंट है।
1: थैंक यू।
0: ये जो डॉक्टरी का फील्ड है आपका और आप इस फील्ड में भी काम कर ही रहे हैं, तो ये जो बैलेंस है किस तरीके से आप इसका तालमेल बैठा पाते हैं?
1: बैलेंस करना, यस इट इज थोड़ा मुश्किल चीज होती है हमारे लिए, लेकिन जब दिल में ख्वाब होता है, कुछ पाने की तमन्ना होती है, तो अपने आप हम आपस में टाइम सेट कर लेते हैं, क्योंकि हमको परिवार को भी देखना होता है, हमको बच्चों को भी देखना होता है, प्रोफेशन को भी देखना होता है और अपने ख्वाबों को भी सच करना होता है।
0: Excellent.
1: तो सब कहीं ना कहीं जैसे भी होता है हम टाइम सेट करके सब मैनेज करते रहते हैं।
0: वेरी गुड। यानी कि कहीं ना कहीं लिसनर्स अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो राहें वो खुद ब खुद बनती चली जाती हैं, बस एक बार छोटा सा कोशिश करिए, प्रयास करिए और जो आप चाह रहे हैं वो होता चला जाएगा। आप कई सारे कॉम्पिटिशन में आपने फाइट भी किया, जैसे कि आप उसके
1: आपने जो ये बोला उसके बारे में मैं बोलना
0: चाहूंगी। प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज।
1: मेरा एक मोटो जो हम बोलते हैं वो ये है, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट अ न्यू। यानी जब आपको मिले मौका तो आप उसी समय अपनी मंजिल के रास्ते पर चल सकते हैं।
0: क्या बात है, इस बात को यूं कह सकते हैं जब भी मिले मौका मार दो चौका। बहुत खूब बहुत खूब। और आम भाषा में डॉक्टर कहा जाता है कि जब जागो तभी सवेरा। ये जरूरी है कि ख्वाबों को जिंदा रखना जरूरी है, उनको मरने मत दीजिए। आप एक जीता जागता उदाहरण है समाज के लिए, युवाओं के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जब भी आप कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर मंजिल आपको मिल ही जाएगी। कई सारे कॉम्पिटिशन में आपने पार्टिसिपेट किया, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था उसके आप विनर भी रही हैं। एज ए जूरी जब आप जाती हैं तो क्या क्या खूबी आप जो पार्टिसिपेंट वहां पर हैं क्या देखती हैं?
1: ज्यूरी बनके भी जाने का मौका मुझे मिला है कई पैजेंट्स में, तो वहाँ पे हम सबको बेसिकली उनकी पर्सनालिटी पे ज्यादा ध्यान देते हैं रादर देन की फिजिकल ब्यूटी या वो बोल कैसे रहे हैं। ओवरऑल पर्सनालिटी पे हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं कि वो कैसे बात करते हैं, वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, उनका वॉकिंग स्टाइल कैसा है, उनका टैलेंट राउंड कैसा है, उन्होंने इंटरव्यू कैसा दिया है, ओवरऑल ट्रेनिंग प्रोसेस में वो कैसे रहे हमारे साथ, कितना अच्छा उन्होंने सहकार दिया, कितना अच्छा ट्रेन किया अपने आप को। तो सब कुछ हम इकट्ठा देख के ही हम पार्टिसिपेंट्स को जज करते हैं।
0: वेरी गुड। मुझे लगता है कि इस बात से जो हमारे लिसनर हैं इन बातों को सुनना या समझना उनके लिए बहुत जरूरी है। फाइनली एक बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, जिस पर्पस से आप यहाँ आई हुई हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और इस कैंपस के बारे में क्या कहना चाहेंगे और फाइनली एक मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे यूथ को?
1: मैं ला ग्लोबल फाउंडेशन की ऑनर्ड एम्बेसडर रही हूँ 2020 से, जब ये कोविड हुआ था, शुरू हुआ था उसके जस्ट पहले ही मैं इनकी ऑनर्ड एम्बेसडर बनी हूँ। और मुझे कहकर बेहद खुशी हो रही है कि जो मतलब कोविड टाइम्स में भी जब हम सोचते थे कुछ नहीं हो सकता है, तब भी ला ग्लोबल फाउंडेशन ने इतनी सारी ऑनलाइन मीटिंग्स की हैं, इंटरनेशनल मीटिंग्स की हैं जो यूएन के रिलेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिलेशन में होती हैं, एंड काफी आगे तक इस फाउंडेशन को लेके गए हैं और इंटरनेशनल स्पीकर्स उनके पास आए हैं जिसके साथ में हम मीटिंग करते थे ऑनलाइन, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ये थ्रू आउट। और उनके साथ हमने ब्रेस्ट अवेयरनेस का यहाँ पे एक पेजेंट किया था, क्राउन ग्लोबल पेजेंट अवार्ड्स किए थे अभी दिल्ली में, तो उसमें भी एज अ ग्रूमर मैं आई थी, एज रैंप वॉक कोरियोग्राफर भी आई थी, तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, सफर रहा है उनके साथ। और मैं इंडियन रिसोसिटेशन काउंसिल की जो ISA हमारी सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ, और हमारे मैं अपनी सिटी की सेक्रेटरी हूँ ISA वर्धा, और हमारे जो नेशनल फोरम्स हैं ISA आर्ट एंड लिटरी क्लब, ISA कल्चरल क्लब एंड ISA विजिल, उसकी भी मैं कोऑर्डिनेटर हूँ।
0: ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक छोटा सा संदेश हमारे यूथ के लिए, हमारे उन गर्ल्स के लिए जो आपकी तरह इस खिताब को जीतना चाहती हैं, मिस यूनिवर्स का, मिसेज यूनिवर्स का या मिस इंडिया का?
1: जी हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ अपने ख्वाबों को हमेशा जिंदा रखिए, चाहे जिंदगी आपको किसी भी मोड़ पे लेके जाए, कुछ भी हो आपकी जिंदगी में, लेकिन अपने ख्वाबों को प्लीज बुझने मत दें, उनको हमेशा जिंदा रखिए, क्योंकि कब आपको मौका मिलेगा उन ख्वाबों को सच करने का ये आपको नहीं पता, हमको नहीं पता, किसी को नहीं पता, लेकिन ख्वाब सच जरूर होते हैं, मैंने खुद ने देखे हैं, इसलिए आप भी देखेंगे जरूर जिंदगी में कभी ना कभी, डेफिनेटली।
0: चलिए, मैं भी ख्वाब देखता रहता हूँ और इंशाल्लाह आपसे बात करके मुझे लग रहा है कि मेरे भी जो ख्वाब हैं या जो सपना है वो निश्चित तौर पर एक ना एक दिन जरूर साकार होगा। सो डॉक्टर चेतना अग्रवाल, आपसे बात करके, आपसे मिलकर मुझे वाकई बेहद खुशी हुई, बहुत एनर्जी मिली है, और जैसे मैंने अभी कहा कि मैंने भी एक ख्वाब देखा है कि वो सपना जरूर साकार होगा, आपकी बातों से मुझे भी अपने आप में ऐसे लगने लगा है। सो आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें बहुत सारा समय दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे लिसनर्स तक पहुंचाई, इस बात के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
1: धन्यवाद आपका भी। एंड शारदा यूनिवर्सिटी के लिए मैं कहूंगी कि मैंने बहुत पहले से मैं टीवी और न्यूज़पेपर में इनके एड्स देखती थी, और आज पहली बार जिंदगी में मौका मिला है इस यूनिवर्सिटी में आने का, और इतना बड़ा यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सब बहुत सपोर्टिव है, ओवरऑल टीम सपोर्ट बहुत ही अच्छा है।
0: अच्छा एक्सपीरियंस रहा अच्छा। मेरे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका?
1: बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है।
0: ग्रेट ग्रेट, नाइस नाइस।
1: इतना कंफर्टेबल फील करके इतने अच्छे से करने के लिए, थैंक यू सो मच।
0: ये बात आपने बहुत अच्छी कही, ये होना बहुत जरूरी है ताकि हम जो बातें हैं वो खुलकर बात कर पाए।
1: बिल्कुल।
0: और आप जब जज होते हैं तो मैं समझता हूँ जो प्रतिभागी आपके सामने, अगर वो माहौल क्रिएट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो एक नया बंदा या बंदी है वो डर जाएगा, घबरा जाएगा। तो डॉक्टर आपसे बात करके वाकई बेहद खुशी हुई, मेरी तरफ से आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो लिसनर्स सुनते रहिए, थैंक यू मैम। ये प्रोग्राम कैसा लगा 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताइएगा जरूर। जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ मोहब्बत के साथ गुजारते चले जाइए, ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM।
2: एक्शन।

0: जो कहते हैं सच ये भी कहते हैं कि जान है तो जहान है ना। और जब जान की बात आती है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, और जब हेल्थ का जिक्र होता है तो सच बात ये भी है कि कहीं ना कहीं हमें डॉक्टर की याद आती है कि डॉक्टर हमसे जुड़ेंगे, डॉक्टर हमें गाइड करेंगे कि हम क्या करें और क्या ना करें। निश्चित तौर पर आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि हेल्थ के संबंध में किस तरीके से हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। और जब आपको पता चले कि डॉक्टर वाकई बहुत इंटेलिजेंट हैं, खूबसूरत हैं, और साइड बाय साइड वो अपना एक जो प्रोफेशन है उसको भी कैरी कर रहे हैं, चाहे वो मॉडलिंग की बात हो या लो ग्लोबल फाउंडेशन की ब्रांड एम्बेसडर जो आज हमारे साथ जुड़ रही हैं, यूं कह सकते हैं कि एक संपूर्ण पैकेज है। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्राची वी रायजादा। सो डॉक्टर प्राची, आपका सुरुशादा 90.8 एफएम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर।
0: अभी दो और लोगों से मेरी मुलाकात

0: हुई, बातचीत रही, बहुत अच्छी रही। आपके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं इस फाउंडेशन के, बहुत खुश मिजाज लोग हैं आप, और आपके चेहरे पर मुस्कान है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। तो ये जो मुस्कान का राज क्या है, किस तरीके से लोग आपसे जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, और चूंकि आप एक डॉक्टर भी हैं, और किस तरीके से उसका जो दर्द है एक मरीज का वो फुर्र हो जाता है, दूर हो जाता है।
1: सर ये तो अभी तो मुझे लगता है हम अंदर से इतना ज्यादा खुश हैं, हेल्दी हैं और ब्लेस्ड हैं, इसीलिए हर समय हम खुश रहते हैं बेसिकली।
0: okay.
1: और हर मोमेंट को जीते हैं।
0: रियली नाइस, रियली नाइस। तो आपकी जो पैदाइश है वो कहाँ से है, और किस तरीके से आपने अपने आप को इस फील्ड के लिए तैयार किया है, जिस प्रोजेक्ट के लिए आप यहाँ आई हैं शारदा यूनिवर्सिटी में कैंपस में?
1: सर बेसिकली नेटिव मेरा है वाराणसी, बट क्योंकि मेरे डैड गवर्नमेंट जॉब में थे तो मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप पंजाब में हुआ है
0: जी।
1: स्कूलिंग, एजुकेशन एक्सपीरियंस एवरीथिंग सब वहीं से होने के बाद यहाँ शादी हुई मेरी, तो मैं इधर आ गई। उसके बाद मैं अपने बेसिकली मेरा प्रोफेशन एचआर प्रोफेशन से हूँ मैं सिंस लास्ट 15 इयर्स, और इसके अलावा यहाँ आने का सिर्फ एक ही रीजन था, क्योंकि मेरे को लगता था जब तक फिट नहीं रहेंगे, क्योंकि बेसिकली मैंने जो चीज अपने कॉर्पोरेट में नोटिस किया है वो ये है कि इतना प्रेशर है प्राइवेट जॉब्स में, इतना प्रेशर है, किसी के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी फिजिकल हेल्थ को ठीक रख सके। अगर हम इसको बैलेंस करके चलते हैं तो जो स्माइल की बात आप कर रहे हैं वो आराम से हो सकती है। सो मैंने उसके लिए टाइम निकाला, मैं मॉर्निंग 4 o'clock उठती हूँ डेली, मेडिटेशन
0: कुमार को फॉलो करती है। ग्रेट, गुड जॉब डॉक्टर जी।
1: और मेडिटेशन करती हूँ डेली,
0: एक्सीलेंट।
1: और उसके बाद मैं रनिंग और साइकिलिंग के लिए अपने टाइम निकालती हूँ।
0: अच्छा डॉक्टर, मुझे ये बताइए कि आपने सुबह की बात बता दी कि पांव फटने से पहले आप जग जाते हैं, लेकिन आप सोते कितने बजे?
1: सर मैं 9:30 अपने बेड पे चली जाती। जी जी जी। और मैंने अपनी बेटी को भी इतना ही डिसिप्लिन रखा है, लोग कहते हैं बच्चों के साथ हम सो नहीं पाते, वो जागते रहते हैं, बट नहीं, शी इज वेरी डिसिप्लिन, वो भी हमारे साथ सो जाती है।
0: माँ पर नहीं है।
1: सर अगर ऐसा नहीं करें तो मॉर्निंग 4 o'clock नहीं
0: हो पाता। डॉक्टर मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि आपने जो हमारे बड़े बुजुर्गों का सिद्धांत रहा है कि समय से सोना समय से उठना, यही वजह है कि उनकी हेल्थ बड़ी अच्छी रहती थी। मैंने खुद से ऑब्जर्वेशन जो मेरा है वो ये है कि अगर आप नींद खो रहे हैं तो जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून आप खो रहे हैं। तो उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? आपने तो अपने आप को बैलेंस किया कि 9 बजे आप सो जाते हैं और 4 बजे खटिया छोड़ देते हैं, खटिया नहीं होगा सॉरी, बैठ छोड़ देते होंगे आप तो।
1: जी हाँ।
0: तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग लेट आवर्स में सोते हैं या जल्दी जग जाते हैं, नींद कम लेते हैं?
1: सर ये करने का रीजन ही एक है, क्योंकि मैंने आपसे अभी कहा कि कॉर्पोरेट में मैं देख रही हूँ इतना प्रेशर है, लोगों से नहीं हो पाता है। एक टाइम था मैंने भी ये सारी चीजें फॉलो करनी शुरू कर दी थी कि 1-1 बजे तक हम ऑफिस का काम लेके रात को बैठे हैं, मॉर्निंग में नहीं हो पाता था। बट मैं यही कहूंगी कि सबसे पहले अपनी फिजिकल फिटनेस पे अगर हम फोकस्ड हैं, हमारा मेंटल लेवल स्टेबल है, तो हम सब चीजें कर सकते हैं। रात को ये जागना और स्पेसिफिक मोबाइल के साथ ये सब चीजों से अगर वो दूर रहेंगे और अपनी खुशी और हेल्थ दोनों मेंटेन कर सकते हैं अच्छे से, तो ये करना चाहिए एक बार वो प्रैक्टिस करके। क्योंकि हमारे पास इंटर्न्स आते हैं, उनको भी बोलते हैं कि अगर आप लोग हमें ऑनलाइन दिखते हैं इतने बजे के बाद तो आपको वो पनिशमेंट मिलेगी नेक्स्ट डे, तो हम उनको भी कोशिश करते हैं कि वो मोटिवेटेड रहे उस फील्ड में।
0: यानी कि आपकी खूबसूरती का जो राज है वो टाइम से सोना, टाइम से खाना, अपने आप को बैलेंस डाइट जो आप लेते हैं, जिसकी वजह से आपने अपने आप को मेंटेन करके रखा है। क्या कहना चाहते हैं जो नींद कम लेते हैं, जो दिक्कत परेशानी में घिरे हुए हैं, जो अवसाद से ग्रसित है, किस तरीके से वो अपने आप को मेंटेन कर रखें, किस तरीके से जिंदगी को वो खुशनुमा बनाकर रखें, एक छोटा सा संदेश आपकी तरफ से उनके लिए?
1: सर मुझे यही लगता है कि उनको जितना वो परेशान है, परेशानियों के बारे में सोच सोच के नेगेटिविटी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। एटलीस्ट उनको 21 डेज, एक सिंपल ट्रिक जो मैं फॉलो करती हूँ, अगर मैं बहुत कभी परेशान होती हूँ, मैं सारी नेगेटिव थॉट्स राइट करती हूँ एक नोटबुक पे, फिर उसको फाड़ देती हूँ और बर्न कर देती हूँ बस, और उसको डस्टबिन में ले जाकर फेंक देती हूँ। और आपको भी आप फील करेंगे कि आप लाइट फील कर रहे हैं। मेडिटेशन का रोल तो एक अलग होता ही, आप पॉजिटिव रहते हैं, बट ये करने से नेगेटिविटी जो उस टाइम पे जो आपको खाई जा रही है, वो आपकी थॉट निकल गई आपके माइंड से, तो आप नेक्स्ट पल कुछ और अच्छा जो आपको अच्छा लगता है वो करके देखिए। गाना गाना है, डांस करना है, कुछ भी कर सकते हैं।
0: डॉक्टर प्राची, जब गाने का जिक्र हो ही गया है तो बातों बातों में कोई एक ऐसा गाना जो आपके दिल के आसपास रहता हो, जब आपको लगता है कि मैं स्ट्रेस से गुजर रही हूँ, ये गाना गाना चाहती हूँ, गुनगुनाना चाहती हूँ, यहाँ पर मैं अपने लिसनर्स को भी सुनाना चाहती हूँ?
1: सर स्ट्रेस तो टच वुड नहीं है मेरी लाइफ में, बट फिर भी अगर कभी अगर किसी को परेशानी है, तो सिर्फ दो लाइंस
0: जी प्लीज।
1: ये

0: खुदा बड़ा है।
1: बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं, और लिसनर्स मैं भी यही कहना चाहूंगा कि जो डॉक्टर प्राची आपसे बात कर रही हैं, इन बातों को गांठ बांध लीजिए। जिंदगी वाकई बहुत बहुत बहुत खूबसूरत है, और अक्सर मैं भी खुद लाइनों को यहाँ जिक्र करता रहता हूँ कि ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। डॉक्टर, अदरवाइज तो लोग ऐसे होते हैं कि टेंशन लेने का नहीं देने का। मेरा खुद का मानना ये कि ना आपको टेंशन लीजिए, ना किसी को दीजिए, जिंदगी को खूबसूरत बनाकर रखिए और अच्छे अच्छे लोगों से मिलते रहिए। और आके वाकई मुझे बहुत खुशी हो रही कि आप जैसे लोगों से मेरी आज मुलाकात हुई है, अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, और इस बात के लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आई होप जब भी आपसे मुलाकात होगी, इधर कैंपस में आना होगा, तो जरूर आप हमारे रेडियो आएगा, जरूर हम आपसे फिर बात करेंगे।
0: थैंक यू सो मच सर इतनी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू।
1: लिसनर्स, ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM। जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार से मोहब्बत से गुजारते चले जाइए, ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। टाटा बाय एंड टेक केयर।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: मेरा नाम दीपिका शर्मा है। मेरे लड़के को बुखार हुआ था तो हम लोग लेके गए प्राइवेट डॉक्टर के पास। तो वहाँ पर इलाज हुआ मगर बुखार उतर नहीं रहा था, तो डॉक्टर बोले कि हमारे बस का नहीं है, लेके जाओ घर पे।
1: नमस्ते दीदी।
0: तब आशा वाली दीदी आई तो बोली क्या हुआ है तुम्हारे बच्चे को, तो हम बोले कि बुखार हुआ है और शरीर सूजता चला जा रहा है। तो बोली कि लेके चलोगे सरकारी हॉस्पिटल पे, तो हम लोग बोले हाँ ले चलेंगे। तो हम लोग लेके गए वहाँ पे, तो हमारा वहाँ पे इलाज हुआ। तो वहाँ से डॉक्टर बोले कि इनको बुखार मस्तक जोर है। एक दिन हम लोग वहाँ पे थे, धीरे धीरे जब इलाज हुआ तो हम लोग को विश्वास होने लगा कि हमारा बच्चा यहाँ से ठीक हो रहा है।
2: ये दस्तक अभियान के तहत आशा जाती हैं हर घर में, उनको चार प्रश्न पूछना होता है कि कोई मरीज बुखार का है कि नहीं है, बुखार के साथ किसी के ILI या सर्दी जुकाम के लक्षण वाले मरीज होते हैं उसकी लिस्ट बनाती हैं और उसके विभाग की उसकी जांच करता है, उसकी कार्रवाई करता है। स्वास्थ्य के साथ साथ और विभाग जैसे पंचायती राज है जिसमें पानी इकट्ठा न हो इसके लिए व्यवस्था करते हैं। कई अंतर विभागी जो सहयोग कर रहे हैं उसमें पशुपालन विभाग का भी एक अहम सहयोग है कि पशु जो घर के पास रखते हैं लोग कोशिश करें कि उसको घर से बाहर रखें, तो इस काफ़ी प्रोग्राम में सहयोग हो रहा है। इसके अलावा हमारा जल निगम काम करता है इसमें, जो हम लोग ये प्रमोट करते हैं कि जो सैलो हैंडपम्प हैं उसका पानी लोग ना पिए, पानी से भी ये जल जनित बीमारियाँ हैं ये भी हमारे एक मस्तिष्क ज्वर का एक पार्ट होता है। इसके अलावा हमारा जो IC के माध्यम से हम प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाते हैं, तो इससे हम लोग काफ़ी इसमें क्रमशः सफलता पा रहे हैं। 3 साल से मस्तिष्क ज्वर इसमें संख्या थी उसे काफ़ी कम हुआ है और हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं हमेशा।

0: The School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है, तो फिर कहीं देर ना हो जाए। कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स,

साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।
2: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हो जाने पर 6 से 8 महीने का उपचार करवाना होता है, लेकिन अगर इलाज बीच में रोक दिया तो टीबी बिगड़ सकता है और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बन सकता है। DRTB तब होता है जब टीबी की कुछ दवा असर करना बंद कर दे। DRTB का इलाज कठिन और लंबा है, लेकिन मुमकिन है। आधुनिक जाँच और इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
3: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
4: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: भी संबंधित कुछ गलत फहमियाँ हैं या यूँ कहें कि कुछ भ्रांतियाँ हैं, आइए उनको दूर करते और जानते हैं। लोगों में महावारी को लेकर कई गलत भ्रांतियाँ और गलत फहमियाँ होती हैं, जैसे कि महावारी गंदी और हर महीने होने वाली शर्मनाक घटना है।
1: महावारी के समय सभी लड़कियों के लिए सभी गतिविधियों से दूर रहने का समय होता है।
0: महावारी का समय स्कूल न जाने का समय है।
1: महावारी एक व्यक्तिगत मुद्दा है जो केवल महिलाओं से संबंधित है।
0: याद रखें, मासिक धर्म एक सामान्य शारीरिक घटना है।
1: महावारी एक नियमित होने वाली प्रक्रिया है और यदि लड़कियां इसमें सहज महसूस करती हैं, तो वे सभी प्रकार की गतिविधियों में भाग ले सकती हैं।
0: जब तक तेज दर्द या गंभीर परेशानी न हो, तब तक महावारी का समय स्कूल या अन्य गतिविधियों से छुट्टी का दिन नहीं होना चाहिए। स्कूल में भी उनके लिए पैड बदलने के साफ और सुरक्षित जगह उपलब्ध करवाना अति आवश्यक है।
1: बहुत से लोगों के पास उनके महावारी प्रबंधन के लिए आवश्यक संसाधन, उचित स्वच्छता और सहयोग नहीं होता है। भारत में लड़कियां हर महीने अपनी महावारी की वजह से स्कूल में एक या दो दिन अनुपस्थित रहती हैं, जो कि उनकी शिक्षा और भविष्य को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है।
0: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

0: अरे भैया रामू।
1: हाँ भैया श्यामू।
0: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो, क्या हाल?
1: अरे भैया श्यामू, हाल बेहाल है और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है।
0: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2,500 और बड़ी सर्जरी सिर्फ 6,000 रुपए में हो रही है।
1: अच्छा तो भैया लेके चल, अब ही चल।
2: तो अब ही चलो।
3: अगर आप भी हैं ग्रामीण और गरीब तबके से, तो ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल दे रहा है अच्छे इलाज का वादा। छोटे ऑपरेशन के 2,500 और बड़े ऑपरेशन के मात्र 6,000 रुपए। मरीज को बस देना होगा इम्प्लांट और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान का खर्च। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
4: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना।
1: पहले से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियां टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु,
0: धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले,
1: कुपोषित
0: टीबी रोगी के साथ रहते हों,
1: मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग।
0: तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं, अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: ट्रीट एवरी टीबी पेशेंट बेस्ट एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: जान है तो जहान है। राम राम दोस्त, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ, और आज एक विशेष कार्यक्रम के तहत हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। हमारी एक श्रृंखला चल रही है जिसका नाम है सेहत सही तो लाभ गई। इसी के अंतर्गत आज हम एक विषय पर बात करने जा रहे हैं, वो है योग। इसी संबंध में आज हमारे साथ एक अतिथि जुड़ रहे हैं। आप हैं शिवम भारद्वाज, योगाचार्य, और इनसे बात कर रही हैं डॉक्टर प्रीति सिंह। तो आइए सुनते हैं ये विशेष चर्चा सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम और मैं हूं डॉक्टर प्रीति सिंह। स्वागत है आपके अपने विशेष कार्यक्रम मनस्वी योग के रंग मन के संग में। आज के भाग दौड़ भरे दौर में हम सब किसी न किसी तरह के तनाव, चिंता और थकान से गुजर रहे हैं। ऐसे में अगर कोई साधन हमारे मन को शांति दे, शरीर को संतुलन दे और जीवन को सकारात्मक दिशा दे सके तो वह है योग। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शिवम भारद्वाज जी, जो कि एक योगा प्रशिक्षक हैं शारदा स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज शारदा यूनिवर्सिटी के साथ। शिवम जी योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के द्वारा सर्टिफाइड योगा प्रशिक्षक हैं। इन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से मानव चेतना में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तथा भारतीय योग संस्थान के साथ में और इंडियन योगा एसोसिएशन के साथ में योगा वॉलंटियर के तौर पर नियंत्रित मधुमेह भारत अभियान के साथ में जुड़े रहे हैं। शिवम भारद्वाज सर एक प्रसिद्ध योगा प्रशिक्षक हैं जिन्होंने देश विदेश में योगा के प्रमोशन में पिछले 10 सालों में बेहद योगदान दिया है और आज वो हमारे बीच में मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे, बात करेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में योग को कैसे शामिल करें, कौन से व्यायाम, कौन से आसन हैं और ऐसे कौन से प्राणायाम हैं जो कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे उपयोगी हैं और विद्यार्थी तथा आम लोग कैसे छोटे छोटे कदमों से अपने मन को मजबूत बना सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम और शुरू करते हैं आज की सुखद भरी यात्रा मनस्वी योग के रंग मन के संग के साथ में। शिवम सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सुनो शारदा पे हमारे साथ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सबसे पहले मैं नमस्कार करूंगा सुनो शारदा 90.8 एफएम की पूरी टीम को और आपके सम्मानित श्रोता गणों को।
0: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे लिए भी बेहद खुशी का क्षण है और सबसे पहले हमारे श्रोता, हमारे दोस्त आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपनी इस योगा पर आधारित जो आपकी जीवन यात्रा रही है इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए कि आपका योग से जुड़ाव कैसे शुरू हुआ और आज आप शारदा यूनिवर्सिटी में योग को प्रमोट करने में किस तरह से अपनी भूमिका निभा रहे हैं।
1: मैडम, मेरी जो योग यात्रा है वो हरिद्वार से शुरू हुई। हरिद्वार जैसे कि मेरा जन्म का क्षेत्र भी है और वहाँ ही मेरी शिक्षा और दीक्षा पूर्ण हुई है। मैंने अपनी योग यात्रा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से शुरू की। जब मैंने इस यात्रा को शुरुआत किया तो मैंने योग को एक व्यायाम की तरह या एक अभ्यास की तरह ना देखते हुए अपने पूर्वजों से इसके लिए एक इंस्पिरेशन ली। हमारे पूर्वज स्वामी विवेकानंद और भी बहुत से महान योगी जो इस सनातन परंपरा में रहे हैं, उनका जो जीवन दर्शन है वो मेरे लिए योग यात्रा में बढ़ने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रेरणा का स्रोत बना।
0: जी, प्रेरित किया उन्होंने आपको।
1: बिल्कुल, उनका जीवन ही मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा। तो मेरे को गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में पढ़ना एक अपने आप में ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि गुरुकुल से ही योग एक एकेडमिक लाइन में शुरू हुआ है। इसके साथ साथ मैंने फिर अलग अलग संस्थानों में, अलग अलग योग शिक्षण संस्थानों में अपनी सेवाएं दी, जिसमें मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, अमृतम योगा फाउंडेशन नोएडा, लाइफस्टाइल योगा दुबई और योग पथ वेलनेस नई दिल्ली, इन संस्थानों में मैंने अलग अलग माध्यम से अपनी सेवाएं दी हैं। और वर्तमान में मैं शारदा विश्वविद्यालय में योग प्रशिक्षक के रूप में सेवारत हूँ। यहाँ पर शारदा स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के द्वारा विभिन्न समयों पर अलग अलग योग के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और योग महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय मेडिटेशन डे, इंटरनेशनल डे ऑफ मेडिटेशन और नियमित योग की कक्षाएं भी हमारे द्वारा शारदा स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज के द्वारा संचालित की जा रही हैं, जिसमें फैकल्टी, स्टाफ और स्टूडेंट्स सभी के लिए योग अवेलेबल है।
0: जी, ये फ्रीली अवेलेबल है सबको?
1: हाँ, हमने एक्चुअली प्रारंभिक दौर में इसको फ्री ही चलाया था, तो ये अब भी फ्री ही चल रहा है।
0: जी जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आज की जो तेज जीवन शैली है शिवम जी, और खास तौर पे मैं कहूँगी कि जो हमारी स्टूडेंट्स की जो लाइफ है, क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं वो बहुत हद तक बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, तो उनकी जो लाइफस्टाइल है उसमें बहुत सारी समस्याएं जो है देखने को मिलती हैं, मानसिक समस्याएं हैं, शारीरिक समस्याएं हैं, तो

0: उनके कारण क्या है, उनकी परीक्षा है जो उनको मानसिक चुनौतियां दे रही है, परीक्षा का दबाव हम देख सकते हैं। दूसरा, आज का जो कंपटीशन का दौर है वो उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग है। इसके अलावा जो उनका इमोशनल अनस्टेबिलिटी है, जो उनका भावनात्मक अस्थिरता है, वो एक मुख्य कारण है।
1: खास तौर पे हम कहेंगे कि सोशल मीडिया के दौर
0: सोशल मीडिया का दौर,
1: इतना प्रेशर उन बच्चों के सिर पे हम कहेंगे कि
0: बिल्कुल
1: कि जो कि अक्सर हम ऊपर से देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं
0: बिल्कुल
1: पाते हैं उसको।
0: हाँ, कि हम देखें कि अगर वो देखें कि आज के समय को देखते हुए अपने भविष्य की जो चिंता में, ओवरथिंकिंग में इंडल्ज रहते हैं, तो इन सभी समस्याओं को केंद्रित करते हुए यदि वे नियमित रूप से योगाभ्यास करें, प्राणायाम का अभ्यास करें, आसनों का अभ्यास करें, तो वो एक स्वस्थ मानसिकता और स्वस्थ शरीर प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं जो भी अपनी बातें यहाँ बता रहा हूं उसको योग ग्रंथों के साथ, योगा के टेक्स्ट के साथ कोट करूं, तो जैसा कि पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने बताया है, ततो द्वंद्व अभिघातः, यानी कि जब आप नियमित रूप से आसनों का अभ्यास करते हैं तो ये जो लाइफ की डुअलिटीज हैं जो हमें निरंतर रूप से परेशान करती हैं, जैसे हमने जो अपने मानसिकता का रिमोट कंट्रोल है वो दूसरों के हाथ में दिया हुआ है, दूसरा हमें अच्छे से ट्रीट करेगा तो हम खुश हो जाएंगे, वो हमको डांट देगा तो हम डाउन हो जाएंगे, कोई हमसे प्यार करेगा तो हम बहुत प्रफुल्लित रहेंगे, कोई हमें नफरत करेगा तो हमारा मानसिकता डाउन हो जाएगी। तो ये जो बात कही है उन्होंने ततो द्वंद अभिघाता, कि ये जो लाइफ की डुअलिटीज है, जो लाइफ के डुअलिज्म है, द्वंद है, उनके बीच में बैलेंस एस्टेब्लिश करने में योग बहुत ही सहायक है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संघ त्वक्त्वा धनंजया सिद्ध्या असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो ये योग क्या है, मानव के जीवन में, मानव के मस्तिष्क में एक इक्विलिब्रियम स्टेट को स्टैब्लिश करता है, एक समत्व भाव को बिल्कुल स्थापित करता है
1: जी। तो ये एक संतुलन को जो है बनाए रखने में योग बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आपने कहा कि मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पे काम करता है
0: बिल्कुल
1: जी। और कोई बहुत ही सरल ऐसा प्राणायाम, क्योंकि मैंने बात की कि हमारे जो श्रोता हैं वो स्टूडेंट कम्युनिटी काफ़ी हैं, तो उनके लिए, क्योंकि कई बार देखिए आलस आ जाता है या फिर समय का अभाव होता है या फिर स्थान का अभाव होता है, तो कुछ ऐसे बहुत ही सरल प्राणायाम या आसन जो श्रोता घर या हॉस्टल में बिना किसी मैट और ज़्यादा जगह के सुरक्षित रूप से कर सकें, उसके बारे में कुछ बताइए।
0: ये शारदा विश्वविद्यालय का परिसर है, शारदा विश्वविद्यालय का कैंपस है, या कोई भी परिसर हो, कोई भी विश्वविद्यालय हो, तो मैं ये बात स्टूडेंट्स को बताने के साथ साथ हमारी जो फैकल्टीज हैं, जो हमारे कलीग्स हैं, उनको भी एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि यदि वे जब अपनी कक्षा की शुरुआत करते हैं, व्हेन दे बिगिन देयर क्लास, सो इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास केवल 5 मिनट के लिए वो अगर 3 से 4 बार या 5 बार उद्गीत प्राणायाम यानी कि ओम चैंटिंग का अभ्यास कराएं और बच्चों को या स्टूडेंट्स को डीप ब्रीदिंग करने के लिए बोलें, तो वे देख पाएंगे कि उनकी जो नियमित कक्षा है उसमें उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अधिक अनुशासित रहेंगे और स्टूडेंट्स अत्यधिक अपने आप को एकाग्र महसूस करेंगे कि जो फैक्ट्स, जो टर्मिनोलॉजीज हमारी फैकल्टी उनको समझा रही हैं वो उसको जल्दी से ग्रास्प कर पाएंगे
1: जी, जी,
0: तो ये एक तरीका है कि इस तरह से वो एक यौगिक जीवन शैली को नियमित कक्षाओं में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और छोटे से प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम है, आप डेली बेसिस पर कक्षा की शुरुआत में बच्चों को कराएंगे तो वो बिल्कुल एकाग्रता का अनुभव कर सकते हैं
1: जी। और अगर प्राणायाम के बारे में अक्सर कहा जाता है कि सांस से ही हमारी जिंदगी जुड़ी हुई है, तो सांस से ही एकाग्रता भी बनी रहेगी और सांस से ही जो है हम अपने शरीर और मन का संतुलन भी स्थापित कर पाएंगे। तो खास तौर पे क्योंकि आजकल प्रदूषण बहुत ज्यादा है, जो AQI स्तर है आप देख रहे हैं कि बहुत बढ़ गया है पूरे ही देश में, तो ऐसे समय पे तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए प्राणायाम करने करते हुए?
0: बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात कही है मैम आपने कि हमारी जो श्वासें हैं हमारे जीवन में वही एक तरह से ईश्वर की अभिव्यक्ति है, कि यानी कि ईश्वर स्वयं को हमारी श्वासों के माध्यम से ही अभिव्यक्त करता है। तो आज जैसा कि हम देख रहे हैं वर्तमान समय में पॉल्यूशन बहुत अधिक बढ़ चुका है, तो

0: इस बढ़े हुए पॉल्यूशन में यदि हम कहीं भी ओपन एरिया में अगर प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो वो हमारे लिए उतना लाभदायक सिद्ध नहीं होगा। तो यदि हम प्रारंभिक अवस्था में यदि किसी अपने घर के अंदर ही क्लोज डोर में हम शुरुआती दौर में यदि कपालभाति का अभ्यास करें, क्योंकि कपालभाति क्या है, एक डिटॉक्सिफिकेशन टेक्निक है
1: जी।
0: ये एक शरीर की शोधन क्रिया है जो हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। और हम प्राणायाम के साथ साथ यदि कुछ शोधन क्रियाओं का अभ्यास करें, जैसे जल नीति, एक सरल प्रक्रिया है लेकिन प्रारंभिक अवस्था में इसको योग प्रशिक्षक के निर्देशन में ही किया जाए, तो वो पहले क्या करती है, हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है
1: जी।
0: क्योंकि आजकल जैसे कि प्रदूषण,
1: बॉडी क्लींजिंग कहते हैं,
0: एग्जैक्टली क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं कि प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ा हुआ है, तो बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत ही आवश्यक है। तो उसके बाद हम बाहर ना करके फिलहाल और अपने घर के अंदर ही प्राणायाम का अभ्यास करें तो ये बहुत ही लाभदायक है। और जैसा कि देख रहे हैं हम आज के समय में बहुत अधिक प्रदूषण बढ़ा हुआ है दिल्ली NCR में, तो हमें अनावश्यक रूप से बाहर निकलने को अवॉइड करना चाहिए
1: और निकले तो एक मास्क का प्रयोग
0: करें। और आप चाहें तो अपने सराउंडिंग्स में कपूर जला सकते हैं जो कि पॉल्यूशन के लेवल को कम करता है।
1: ओके, उसको जलाना है या फिर सिंपली जैसे
0: आप उसको स्मेल भी कर सकते हैं, बिल्कुल
1: सकते हैं।
0: और शाम के समय उसको जला भी सकते हैं,
1: जला सकते हैं जैसे हाँ। कि जो कि पूजा पाठ की
0: exactly.
1: की हमारी पद्धति है उसमें भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। ओके बहुत बढ़िया शिवम जी। इसके अलावा भी जो शुरुआती दौर में हमने देखा है कि हमारी बहुत सारे श्रोता हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि योगा करते हुए कुछ गलतियां कर देते हैं, मतलब कुछ ऐसे तरीके से करते हैं कि उनको चोट पहुंच जाती है या उनको पता नहीं होता है कि इस किसी खास आसन को प्राणायाम को इस तरीके से नहीं करना था। तो कौन कौन सी ऐसी सामान्य गलतियां हैं जिनसे और कैसे उनसे बचा जा सकता है।
0: बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है और इस प्रश्न के माध्यम से बहुत सी जो भ्रांतियां हैं योग अभ्यासियों के मन में या जो जिनके मन में उत्साह है योग को शुरुआत करने के लिए, तो उनके लिए बहुत ही एक अच्छा गाइडेंस का काम करेगा कि हम अपनी लाइफ में के किसी भी एस्पेक्ट में देखें कि हम किसी भी नई स्किल को जब सीखते हैं या कोई भी नई चीज सीखते हैं तो वी ऑलवेज नीड टू प्रैक्टिस इट अलोंग विद इट्स प्रिंसिपल्स। तो कुछ सिद्धांत हैं योग के भी कि जिनके साथ हमको योगाभ्यास करना चाहिए।
1: वो अक्सर कहा जाता है ना कि एवरीथिंग कम्स विद द मैनुअल,
0: एक्जेक्टली
1: मैनुअल को पढ़िए।
0: बिल्कुल, तो योग के लिए भी कुछ सिद्धांत हैं कि ये योग आपको बहुत अधिक अच्छे फल देने में सक्षम है, लेकिन कब, यदि हम इसको इसके सिद्धांतों के साथ अभ्यास करते हैं। तो कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप नए अभ्यासी हैं तो योगाभ्यास करते समय कभी भी जल्दबाजी ना दिखाएं। योगाभ्यास हमेशा स्थिरता के साथ, आराम के साथ और आनंदपूर्ण तरीके से करें। योगाभ्यास करते समय आप किसी से अपनी तुलना ना करें, अपनी शारीरिक क्षमताओं का सम्मान करें।
1: यानी कोई बहुत अच्छे से कर रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ उसको,
0: बिल्कुल देखिए मैम ऐसा है,
1: दूसरे को देख के ना करें
0: कि सभी की शारीरिक क्षमताएं अलग अलग हैं। आप मुझसे हजारों चीजों में बहुत बेहतर हैं, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि 10 चीजों में मैं भी बेहतर हूँ। तो सबका शरीर का प्रकार अलग है, सबकी शारीरिक क्षमताएं अलग अलग हैं। आपको कंपटीशन करना है, किससे करना है, अपने आप से, कि मैंने आज जितना बेहतर किया है उससे बेहतर मेरे को आने वाले दिनों में करना है। और दूसरी चीज कि योगाभ्यास जब भी करें तो उसकी शुरुआत हमेशा प्रार्थना से करें, क्योंकि हमारे मन को स्थिर करता है। और योगाभ्यास हमेशा मैट पर ही करें, बहुत अधिक टाइट कपड़ों में योगाभ्यास ना करें, तो ये हमारे शरीर को खुलने में थोड़ा दिक्कत दे सकता है, परेशानी दे सकता है। और एक और चीज जो मैं बहुत जोर डाल करके हमारे योगाभ्यासियों के लिए बताना चाहूंगा वो ये है कि जब भी आप योगाभ्यास करें तो आपके भोजन में और योगाभ्यास में कम से कम 3-4 घंटे का गैप होना बहुत जरूरी है। यदि आप भोजन करने के तुरंत बाद योगाभ्यास करते हैं और आपको कुछ उल्टी आ जाती है या वॉमिटिंग आ जाती है, फिर आप योगा को ब्लेम मत करें कि मैं तो योगाभ्यास कर रहा था उससे मेरी तबीयत खराब हो गई या ये दिक्कत हो गई।
1: एक अंतर जो है, समय का एक अंतराल बहुत जरूरी
0: बिल्कुल,
1: है भोजन करने की और योगा करने के बीच में, शायद इसीलिए कहा जाता है कि सुबह के समय जब खाली पेट करते हैं तो ज्यादा असर।
0: सुबह के समय एयर भी फ्रेश होती है, मन भी शांत होता है और पेट भी खाली होता है, इसलिए मॉर्निंग में यदि हम योगाभ्यास करते हैं तो वो हमें मल्टीपल बेनिफिट्स देने में सक्षम है। आप इवनिंग में भी कर सकते हैं, इवनिंग में भी हमें बहुत से लाभ मिलते हैं। लेकिन मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर योगा प्रैक्टिस।
1: और इसके साथ में भोजन को लेकर जैसे हमने बात की सर अभी, तो भोजन जो है जब हम योगा प्रैक्टिस करते हैं तो किस प्रकार का हमें आमतौर पर खाना चाहिए जो हमें ज्यादा लाभ देगा स्वास्थ्य के?
0: बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात आपने मैम पूछी है, क्योंकि योग एक कुछ घंटे का अभ्यास नहीं है, योग कुछ एक क्रिया नहीं है बल्कि एक लाइफस्टाइल है, तो जिसको हमें कई एस्पेक्ट में एक साथ लेकर के चलना पड़ता है। हम कह रहे हैं कि केवल वो आसन कर रहे हैं तो वो योग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो प्राणायाम कर रहे हैं तो वो योग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये एक संयुक्त अभ्यास है, है ना। तो भोजन के विषय में भी हमारे योग ग्रंथों में बहुत ही स्पष्टता से बताया गया है, जैसे हठ योग के ग्रंथों में बताया गया है भोजन के विषय में, तो उसमें एक मिताहार का वर्णन हमें मिलता है। तो मिताहार के विषय में बताते हुए महर्षि कहते हैं कि सुस्निग्ध मधुर आहारश्च चतुर्थांश विवर्जिता भुज्यते शिव संप्रीत्य मिताहार सा उच्यते, कि आपको भोजन कितना करना है इसकी मात्रा का वर्णन किया है, किस प्रकार का भोजन करना है इसका वर्णन किया है। तो आपको भोजन की मात्रा कितनी रखनी है कि जितनी आपको टोटल भूख है उसका आधा पेट ही आपको भोजन करना है। यदि आप नियमित योगाभ्यास करते हैं, योग साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जितनी आपको भूख है उसका आधा पेट आपको भोजन करना है, 1/4 आपको पानी के लिए रखना है और 1/4 आपको गैसियस एक्सचेंजेस के लिए पेट को खाली छोड़ करके रखना है।
1: पेट को भारी पन्ना बिल्कुल महसूस हो बिल्कुल खाने के बाद,
0: हाँ, पेट को ठूस ठूस करके नहीं भरना है, उसको थोड़ा सा स्पेस दे करके रखना है। और दूसरी चीज, यदि आप रात्रि का भोजन कर रहे हैं तो आपको सोने से कम 3 घंटे पहले तक कर लेना है, क्योंकि डाइजेशन में भी भोजन को समय लगता है। और जो सीजनल चीजें हैं, जो सीजनल सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, उनको हमें कंज्यूम करना है। साथ ही हमारे भोजन में जो लुब्रिकेशन है वो अच्छा होना चाहिए, वो गाय के दूध का हो या गाय के घी का हो, वो सबसे बेस्ट है।
1: तो जब हम इन बातों का ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे भोजन का भी और नियमित तौर पर योगा भी करेंगे साथ में, तो इसका जो एक सकारात्मक जो प्रभाव जो हम कहते हैं अक्सर कि आउटकम क्या निकलेगा, हम शारीरिक तौर पे और मानसिक स्तर पे दोनों पे?
0: इसके विषय में भी योग ग्रंथों में बहुत ही स्पष्टता से बताया गया है। तो उन्होंने उसमें बताया है कि योग का जो प्रभाव दिखता है किसी के व्यक्तित्व में वो क्या दिखता है, वो बताते हैं, वपु कुशत्वम वदने प्रसन्नता और नाद स्फुटम। तो वो बताते हैं वपु कुशत्वम यानी कि शरीर में हल्कापन आने लग जाता है, बॉडी में लाइटनेस फील होने लग जाती है और आपके चेहरे पर दमक आ जाती है, मैं चमक नहीं कह रहा हूँ, मैं दमक कह रहा हूँ कि चेहरे पर दमक आने लग जाती
1: है, जिसको हम
0: बिल्कुल ग्लो करने लग जाता है, है ना, कि आपकी पूरी बॉडी में हल्कापन रहता है, बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है और विचारों की स्पष्टता बढ़ जाती है, कि आपका शरीर एक पर्वत के समान स्थिर रहता है और आपकी श्वासें उसमें नदी की तरह प्रवाहित होती हैं और आपका मस्तिष्क एक आकाश की तरह स्पष्ट रहता है, होराइजन आपका बिल्कुल क्लियर और क्लीन रहता है। तो जो पॉजिटिव थॉट्स हैं वो आपकी लाइफ में बढ़ने लग जाते हैं, जो उत्साह है जीवन में, जो साहस है, जो धैर्य है, वो बढ़ने लग जाता है और जितनी भी नकारात्मकता है, नेगेटिविटीज हैं, क्योंकि हम देखते हैं हमारे शरीर में जो भी व्याधियां उत्पन्न होती हैं, जो भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, वो हार्मोनल इम्बैलेंसेस के कारण ही उत्पन्न होती हैं या हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कारण उत्पन्न होती है, चाहे थायराइड की समस्या है या डायबिटीज की समस्या है या हाइपरटेंशन की समस्या है। इनके मूल में यदि हम देखें तो हमारा बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल, जो जीवन शैली है, वो ही इसके पीछे जिम्मेदार है।
1: जी जी, और आज के समय में देखिए प्रदूषण भी है,
0: बिल्कुल
1: भोजन में भी, सब्जियों में भी, इतने पेस्टिसाइड्स फ्रूट्स में, बिल्कुल, खाने में, अनाज में, बहुत सारी चीजों में मिलावट भी
0: बहुत
1: है,
0: ज्यादा है।
1: हाँ, और खास तौर पे स्ट्रेस भी इतना ज्यादा है,
0: बहुत
1: है
0: स्ट्रेस
1: है। तो ऐसे समय पे जब ये सारी समस्याएं हमारे सामने हैं, तो इन सब के बीच में एक योगा एक तरीका है,
0: योग एक, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जैसा कि आपने कहा था कि योग एक यूजर मैनुअल है, जैसा हमें हम कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदते हैं, टीवी है या कोई अप्लायंसेस हैं,
1: हाँ,
0: तो उनके साथ हमें यूजर मैनुअल मिलता है जिसको कि हम इग्नोर कर देते हैं,
1: हाँ,
0: है ना। जैसे हम कोई मोबाइल फोन खरीदते हैं तो हम उसमें क्या यूज करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, YouTube, Instagram या कॉलिंग वगैरह के पर्पज से हम उसको यूज करते हैं, उसके जो 80% फीचर्स हैं उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही योग हमें हमारी बॉडी का, हमारे शरीर का 100% यूज करना सिखाता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, केवल ऑफिस आ रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं और खाना पीना खा रहे हैं, तो इस शरीर की असीमित क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को बढ़ाने का तरीका है योगाभ्यास। नियमित योगाभ्यास आपके कैलिबर को बढ़ाता है, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपके स्टेमिना को, आपके थॉट प्रोसेस को अच्छा करता है। तो यदि विद्यार्थीगण, शिक्षकगण और हम सभी लोग नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं तो हम एक स्वस्थ समाज की, एक स्वस्थ विश्वविद्यालय की और एक स्वस्थ मानसिकता की रचना हमारे समाज के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल,
1: बहुत खूब। और इसके साथ ही जैसे अक्सर योग को एक वेट मैनेजमेंट यानी कि हमारे जो बढ़ा हुआ वजन है उसको कम करने या उसको स्थिर रखने का भी एक बहुत बड़ा जरिया समझा जाता है।
0: बिल्कुल,
1: खास तौर पे क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया के दौर में हैं जहाँ पे खूबसूरत लगना और पतला स्लिम लगना जो है एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है अपने आप में, तो उसको भी एक फैशन के तौर पर जो है लोग देख कर उसको समझ के और योग की तरफ जा रहे हैं, एकाग्र हो रहे हैं, तो ये कितना सही आप समझते हैं शिवम सर?
0: बिल्कुल, हमें एक्चुअली जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ उद्देश्य होना आवश्यक है
1: जी।
0: यदि मैं किसी कार्य को कर रहा हूँ तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होना आवश्यक है। वैसे योग के ये सभी बाय प्रोडक्ट्स है, वेट लॉस करना, फेस पर ग्लो को बढ़ाना या बुद्धि की परिपक्वता को बढ़ाना, ये सभी योग के बाय प्रोडक्ट्स हैं। योग का अंतिम उद्देश्य है परमात्मा से मिलन, लेकिन यदि हम वर्तमान समय में ये देखें कि वेट मैनेजमेंट में योग बहुत ही सहायक है। यदि आप नियमित रूप से आसनों का अभ्यास करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और उसके साथ साथ यदि आप कुछ षटक्रियाएं हैं, षटक्रियाएं यानी कि जो शोधन क्रियाएं हैं जो बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन करती हैं, बॉडी से टॉक्सिन्स को दूर करती हैं, उसमें जैसा कि हमारा, मैंने आपको बताया अभी, जल नीति का अभ्यास है, कपाल भाती का अभ्यास है, एक वमन धोती जिसको कि हम कुंजल क्रिया का अभ्यास भी बोलते हैं, यदि उन अभ्यासों को किया जाए तो हमारा जो मेद धातु बढ़ी हुई है, सप्त धातुओं में से एक धातु है हमारी मेद जिसको कि हम फैट बोलते हैं, तो एक्सेसिव फैट को दूर करने के लिए ये बहुत ही लाभदायक अभ्यास है, कुंजल क्रिया का अभ्यास या षटकर्म के अभ्यास या धोती के अभ्यास। तो वेट मैनेजमेंट में योग बहुत ही सहायक एक क्रिया सिद्ध हो सकती है, एक सहायक अभ्यास है। यदि आप इस उद्देश्य से भी योगाभ्यास कर रहे हैं तो वेट मैनेजमेंट में बहुत ही लाभदायक
1: होगा। बिल्कुल जी। तो अक्सर जैसे अभी हमने बात की सोशल मीडिया की भी हम बात कर रहे हैं, तो आप अक्सर जो हमारे जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपने देखा होगा कि वो सोशल मीडिया पे जो उनका स्क्रीन टाइम है वो बहुत बढ़ा हुआ है, तो जिससे खास तौर पर उनके मन पे बहुत असर पड़ता है, उनका मन जो है अक्सर इंगेज्ड रहता है, वो कितना प्रोडक्टिव है नहीं है वो एक अलग शोध का विषय बन गया है। तो उसको संतुलित करने के लिए आप योग और दिनचर्या के क्या व्यवहारिक टिप्स देना चाहेंगे?
0: बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको इस के बीच में बताया था कि जो इमोशनल अनस्टेबिलिटी है, हम आजकल क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, उस पर रील्स को स्क्रॉल कर रहे हैं, तो एक रील आई जिसमें हमें बहुत खुश किया, एक रील आई जिसने हमें इमोशनल कर दिया, एक रील आई जिसने हमारा मन खराब कर दिया, एक आई जिसने हमें बहुत अधिक उत्तेजित कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। तो ये क्या कर रही है, हमारे इमोशंस को फ्लक्चुएट कर रही है कि एक एक सेकंड में हमारे जो इमोशंस हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो हम देखें कि जो छोटे बच्चे भी हैं उनमें भी ये चीज बहुत है, टॉलरेंस की बहुत कमी हो चुकी है, पेशेंस बहुत कम हो गया है। बिल्कुल भी हम देखते हैं कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, किसी को हर्ट कर देते हैं, हार्म कर देते हैं, खुद को हार्म कर देते
1: हैं,
0: बिल्कुल एंजाइटी, डिप्रेशन, इन चीजों में चले जाते हैं। तो योग के साथ साथ हमें कुछ लाइफस्टाइल चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी जरूरी है, कि जैसे कि हम देखते हैं कि आज का समय बिना स्क्रीन के बिताना असंभव सा हो गया है, क्योंकि कुछ इसमें हमारी अनिवार्यता भी है और कुछ हमारे एडिक्शंस भी हैं। तो अनिवार्यता को देखिए, यदि हमें ऑफिस का काम करना है या बच्चों के लिए भी ऑनलाइन क्लासेस हैं तो उनकी भी ये मजबूरी बन चुकी है स्क्रीन को फेस करना, तो हमें एक समय ये निर्धारित करना चाहिए कि दिन भर में कि जिसमें हम स्क्रीन को फेस ना करें, स्क्रीन का यूज ना करें, ठीक है, एक घंटा, डेढ़ घंटा, या जब हम लंच कर रहे हैं या किसी से इंटरेक्शन कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो उस समय हम स्क्रीन का यूज ना करें।
1: और खास तौर पे जैसे कहा जाता है कि सुबह
0: बिल्कुल,
1: के समय
0: बिल्कुल मैं वही कहने जा रहा था कि हाँ, रात को सोने से एक घंटा पहले आपको अपने स्क्रीन को ऑफ करके रख देना है, उसको नहीं देखना है। और सुबह उठने के एक से डेढ़ घंटे बाद तक भी आपको स्क्रीन को अवॉइड करना है। तो इसी तरह से कुछ छोटे छोटे चेंजेस करके हम इस एडिक्शन से बच सकते हैं या इसके हार्म को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो यदि आप रात को सोने से पहले एक घंटा पहले तक स्क्रीन यूज नहीं करते हैं, उसके स्थान पर आप कोई पुस्तक पढ़ते हैं या अपने बुजुर्गों के साथ, अपने माता पिता के साथ कुछ ज्ञान की चर्चाएं करते हैं, तो ये हमारी मेधा शक्ति को, स्मृति शक्ति को बढ़ाने में बहुत ही सहायक है। या आप सोने से पहले प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम जो कि एक बैलेंसिंग प्राणायाम है, तो भी ये हमारे साउंड स्लीप को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही लाभदायक है। और साथ ही हमारी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, जो मैं बता रहा हूँ कि जो बच्चों में टॉलरेंस बहुत कम हो गया है, उसको बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभदायक
1: है। तो शिवम सर, आप शारदा यूनिवर्सिटी में प्रशिक्षक हैं और इससे पहले भी आपने बहुत सारे शिक्षण संस्थानों के साथ में जो है उसके साथ में आप जुड़े रहे हैं, छात्रों के साथ काम किया है। तो कोई ऐसा उदाहरण आप साझा करना चाहें जिसमें कि किसी शिक्षक या छात्र के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में योग का आपको स्पष्ट सकारात्मक उदाहरण नजर।
0: बिल्कुल, जब मैं अपने मास्टर्स में था उस समय मेरे कलीग्स थे बहुत से, क्योंकि हमारा जो बैच था उसमें लगभग हर एज ग्रुप के लोग थे, कि मतलब वो सभी कलीग्स थे, हम एक ही क्लास में पढ़ते थे लेकिन एज डिफरेंस सभी में बहुत अलग अलग था। तो उस समय पर मेरे कुछ सीनियर्स थे जो अपने पुराने अनुभवों के कारण योग में आए, कि जिनके अनुभव बहुत ही लाइफ के प्रति अच्छे नहीं थे, तो इसलिए वो योग में आगे बढ़े। इसके अतिरिक्त मेरे एक विद्यार्थी हैं, मेरे एक स्टूडेंट हैं जो लगभग मेरे से 6-7 वर्षों से लगातार योगाभ्यास कर रहे हैं। प्रारंभिक अवस्था में उनकी स्थिति ऐसी थी कि वो डिप्रेशन की हाई डोज लेते थे, बहुत हाई डोज लेते थे। अच्छा। और बॉडी उनके बिल्कुल स्टिफ थी, उनकी स्पाइन में बिल्कुल स्टिफनेस थी, मेंटली बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे वो। घंटों घंटों मेरे से डिस्कस करते थे अपनी समस्याओं को, मैं उनको काउंसिल भी करता था, योगाभ्यास भी कराता था। परंतु आज उनकी नियमितता के कारण, रेगुलर प्रैक्टिसेस के कारण वो बहुत अधिक स्वस्थ हो चुके हैं। कि यदि देखा जाए कि सामान्य लोग जो योगाभ्यास नहीं करते हैं और उनमें बहुत डिफरेंस आ चुका है, कि उनकी डोजेस जो हैं डिप्रेशन की, स्ट्रेस की, वो बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। वो नियमित योगाभ्यास करते हैं और एक अच्छा स्वस्थ शरीर और मन के साथ वो अपने परिवार का संचालन कर रहे हैं, परिवार की जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं।
1: बहुत सुंदर। तो कितना देखिए, कितना विजिबल जो है असर हमें योग का दिखाई देता है किसी भी मनुष्य के जीवन पे। तो एक आखिरी सवाल आज का, कि अगर कोई श्रोता आज से ही, जो कि सुन रहे हैं इस शो को, जो अगर वो आज से ही शुरुआत करना चाहता हो, तो उसके लिए अगले 7 दिनों का एक बहुत ही सरल योग और एक मानसिक सुख शांति प्लान क्या हो सकता है?
0: बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर कोई श्रोता या कोई विद्यार्थी इस उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा है कि वो अपने जीवन में योग को इंट्रोड्यूस करना चाहता है, तो सबसे प्रारंभिक अवस्था में अपनी शारीरिक क्षमताओं को देखते हुए वो केवल ब्रीदिंग प्रैक्टिस से ही स्टार्ट कर सकते हैं। कि शुरुआती दौर में यदि वो 1-2 दिन केवल डीप ब्रीदिंग करते हैं, लंबी गहरी सांस भरते हैं, 15-20 मिनट तक पूरी माइंडफुलनेस के साथ, पूरी जागरूकता के साथ, तो वो उनके लिए शुरुआती दौर में बहुत ही लाभदायक है। और फिर जैसे जैसे 2-3 दिन के बाद वो और दूसरे प्राणायाम के अभ्यास है, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम है या कपाल भाति का शोधन क्रिया का जो अभ्यास है, भ्रामरी प्राणायाम है, इनके नियमित अभ्यास से अपने आप को, अपनी क्रियाओं को, सकते हैं। थे।

0: चार से पांच दिन बीत गए तो वह सरल योगासनों के अभ्यास जैसे सूक्ष्म व्यायाम हैं, जिसमें कि हम शरीर के छोटे छोटे अंगों के अभ्यास करते हैं, जैसे गर्दन के अभ्यास, कलाइयों के अभ्यास, कंधों के अभ्यास, और सरल आसनों के अभ्यास जैसे ताड़ासन का अभ्यास, पादहस्तासन का अभ्यास, इन आसनों के साथ वो अपनी योग यात्रा को शुरू कर सकते हैं, अपनी लाइफ में योगा को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एक और बात जो मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँगा कि अक्सर मेरे को ये कंप्लेन करते हैं मेरे साधकगण जो मेरे जिन्होंने मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं कि सर हम योगा प्रैक्टिस करते हैं, एक महीना करेंगे फिर छूट जाती है, दो महीने करेंगे फिर छूट जाती है, तो बॉडी में बिल्कुल ये दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं।
1: सबसे बड़ी जो चुनौती है
0: बिल्कुल
1: सबके सामने आती है
0: कि हम योगा अभ्यास को छोड़ देते हैं तो फिर इसके ये जो लाभ हैं ये क्यों नहीं मिलते हैं हमको, हमने तब तो किया था फिर ये क्यों नहीं मिल रहा है। तो मैं उससे एक चीज कहना चाहूंगा कि जैसे हमारी लाइफस्टाइल है कि अगर हम आज सुबह ब्रेकफास्ट कर लेंगे तो ऐसा नहीं है हमें रात को खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमने आज ब्रश कर लिया तो ऐसा नहीं है हमें हफ्ते भर तक ब्रश करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आज स्नान किया है तो कल भी स्नान करना पड़ेगा। तो योग क्या है, एक जीवन शैली है, एक लाइफस्टाइल है कि जिसको हमें नियमित रूप से अपने साथ लेकर के चलना है। योग एक फिलॉसफी भी है, योग एक दर्शन भी है कि जो एक पूरा लाइफस्टाइल हमें सिखाता है। अष्टांग योग में केवल आसनों के विषय में बात नहीं हुई है, केवल ध्यान के विषय में बात नहीं हुई है, केवल प्राणायाम की ही बात नहीं हुई, उसमें योग के व्यवहारिक पक्षों को भी देखा गया है कि एक योग साधक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, किन किन चीजों को उसको फॉलो करना चाहिए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, संतोष, तप, स्वाध्याय, ये सभी बातें उसमें बहुत ही डिटेल्स में बताई हुई है। आई एम वेरी थैंकफुल टू द टीचर्स कि जिनसे मैंने ये सीखा और आज मैं सुनो शारदा के साथ अपने इस अनुभव को उनकी शिक्षाओं को साझा कर पा रहा हूँ।
1: जी जी, बहुत खूबसूरत, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके भी, आपके उन सब शिक्षकों के भी जिन्होंने आपको योग की साधना का ये मूल मंत्र दिया और इस मूल मंत्र को आपने हमारे श्रोताओं के साथ में साझा किया। इतनी जरूरी टिप्स आपने हमारे श्रोताओं को दी कि किस प्रकार से हम योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना के और किस प्रकार से खुद को विकसित कर सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो शिवम जी, आप हमारे साथ जुड़े और अपने अनुभवों को, अपनी टीचिंग्स को आपने हमारे साथ साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद मैम, आपने मेरे को इनवाइट किया, यहाँ तक बुलाया और मैं आपके माध्यम से अपने अनुभव को साझा कर पाया, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का, गौरव का विषय है। मैं चाहूंगा कि मैं आगे भी अपने अनुभवों को आपके साथ साझा करता रहूं, आपके श्रोतागणों के साथ साझा करता रहूं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे लिए भी गर्व का विषय है सुनो शारदा के लिए कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे जो लिसनर्स हैं, श्रोता हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के दौर से गुजर रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, किसी भी जो है समस्या से जूझ रहे हैं, तो हम उनके लिए कुछ ऐसे समाधान लेकर आए कि जिसको वो अपने जीवन में समाहित करके और जीवन की जो हमारी नौका है उसको आगे बढ़ाए। तो दोस्तों, ये था मनस्वी, आज हमने मनस्वी में बात की, योग के रंग मन के संग में। शिवम जी ने हमारा साथ दिया इस पूरी चर्चा में और आगे भी हम लाते रहेंगे इसी प्रकार की विषय और इसी प्रकार की जो टिप्स हैं जो आपके काम आएंगे जिंदगी में, आपको आगे लेके जाएंगे, हम उन पे चर्चा करते रहेंगे। तो डॉक्टर प्रीति सिंह को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। अभी आपने ये विशेष चर्चा सुनी सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर, सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत। योग के विभिन्न रूप के बारे में बातें हुई, योग कैसे करें, किन किन खास बातों को ध्यान में रखें, बहुत अच्छे सवालों के साथ चर्चा की डॉक्टर प्रीति सिंह जी ने। सेहत सही तो लाभ कई, बस यही कहेंगे कि आप अपनी सेहत को सही रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके शरीर में बहुत सारे लाभ आपको मिलेंगे और आपके जीवन में भी परिवर्तन आएगा। ये विशेष चर्चा कैसी लगी बताएगा जरूर 0202406025 पर। ऐसी अपडेट के लिए सुनते रहे।

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
1: शारदा। नमस्कार और स्वागत है आपका टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीवी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी।
2: जी
1: प्लीज कैरी ऑन।
2: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स में जीरो लापरवाही। टीबी की जांच में देरी ना करें, बलगम की सही जांच कराएं। टीबी की दवाइयों के कोर्स को नियमित रूप से लें, नहीं तो इलाज मुश्किल हो जाएगा।
1: तो मतलब इस क्लास का सार है, लापरवाही करना टीबी से सिर्फ आधी लड़ाई जीतना।
2: यस सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। ये आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है, अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं? एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
2: हाय, मैं अरुण, मुझे आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: जन्म के समय लगे कमजोर, 14 दिन बाद भी वृद्धि हो कम, छूने पर लगता हो ठंडा या फिर लगता हो गरम, जन्म के पहले दिन या 14 दिन बाद भी आंख और शरीर हो पीला या शरीर दिखता हो नीला, सांस लेने में हो परेशानी, अगर दूध पीने में हो कठिनाई, सांस चलती हो तेज या धंसी लगती हो छाती, त्वचा पर हो छोटी फुंसियां 10 या फिर दिखे बड़ा फोड़ा, नवजात लगे सुस्त या बेहोश या पड़ता हो उसको दौरा, फूला हुआ लगे पेट, हो दस्त या हो रहा हो किसी अंग से रक्त स्त्राव, कटा फटा हो होंठ, चिपका हो तालू, सर में पड़ी हो गांठ, समझ लो बच्चे की है हालत खराब। इन लक्षणों का तुम लेना सारा ज्ञान, अच्छे से सब कर लो इनका ध्यान, देखते ही ये लक्षण 102 एम्बुलेंस बुलाना और अपने बच्चे को तुरंत SNCU ले जाना। आपका ख्याल ही आपके परिवार को स्वस्थ रखता है, इसीलिए ना करना इन लक्षणों को नजरअंदाज, क्योंकि फर्क पड़ता है।
1: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत

अपनी सुरक्षा उपकरण हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड न करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन

0: साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: बम चिक चिक बम चिक बम बम बम चिक चिक।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं वही आपका मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, खेती किसानी और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। जो हमारे किसान बहन भाई खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं बेहतर होती है, क्योंकि जब कभी खेती में घाटा हो जाता है तो पशुपालन से वो भरपाई हो जाती है और एक संतुलन है वो बना रहता है। इसीलिए खेती के साथ साथ पशुपालन करना बहुत ज़रूरी है। और किसान मित्रों, आपको तो पता ही है कि गाँव में रहने वाले जो हमारे किसान बहन भाई हैं खेती के साथ साथ अधिकतर पशुपालन से अच्छी खासी कमाई कर अपनी आजीविका चला रहे हैं। आज पशुपालन व्यवसाय में अच्छी नस्ल के बछड़ा बछिया विभिन्न उद्देश्य से उनका पालन किया जा रहा है। जहां बछिया और पड़िया का पालन दुग्ध उत्पादन के लिए किया जाता है तो वहीं बछड़े का पालन खेती संबंधित कामों को पूरा करने के लिए किया जाता है। ऐसे में इनके खान पान और रहन सहन का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि बदलते मौसम का प्रभाव खेती के साथ साथ हमारे पशुओं पर भी पड़ता है और साथ ही साथ हमारे जो नवजात पशु हैं उनकी देखभाल करना तो बहुत जरूरी है। किसान मित्रों, गांव में बेहतर आमदनी के लिए लोग दुग्ध उत्पादन की ओर तेजी से बढ़े हैं और इसमें अच्छी आय होने के कारण भारत में डेयरी उद्योग तेजी से बढ़ा है। कृषि के क्षेत्र में पुरुष वर्ग खेतों में काम कर अन्न उत्पादन में लगा रहता है तो हमारी जो महिला हैं वो खेती के अलावा पशुपालन में लगकर घर में समृद्धि लाने में लगी रहती हैं। आपने देखा होगा गांव में अधिकतर जो महिलाएं होती हैं वो ही पशुपालन का काम देखती हैं। किसान मित्रों, हमारी भारतीय महिलाओं में बचत की प्रवृत्ति पाई जाती है। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं कुछ ना कुछ करके घर को मजबूत करने में लगी रहती हैं। गांव में आय के बेहतर रास्ते ना होने के कारण महिलाएं दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में लगी हुई हैं। गांव में पशुपालन के क्षेत्र में 70% महिलाएं लगी हुई हैं और पशुपालन कर दुग्ध उत्पादन में इन महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखी जा रही है। सहभागिता को अपनाकर महिलाएं न केवल सशक्त हो रही हैं बल्कि देश के आर्थिक ढांचे को भी मजबूत कर रही हैं। किसान मित्रों, आज के दौर में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिए डेयरी आय और रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। बात दुग्ध उत्पादन की करें तो लाखों भारतीय ग्रामीण परिवारों के लिए डेयरी एक सदियों पुरानी परंपरा रही है। दुग्ध किसी भी अन्य कृषि वस्तु की तुलना में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अधिक योगदान देता है। तो आपने जाना कि कितना जरूरी है खेती के साथ साथ पशुपालन करना। और किसान मित्रों, यहाँ पर आपको एक बात पर और गौर करने की जरूरत है कि खेती से तो हमें 3 महीने बाद 6 महीने बाद उत्पादन मिलता है लेकिन पशुओं से हमें कुछ ना कुछ मिलता रहता है। आजकल तो पशुओं के गोबर के कंडे भी बेचे जाते हैं और गोबर का बड़ा अच्छा खाद बनता है, वो भी हमारे किसान भाई प्लांट लगाकर उसको बेचते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि खेती के साथ साथ अगर आप पशुपालन करते हैं तो आपको और अधिक आर्थिक लाभ होता है। और जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जब कभी आपको खेती में घाटा हो जाता है, कभी कोई फसल आपकी अच्छी नहीं हो पाती है या बाजार अच्छा नहीं मिल पाता है तो उसकी भरपाई हमारे पशु अपने उत्पादन से कर देते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही पशुपालन बेहतर आमदनी का स्रोत। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं उपेंद्र राणा।

तो किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ये उपदेश, कलाकार थे उपेंद्र राणा। किसान मित्रों, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन आमदनी का एक बढ़िया स्रोत बन के सामने आया है और बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई अपनी खेती के साथ साथ इस व्यवसाय की तरफ भी रुख कर रहे हैं और ठीक ठाक मुनाफा कमा रहे हैं। सरकार भी कई सारी योजनाओं के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को मछली पालन की शुरुआत करने के लिए आर्थिक मदद भी प्रदान करती है। देश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार कई योजनाएं चला रही है। मछली पालन व्यवसाय में हमारे किसानों और युवाओं के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। अगर कोई किसान भाई या कोई युवा मछली पालन का व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो वो नीली क्रांति योजना का लाभ उठाकर अपनी आय को बढ़ा सकता है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए जितनी भी योजनाएं हैं उनको एक साथ सम्मिलित कर दिया गया और जिसका नाम रखा गया है नीली क्रांति योजना। इस योजना में मत्स्य बीज उत्पादन, मत्स्य की मार्केटिंग, मछुआरा बीमा समेत मत्स्य विकास के सारे सेक्टरों को रखा गया है। नीली क्रांति योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को अनुदान की भी सुविधा दी गई है। इस योजना में जिसमें सामान्य वर्ग के व्यक्ति के लिए सरकार ने 40% अनुदान की सुविधा रखी है, वहीं एससी एसटी या महिला वर्ग के लिए सरकार ने 60% अनुदान की सुविधा रखी है। अगर किसी किसान भाई को इस योजना के अंतर्गत लाभ लेना है

तो वो अपने जिले के जनपदीय कार्यालय में संपर्क कर आवेदन कर सकता है। तो किसान मित्रों, ये तो जानकारी रही नीली क्रांति योजना की। और किसान मित्रों, अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी, कलाकार हैं तरुण बाल्यान और किस्सा रहेगा सरवर

तो किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सरवर नीर के किस्से से ये रागनी। कलाकार थे तरुण बाल्यान। और किसान मित्रों, अब बात करते हैं किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ की, जो किसानों द्वारा बनाई गई एक सामूहिक संस्था है जिसका उद्देश्य बाजार में किसानों की सौदेबाजी की क्षमता बढ़ाना, उत्पादन लागत कम करना और उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। ये एक पंजीकृत कानूनी संस्था है जो कृषि उत्पादों के सामूहिक एकत्रीकरण, इनपुट की थोक खरीद, बाजार तक सीधी पहुंच और मूल्य संवर्धन जैसी व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से हमारे किसानों को स्केल की अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने में मदद करती है। हमारे सीमांत, छोटे और भूमिहीन किसानों को एफपीओ के रूप में एकत्रित करने से बाजार संपर्क बढ़ने में मदद मिलती है, जिससे हमारे किसान भाइयों की आय और आर्थिक मजबूती में सुधार हुआ है। ये छोटे किसानों को संपूर्ण सेवाएं और सहायता प्रदान करता है और विपणन, तकनीकी सेवाएं, प्रसंस्करण और खेती के अन्य पहलुओं को कवर करता है। एफपीओ छोटे किसानों को एक साथ जोड़ते हैं और एक कानूनी इकाई के रूप में पंजीकृत होते हैं। वे अपने सदस्यों की उपज का एकत्रीकरण करते हैं और सामूहिक रूप से बाजार में बेचते हैं। ये संगठन हमारे किसान भाइयों को ऋण, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। तो किसान मित्रों, आपके पास भी अगर कोई किसान उत्पादन संगठन है तो आप उससे जुड़ सकते हैं, या फिर आप भी 10-20 किसान मिलकर के किसान उत्पादन संगठन बना सकते हैं और फिर इसके द्वारा जो लाभ मिलते हैं आपको, उसका फायदा आप उठा सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ की। और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं बलराम बैसला।

किसान मित्रों, बलराम बैसला द्वारा गाए गए इसी उपदेश के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था मुझे पूरा करना ही होगा।
2: लो माँ भी आ गई। माँ देखो तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना।
1: ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का।
3: हाँ माँ जी।
4: जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा। देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग डेढ़ गुना ज्यादा खतरा। याद रहे वादा पहले घंटे की सुरक्षा का।
5: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

अपनी ससुराल में पहुंच गई और कई रोज गुजर गए, लेकिन जिसके साथ ब्याही थी नीरज उर्मिला से मिलने के लिए नहीं आई।

वियोग और कलह का कारण बन गया। और एक दिन उर्मिला ने अपनी ननद के हाथों अपने प्राणनाथ को बुलवाया तो यूं कहने लगी,

0: बात तो सुनो,
1: दो सुना
0: के आप मुझे इतना परेशान मत करो, जो आप कहते हुआ है नहीं वो मैं अपने घर जाके अपने माँ बाप से कहकर सारी चीजें दिलवा दूंगी तुम्हें।
1: तो ये तो बहुत अच्छी बात है,
0: लेकिन आप मुझे इतना परेशान मत करो।
1: लेकिन विश्वास नहीं होता
0: अच्छा
1: कि सामान मिल जाएगा।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ। बात हेल्थ की, मैं आज हम बात करने जा रहे हैं हल्दी, मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं इसके कुछ लाभ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे देश में मसालों का भंडार है। घर की रसोई हो या फिर किसी ढाबे और रेस्टोरेंट की रसोई, हर जगह आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अदरक, मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या हैं। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाए। अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन्स का संयोजन होता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है। तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें। तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।
3: मेहरबानो, ये सब कुछ विश्वामित्र खेल खेल रहा था, जहरी नाग बन के रोहताश रच लिया और आज फिर मालन का भेष भर के रामलाल की बस्ती में पहुंच गया। तो किस तरह थे रोहतास की मां ने मालूम पड़ी दोस्तों, बेटे के बैराग में और बागीचे में पहुंच गई तो कैसे अपने

तो ये प्रोग्राम चंदा केसिक के वास्ते आप लोग सुन रहे हैं, जिसमें मास्टर हंसराज, दादा रिशाल, लश्करी जी, पंसूरी वादक जगदीश सिंह और हमारे कोशिंदर और ऋषिपाल

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

माँ का होने के बाद बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उसे अतिरिक्त पोषण की जरूरत होती है और ये बड़ी हुई जरूरत केवल माँ के दूध से पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए 6 माह पूरे होने पर बच्चे को ऊपरी आहार देना शुरू कर देना चाहिए। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो श्रोता 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हिंदुस्तान की परंपरा यही रही है कि हिंदुस्तान में नारियों को पूजा जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, लेकिन जब कहीं कहीं कोई घटना घट जाती है जहां नारी का अपमान होता है तो दिल बहुत दुखित होता है। सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट संस्था मिलकर एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है हिंसा को नो। इसके अंतर्गत बहुत सारे विषय हैं जिसके बारे में हम लगातार बात करते आ रहे हैं और बातें करते रहेंगे। यूं कहें कि कुछ खास बिंदुओं को हमने उठाया है और उस विषय पर हम बातें करेंगे, जैसे बेटियां हैं तो वंश है, प्रजनन अधिकार, इसके अंतर्गत बातें आती हैं भ्रूण हत्या, लिंगानुपात, बेटे होने पर उत्सव और रिवाज, दूसरा विषय बालिका या वधु, इसके अंतर्गत बात आती है बचपन का हनन, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना, तीसरा विषय खतना, धर्म नहीं दर्द, इसके अंतर्गत बातें सामने आती हैं बाल उम्र में शारीरिक दर्द, रिवाज और विश्वास, कानूनी सलाह, पितृ सत्ता, असमान व्यवहार, असमान दिशा, बातें होंगी भेदभाव और समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, एक ऐसा विषय है माँ मुझे बाहर जाना है, इसके अंतर्गत बातें आती हैं कि घर और आस पड़ोस के दायरे, घर या घर के बाहर सवालिया सुरक्षा, विषय ये भी है कच्ची उम्र की शिक्षा यानी बदलती शारीरिक संरचना और किशोरावस्था में अपराधी मानसिकता से बचने हेतु सीखने योग्य बातें, कैसे बचे मनचलों से, बातें होंगी इंटरनेट का जाल, अच्छा स्पर्श, बुरा स्पर्श, ब्लैकमेल, रिश्तेदारों द्वारा छेड़खानी और चुप्पी, ये बातें होंगी कैसे बचे मनचलों के अंतर्गत, दहेज प्रथा या हत्या, इसके अंतर्गत बात सामने आती है दहेज प्रथा के दुष्परिणाम, सामाजिक हैसियत का दिखावा, अगला विषय मेरी पत्नी मेरा अधिकार यानी वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार, ये कुछ ऐसे विषय है, कुछ ऐसी थीम है जिसके अंतर्गत हम बातें आपके सामने लेकर आएंगे एक रिसर्च के माध्यम से। सुनो शारदा 90.8 FM ने हाथ मिलाया है रेडियो अमेठी के साथ और रेडियो अमेठी ने हाथ मिलाया है हमारे साथ, यानी सुनो शारदा 90.8 FM के साथ एक समझौते के तहत एक दूसरे के कार्यक्रम हम यहां से प्रसारित कर रहे हैं और हमारे कार्यक्रम वो अपने स्टेशन से प्रसारित कर रहे हैं। तो रेडियो एमिटी का धन्यवाद करते हुए आइए सुनते हैं हिंसा को नो के अंतर्गत ये खास कार्यक्रम।

0: एक खास कार्यक्रम हिंसा को नो, जिसका उद्देश्य है घरेलू हिंसा और महिला उत्पीड़न जैसी कुरीतियों को समाज से दूर हटाना और लोगों को इसके बारे में जागरूक करना। मैं बोल रही हूँ श्रेया और आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे शो पे जिसका नाम है हिंसा को नो। दोस्तों, हमने अपने पिछले एपिसोड में जेंडर आधारित हिंसा के बारे में बातचीत की थी। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आर्थिक हिंसा के ऊपर। आर्थिक हिंसा का क्या मतलब है, आइए जानते हैं। जैसे कि पुश्तैनी संपत्ति और पैसों से जुड़े अधिकार न देना, भोजन, कपड़ा, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल से वंचित रखना, महिलाओं को काम करने से रोकना, खर्च किए गए पैसों का उत्तेजित होकर हिसाब मांगना, दहेज की मांग मुफ्त में, सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोगों द्वारा पैसों से संबंधित उत्पीड़न करना आदि। आइए अब हम इस विषय में चर्चा करते हैं हमारी कम्युनिटी मेंबर विनीता जी से। विनीता जी हरियाणा के पास से नोएडा सेक्टर 125 से आती हैं। वहाँ एक प्राइवेट संस्थान में काम करती है, तो चलिए उनसे बातचीत कर लेते हैं। विनीता जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर कोई महिला अपने पति पे आर्थिक रूप से डिपेंडेंट है तो महिला को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है?
1: हाय श्रेया, हाँ, जैसे आप पूछ रहे हैं कि महिला अपने पति पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है तो वो किन परेशानियों का सामना करती है, इसका काफी परेशानियां हैं जो एक महिला को सहनी पड़ सकती हैं। मान लीजिए वो पूरी तरह फाइनेंशियली डिपेंडेंट है अगर अपने हस्बैंड पे, तो वो हर एक चीज के लिए, कहते हैं ना, पाई पाई के लिए मोहताज भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि यू नो वो आपका जो हस्बैंड है या पति है वो फुल सपोर्ट करते हैं, वो आपको वो सपोर्टिव हो, यू नो हर एक छोटी चीज के लिए उनको हाथ फैलाना पड़ सकता है। यू नो घर चलाने के लिए 100 चीजें एक घरेलू महिला को देखनी होती है, तो हर एक छोटी छोटी चीज के लिए उनको वापस बार बार जाना पड़ता है। एक घर चलाने के लिए ना, मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी घर चलाती हूँ, तो 10 हर एक तरह का खर्चा होता है, बच्चों की पढ़ाई है, राशन है और भी खर्चे होते हैं, तो इन सब चीज

0: होना ही चाहिए।
1: इसका क्या समाधान निकाल सकते हैं, कैसे इन परेशानियों से बाहर निकल सकती है महिला?
0: देखिए, मुझे क्या लगता है, फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना तो एक बहुत अच्छी बात है। जैसे हम कहते हैं कि हम सब लोगों को कहते हैं, सब लड़कियों को, कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाइए, मगर कैसे हो जाइए, हमें ही वो कदम उठाने पड़ेंगे उन लड़कियों के लिए। सबसे पहले, सबसे इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस, जागरूकता, कि कैसे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनेंगे। और वो कैसे आएगी, जब तक वो लड़की शिक्षित नहीं होगी। सो सबसे जो अहम मुद्दा है वो है लड़कियों की शिक्षा का मुद्दा। उनको आपको पढ़ाना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा, और पढ़ाने से ही कुछ नहीं होगा, उनको पढ़ाने ये भी समझाना पड़ेगा कि आप जो अपने खर्चे हैं, अगर आप मान लीजिए कुछ पैसा कमा रही हैं, तो उसको आपको कैसे उसको साथ में लेके चलना है, उस परिवार को साथ में लेके कैसे चलना है। सिर्फ पैसा कमाना ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होती, उस पैसे से आप आगे कैसे उसको राउट करते हैं अपनी गृहस्थी में, कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं उसका, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो शिक्षा तो सबसे अहम है लड़कियों के लिए। आजकल भी हम देखते हैं, पढ़ते भी हैं हम लोग, कि कई कई जगहों पे लड़कियों को मना कर दिया जाता है शिक्षा के लिए, स्कूल नहीं भेजा जाता है। आप दूर की बात क्यों लेते हैं, आसपास के, दिल्ली के आसपास में कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पे कुछ उम्र की लड़कियों को बोल दिया जाता है कि आप इसके बाद स्कूल नहीं जाएंगी, क्योंकि आपको घर ही संभालना है। कि आखिर में क्या करना है, शादी करके घर ही तो संभालना है।
1: इनफैक्ट मैम, नोएडा के आसपास जितने भी गांव हैं, छलेरा, भंगेल, वहां पे भी हम लोग जाते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं हमारे मेंबर्स से, तो वहां पे भी ये सब थोड़ा बहुत अभी भी है। लोगों को अवेयर करने की जरूरत है।
0: हाँ, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और ये क्या है कि हमें एज अ कम्युनिटी मेंबर, एज अ रिस्पॉन्सिबल कम्युनिटी मेंबर, ये हम लोगों को ही शुरू करना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ, जैसे हमारी मेड्स हैं हमारे यहाँ जो काम करने आती हैं, हम उनको एनकरेज कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं कि आप अपने बच्चियों को भेजिए, पढ़ाइए, उनको समझा सकते हैं। हम अपने तरफ से एक छोटी सी पहल कर सकते हैं कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए। तो अगर हर एक कोई ये छोटा छोटा एक स्टेप लेगा तो उसी से काफी बदलाव आएगा। सो मेन मुझे क्या लगता है, शिक्षा सबसे इम्पॉर्टेंट है, गर्ल एजुकेशन जिसको बड़ा एक मुद्दा मानना है, सरकार भी काफी इस पे कर रही है काम। तो मेन है एजुकेशन लड़कियों का, और अवेयरनेस, एजुकेशन के साथ साथ अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ पढ़ाने लिखाने से श्रेया इसका समाधान नहीं है, उसमें अवेयरनेस, आपका थोड़ा और इनपुट, हम जैसे पढ़े लिखे लोगों का, जो हम जैसी महिलाएं हैं, जो हम समझ सकती हैं दूसरों पे क्या बीत रही है या क्या बीत सकती है, तो उनका सहयोग ऐसी महिलाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है,
1: ताकि वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र रह सके,
0: उन्हें समझ आ सके कि कैसे करना है,
1: घर को चलाना है,
0: खुद के लिए खड़ी हो सके, दूसरों
1: के सामने हाथ फैलाने की बजाय खुद कुछ करके दिखाए, खुद कमाए। जैसे कि आप इस वक्त कर रही हैं, एक वर्किंग वुमेन है, ठीक है, ऑफिस में काम करती हैं, सच में बहुत अच्छा कर रही हैं, और
0: थैंक यू जी। नहीं, ये तो है ही, आपको ना, ये हमें, हमारी, मुझे ऐसा लगता है ये हमारी एक सोशल ऑब्लिगेशन है सोसाइटी के लिए, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, या कोई और भी यहाँ पे जो महिलाएं काम कर रही हैं, दे हैव टू एनकरेज अदर वुमेन कि आप प्लीज आगे बढ़िए और करिए ये सब, तो आप ही के फायदे के लिए, आप ही के हित में है ये।
1: बिल्कुल, जैसे कि अगर कोई महिला इंडिपेंडेंट होती है तो उसमें अलग सा कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है, क्या उन्हें भी किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है?
0: हाँ, देखिए, पहली बात तो कॉन्फिडेंस तो आता ही है जब आप खुद ही, जैसे कहते हैं ना, आत्मनिर्भर बनते हैं, तो आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैं कमा रही हूँ, हाँ मैं इंडिपेंडेंट हूँ। वो आपको उस महिला को, या चलिए उस इंसान को देख के एक आपको एक फील आ जाता है कि हाँ वो आत्मनिर्भर है, वो कर सकते हैं, वो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि मैं अकेले इन परेशानियों का सामना कर सकती हूँ या झेल सकती हूँ। अगर कोई बहुत ही विपरीत परिस्थिति है तो आदमी फिर भी खड़ा हो जाता है, या औरत फिर भी खड़ी हो जाती है कि हाँ, इसमें सिचुएशंस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपकी ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि मान लीजिए आपके हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है, कई आपको घरेलू हिंसा, फिर से इसमें एक मुद्दा आता है कि अगर आपके किसी गृहस्थी में उसका पति जैसे अगर शराब पी के आ रहे हैं ना, तो वो घरेलू हिंसा पे रिजल्ट करती है, तो उसके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का भी क्या फायदा कि अगर वो उसी घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है तो।
1: कभी कभार मैंने ऐसे भी देखा है कि पति कमाते नहीं है, सिर्फ

0: पत्नी कमाती है तो फिर वो दारू पी के आते हैं और मारपीट करते हैं अपनी पत्नी के साथ, उनसे पैसे छीन लेते हैं ताकि वो अपने दारू का खर्चा चला सके
1: या अपने खर्चे
0: अपने खाने पीने के लिए।
1: हाँ जी, तो ऐसे में वही बात है कि यू नो अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है लड़की को। जो मैं बार बार ये कह रही हूँ एज अ गर्ल चाइल्ड, एज अ यू नो एज अ मदर, मैं कहना चाहती हूँ कि अवेयरनेस और कॉन्फिडेंस, अवेयरनेस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अवेयरनेस कि हमें आत्मनिर्भर कैसे बनना है, ये परिस्थितियां क्या है जिंदगी में, परिस्थितियां जो विपरीत परिस्थितियां हैं वो बता के तो आती नहीं है, तो उस समय आप कैसे खड़े हो जाएंगे और कैसे उनको वो करेंगे, फेस करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
0: जी जी जी, आइए अब वक्त हो चला है कहानी का। इस कहानी के माध्यम से हम आपको समझाएंगे दहेज प्रथा के बारे में और इसके द्वारा ये भी जानेंगे कि दहेज का लोगों पर किस प्रकार असर पड़ता है। सेठ मदनलाल शहर के प्रसिद्ध और सबसे धनी व्यापारी थे। उनके यहाँ नौकर चाकरों की पूरी टोली रहा करती थी। भगवान की कृपा से उनके घर लक्ष्मी जी धन वर्षा करती थी। सेठ मदनलाल की एक सुंदर सुशील और शिक्षित बेटी थी जिसका नाम था कल्पना। कल्पना अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, इसलिए लालन पालन में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। माँ बाप का प्यार भी भरपूर मिलता था उसको। सेठ के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई चिंता न थी, किंतु कहते हैं ना, जिसके घर बेटी जन्म लेती है उस घर माँ बाप को चिंता होने लगती है। कल्पना पढ़ लिख कर शादी के योग्य हो गई। माँ बाप को कल्पना की शादी की चिंता सताने लगी। जगह जगह योग्य वर ढूंढने के लिए रिश्ते नाते के लोगों को लगाया गया। काफी तलाश के बाद 2.5 साल के बाद एक योग्य वर ब्रजपाल की तलाश हुई। ब्रजपाल चौधरी सत्येंद्र का पुत्र था। नाम से ही पता चलता था कि चौधरी सत्येंद्र धन से भी चौधरी है। सेठ मदनलाल ने चौधरी सत्येंद्र से अपनी पुत्री कल्पना के लिए ब्रजपाल से ब्याह कराने की बात की। चौधरी सत्येंद्र ने कल्पना से अपने पुत्र के विवाह का आश्वासन सेठ को दिया। चौधरी जानता था सेठ की कोई और संतान नहीं है, कल्पना उसकी इकलौती संतान है और सेठ की उम्र 50 साल से ऊपर है, अर्थात अब इसकी कोई संतान नहीं हो सकती। ऐसा लालच उसके मन में आया और उसने विवाह के लिए तत्काल हाँ कर दिया। लग्न मुहूर्त देखकर दोनों ओर से खूब उत्साह और जोश के साथ विवाह किया गया। सेठ मदनलाल की इकलौती बेटी का विवाह था, इसलिए सेठ धन का लोभ नहीं करते थे। वह जी खोल कर अपनी बेटी की शादी में धन लुटा रहे थे, अर्थात खर्चा कर रहे थे। चौधरी सत्येंद्र भी जानते थे कि उनके पास धन का भंडार आ रहा है, इसलिए वह भी सामर्थ्य से ज्यादा विवाह में खर्च कर रहे थे। कल्पना और ब्रजपाल का विवाह संपन्न हुआ। दोनों अपने वैवाहिक जीवन को जी रहे थे। कल्पना भी अपने ससुराल में खुश थी। ससुराल वाले भी कल्पना के स्वभाव से प्रसन्न थे। कल्पना के स्वभाव से रिश्तेदारों में भी कोई नाराजगी नहीं थी। सभी कल्पना के स्वभाव की तारीफ करते कहते थे, इस जैसी बहू मिलना मुश्किल है। कुछ समय विवाह के बीत जाने के बाद सेठ मदनलाल के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, अर्थात कल्पना को एक भाई मिल गया जिसे वह राखी बांध सकती थी और उसको अपना भाई बोल सकती थी। सेठ के घर खुशियों की छड़ी लग गई। बेटी का विवाह हुआ, अच्छा घर मिल गया, इसकी तो अपार खुशी थी ही, किंतु पुत्र रत्न की प्राप्ति लंबी प्रतीक्षा के बाद हुई और वह खुशी को दोगुना करने वाली बात थी। सेठ मदनलाल के घर पुत्र का जन्म सुनकर कल्पना के ससुराल वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई, जैसे उनकी सारी संपत्ति छिन गई हो। उन्होंने शादी इस लालच में की थी कि वह मदनलाल के सारे संपत्ति को एक दिन प्राप्त कर लेंगे, किंतु बेटे के जन्म के बाद यह मुश्किल हो गया था। भाई के मिल जाने से कल्पना के जीवन में खुशी आनी चाहिए थी, किंतु ये उसके लिए दुख का कारण बन गया। सास ससुर पति सभी अब कल्पना को दुख देने लगे थे और उसे प्रताड़ित करने लगे थे। दहेज और धन के लालच में कल्पना को मारते पीटते और दिन भर भूखा रखते थे। हर दिन एक नई डिमांड रखी जाती, कभी उसके मायके से एसी मंगवाते तो कभी कार। कल्पना को जरूरी सामान खरीदने के लिए पैसे भी नहीं देते थे। उसके ससुराल वालों ने उसे पैसों के लिए तरसा दिया था। जो लड़की अपने मायके में राज करती थी उसे माँ बाप पलकों पे बिठा के रखते थे, वहीं अब ससुराल वाले उस पर अत्याचार कर रहे थे। बेचारी वहाँ रहकर तिल तिल मर रही थी। किंतु कल्पना के आदर्श इतने ऊंचे थे, उसने अपने माता पिता को इस यातना और कष्ट के बारे में भनक तक नहीं लगने दी। सेठ कल्पना से मिलने और अपने बेटे की छठी अर्थात नामकरण संस्कार में निमंत्रण देने के लिए खुशी खुशी ससुराल पहुँचे। चौधरी और ब्रजपाल सेठ को देखकर असमंजस में पड़ गए कि वह कल्पना से कैसे मिलवाएंगे। सेठ सभी घटना को जान जाएगा और हमारे विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। तत्काल उन्होंने निष्कर्ष निकाला और कल्पना को समझाया, किसी भी प्रकार की बात अपने पिता को बताई तो अच्छा नहीं होगा। अनेकों प्रकार की धमकियां देकर कल्पना को उसके पिता से मिलवाया गया। बेटी भी कर्तव्यनिष्ठ थी, उसके संस्कार पुराने थे, इसी आदर्शों से वह बंधी हुई थी। कल्पना ने पिता का खूब स्वागत सत्कार किया। बैठे बैठे अनायास उसके आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। पिता कुछ समझ पाते इससे पहले बेटी बोलती है, पिताजी ये मेरे खुशियों के आंसू हैं। बचपन से मैं भाई के लिए तरसती थी, अब जाकर मुझे भाई मिला है जिसके कलाई पर मैं राखी बांध सकती हूँ। बस यही सोचकर मेरी आंखों से आंसू निकल गए। पिता को ये बात समझ नहीं आई। कुछ शंका और कुछ डर के कारण अधिक बातों को कुरेदा नहीं। सेठ नामकरण संस्कार में सभी को न्योता देकर अपने घर वापस लौट आए। ब्रजपाल ने कल्पना को परेशान करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तुम अपने पिता से जायदाद में आधा हिस्सा मांगो, घर में पैसे लेकर आओगी तभी इस घर में रह पाओगी, अगर नहीं लेकर आई तो अपनी शक्ल इस घर में दिखाना भी मत। कल्पना रोती रोती अपने मायके पहुँच गयी, जाकर सारी बात अपने माता पिता को बताई। मदनलाल ने कल्पना के ससुराल वालों को बुलाने का फैसला कर लिया। जब सभी आए, चौधरी सत्येंद्र के चेहरे पर अलग ही खुशी दिख रही थी। उसे लग रहा था कि फैसला उनके हक में होगा, लेकिन जरूरी नहीं जैसा सोचा है वैसा ही हो। सेठ मदनलाल बोला कि वो अपनी आधी संपत्ति कल्पना के नाम कर देगा, क्योंकि ये उसका अधिकार है। बेटा हो या बेटी, दोनों को बराबर हक मिलेगा। मदनलाल ने फिर अपनी बेटी को समझाया कि मारपीट सहना गलत बात है, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ना कि चुप रहकर सब कुछ सहते जाना है। संस्कारों की बात अलग है, वे अपनी जगह हैं, लेकिन जहां गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने में ही भलाई है। फिर कल्पना से पूछा गया कि वो आगे क्या करना चाहती है। कल्पना का कहना था कि जिस रिश्ते में सम्मान नहीं हो वो उस रिश्ते को आगे नहीं निभा सकती, चाहे वो अकेली जिएगी लेकिन पूरे आत्मसम्मान के साथ। फिर क्या हुआ जानना चाहते हैं? चलिए मैं बताती हूँ। कल्पना ने अपना अलग घर बसा लिया, अपने पिता से उसको आर्थिक मदद मिली। अब कल्पना का खुद का बुटीक है जहां वो औरतों को सिलाई बुनाई का काम सिखाती है और साथ में ये भी सीख देती है कि गलत के खिलाफ आवाज उठाना ये भी एक संस्कार है। दूसरी ओर ब्रजपाल और उसके घर वालों को मारने पीटने के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। अब वे लोग पुलिस की हिरासत में हैं। चलिए दोस्तों, मेरे जाने का वक्त हो चला है। मुझे दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो अमेटी 107.8 FM। हमने अपने आज के एपिसोड में आर्थिक हिंसा के बारे में जाना, लेकिन अभी एक और चीज जानना बाकी है और वो है कानून। कानून क्या कहता है आइए जानते हैं।
2: जी नमस्कार, मैं हूँ सुमित्रा सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर एट अमेठी लॉ स्कूल नोएडा और लीगल अवेयरनेस एंड लिटरेसी कमेटी की को कन्वीनर। तो आज हम बात कर रहे हैं राइट ऑफ वुमेन टुवर्ड्स प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहले बताना चाहूंगी, आजादी से पहले की अगर हम बात करें हमारे देश में, तो मिताक्षरा लॉ और दयाभागा लॉ को ही कंसिडर किया जाता था राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर। इसके बाद बात करेंगे हम वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। तो उस समय एक बहुत ही पेट्रियार्कल सेटअप होता था और ये माना जाता था 1937 से पहले कि विमेन को प्रॉपर्टी में राइट जरूर होगा, लेकिन हर राइट टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी वॉज क्वालिफाइड बट कंसिडर्ड बाय द पेट्रियार्कल सेटअप एज नेसेसरी लेस्ट शी बिकेम टू इंडिपेंडेंट एंड निग्लेक्ट हर मैरिटल ड्यूटीज एंड द मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड अफेयर्स. का मतलब ये है कि आप एक पेट्रियार्कल सेटअप में रह रही थी और उसमें आप अपनी मैरिटल ड्यूटीज और जो हाउस होल्ड अफेयर्स है अगर उसको निग्लेक्ट करके आप राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो उसको एक अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता था. और तब उनको राइट टू शी कुड इनहेरिट द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मिलती थी लेकिन क्लॉज यही था कि आपको जो है अपनी मैरिटल ड्यूटीज और हाउस होल्ड अफेयर्स को नहीं छोड़ना है. ये तो सिचुएशन हो गई जैसा मैंने आपको बताया आजादी से पहले 1937 से भी पहले. इसके बाद एक लॉ आया जिसे हम कहते हैं हिंदू विमेंस राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1937. उस एक्ट को भी इसलिए लाया गया क्योंकि एक जो समाज का एक वर्ग था वो काफी अनसैटिस्फैक्टरी था महिलाओं की राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर. अब इस लॉ में भी ये लॉ जो था ये भी विडोज को ज्यादा कंसिडर करता था और कहता था कि इस एक्ट में अ विडो वाज एंटाइटल्ड टू अ लिमिटेड इंटरेस्ट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड. कोई विडो होती है तो हस्बैंड के प्रॉपर्टी पर उनका एक लिमिटेड हक होता था और इसको कहा जाता था हिंदू विडोज एस्टेट. अब इस एक्ट को अमेंड किया गया था 1938 में टू एक्सक्लूड द विडो फ्रॉम एनी इंटरेस्ट इन द एग्रीकल्चरल लैंड. अब इसके बाद जो एक्ट आया राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर वो हम ज्यादातर जो पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं वो होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ द ईयर 1956 को लेकर. वो एक पहला लॉ ऐसा बना था जिसने एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम प्रोवाइड किया था इनहेरिटेंस को लेकर हिंदूज में, जैन्स में, सिखों में और बुद्धिज्म में. और वो जेंडर इनइक्वालिटी को हटाता था इन टर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस. अब ये जो एक्ट था ये एक एब्सोल्यूट राइट कॉन्फर करता है इंक्लूडिंग द अनफेटर्ड राइट्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी और मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी विच इज एक्वायर्ड बाय इनहेरिटेंस, डिमाइस, पार्टीशन इन लियू ऑफ मेंटेनेंस, एरियाज ऑफ मेंटेनेंस, गिफ्ट, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय द वुमेन हरसेल्फ, परचेज या प्रिस्क्रिप्शन या किसी भी मैनर में, या स्त्री धन जो कि इंक्लूड करता है ऑर्नामेंट्स, एपरल्स, गिफ्ट्स या कुछ भी जो वेडिंग में रिसीव की गई हो. अब यही एक्ट जो था इसको अमेंड किया गया 2005 में. तो अब इसे कहा जाता है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 जिसका कि सेक्शन 6 बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2005 में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया और ये डिक्लेयर किया दैट इंडियन वुमन वुड हैव एन इक्वल राइट टू अ शेयर इन प्रॉपर्टी एज मेन, ग्रांटिंग डॉटर्स द राइट टू इनहेरिट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अलॉन्ग विद द मेल रिलेटिव्स. तो इस एक्ट के अंतर्गत मेल और फीमेल इनहेरिटर, ये जो वर्ड है द डिफरेंस बिटवीन द फीमेल एंड द मेल इनहेरिटर हैज बीन अबॉलिश्ड. ओके, नाउ इवन द फीमेल इनहेरिटर द डॉटर शी कैन क्लेम द पार्टीशन ऑफ द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. अब जो सेक्शन 6 है ऑफ दिस अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द ईयर 2005 इट प्रोवाइड्स फॉर पैरिटी ऑफ राइट्स इन द को पार्सिनरी प्रॉपर्टी यानी कि हम वारिस होंगे अमंग द मेल एंड द फीमेल मेंबर्स ऑफ अ ज्वाइंट हिंदू फैमिली. जो डॉटर है वो एंटाइटल्ड है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अपने हम वारिस बनने के लिए. द डॉटर इज एंटाइटल्ड टू अ शेयर इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड इज अ को पार्सनर एज इफ शी हैड बीन अ सन. कहने का मतलब ये है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बेटे और बेटियों का समान अधिकार है. इसके अंदर कुछ कैटेगरीज हैं जो एक्सेप्शंस हैं टू विच न्यू सेक्शन 6 इज नॉट एप्लीकेबल, जैसे कि वेयर द डिस्पोजिशन और एलिनेशन इंक्लूडिंग एनी पार्टीशन which took place before 20th 12 2004 तक अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्पोज नहीं की गई है या एलिनेट कर दी गई हो. और दूसरा ये वेयर टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी वॉज मेड बिफोर 2012 2004. अपने लिसनर्स को थोड़ी जानकारी और देना चाहूंगी कि जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा संविधान 50 के दशक में लागू हुआ था. सो वेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स दैट टाइम द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज गिवन अ फंडामेंटल स्टेटस. उसमें बेसिकली दो आर्टिकल्स थे, आर्टिकल 31 एंड आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, जो इंश्योर करता था दैट एनी पर्सन्स राइट अगेंस्ट हिज प्रॉपर्टी रिमेन्स प्रोटेक्टेड. लेकिन इसके बाद बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द ईयर 1978 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक नया आर्टिकल 300A इंसर्ट किया गया जिसने राइट टू प्रॉपर्टी को इस तरीके से डिफाइन किया. इट सेज दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज property save by the authority of law. This article provides restrictions on the state that it cannot take anybody's property without the force of law. Also interpreted, can be deprived of the force of the law. The word law here means a validity enacted law which is just, fair and reasonable. तो चलिए और अगले एपिसोड में हम और भी इसके बारे में वाइडली डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.
0: मैं आशा करती हूँ कि आपको इस कार्यक्रम हिंसा को नो से बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी और आप लोग इसे अपने समुदाय के साथ भी साझा करेंगे. अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं.
3: सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट संस्था मिलकर एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है हिंसा को नो. जिस विषय पर आज बात हुई, ऐसे तमाम विषय समय दर समय हम उठाते रहेंगे और आपके बीच लाते रहेंगे. इन खास जानकारियों को सुनना न भूलें. साथ ही साथ हम धन्यवाद कहना चाहेंगे रेडियो अमेठी का जिसने हमें ये सहयोग दिया और ये सहयोग हम भी ऐसे ही दूसरे स्टेशनों को समय दर समय दे रहे हैं क्योंकि वो भी हमारे खास कार्यक्रम अपने स्टेशन से प्रसारित कर रहे हैं. तो ये खास जानकारी आपको कैसी लगी, 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं. इसके अलावा 90.8 FM@sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए सुनते रहें ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. नमस्कार.
4: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। डेली रेजिमेंट के अंतर्गत अब टीबी मरीज को 6 से 8 महीने रोज दवा लेनी होगी। जहाँ पहले एक दिन में कई गोलियाँ लेनी पड़ती थी, आज आपको अपने वजन के हिसाब से मात्र 2 से 5 गोलियाँ ही लेनी पड़ेंगी। और बच्चों के लिए पानी में घुलने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। आप अपना इलाज सहयोगी किसी को भी बना सकते हैं, दोस्त, घर वाले, पड़ोसी या अन्य। तो आइए मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं। तो बात निकल कर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन B की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार, उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉन वेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: लेकिन दोस्त अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: 10 से 19 साल के बच्चे हर हफ्ते लें आयरन की सिर्फ एक नीली गोली। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निशुल्क उपलब्ध। एनीमिया फ्री इंडिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। एचआईवी और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक एचआईवी रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग एचआईवी को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर एचआईवी रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर एचआईवी मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी एचआईवी की जांच कराएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को अजीत का नमस्कार
3: और विमलेश का भी नमस्कार। श्रोताओं, आप लोगों द्वारा भेजे गए पत्र और संदेश सचमुच हमारा उत्साह बहुत बढ़ाते हैं।
2: आज श्रोताओं, इसलिए हम और अधिक प्रयास करते हैं कि उमंग कार्यक्रम को कैसे और अधिक रोचक बनाया जाए।
3: तो इसी प्रकार से हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए और
2: संदेश के साथ साथ सुविचार भी भेजते रहिए। तो आइए अब सुनते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
3: हमारा पहला प्रश्न था,
2: हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, उनका नाम और उपनाम क्या है?
3: इसका उत्तर है, मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है। उनका असली नाम था श्री धनपत राय श्रीवास्तव।
2: और श्रोताओं, अब हमारा दूसरा सवाल था, मोहनदास करमचंद गांधी को दो उपाधियां मिली थी, राष्ट्रपिता और महात्मा, ये नाम किसने दिए थे?
3: तो साथियों, इसका सही उत्तर है, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने और महात्मा की उपाधि दी थी महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने।
2: जी, हमारा तीसरा प्रश्न था, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने लिखा था?
3: तो इसका सही जवाब है, महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख लिखा था।
2: और अब हमारा चौथा प्रश्न था कि किस राज्य या संघ राज्य को फलों की टोकरी कहा जाता है? आपके विकल्प थे उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, गोवा और हिमाचल प्रदेश।
3: तो साथियों, इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश।
2: जी हाँ, हिमाचल प्रदेश को फलों की टोकरी भी कहा जाता है। और हमारा अंतिम प्रश्न था श्रोताओं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष और सरदार का विशेषण किसने दिया था?
3: तो इसका सही उत्तर है साथियों, महात्मा गांधी जी ने बारडोली सत्याग्रह में अपने महान संगठनात्मक कौशल के लिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार और लौह पुरुष की उपाधि दी थी।
2: तो श्रोताओं, आइए, ये तो हुए पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो आइए अब सुनते हैं आज का सुविचार।
3: तो आज का सुविचार है, परिश्रम करने की उम्र में यदि आराम करेंगे तो आराम करने की उम्र में परिश्रम करना पड़ेगा।
2: परिश्रम करने की उम्र में यदि आराम करेंगे तो आराम करने की उम्र में परिश्रम करना होगा। और ये सुविचार हमें भेजा था ग्राम खकल, तहसील कोंच, जिला जालौन, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से ठाकुर दीपक सिंह गुर्जर ने।
3: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी।
2: और श्रोताओं, हमें संदेश जिन श्रोताओं ने भेजा था उनके नाम अब इस प्रकार से हैं, ग्राम पजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, श्रीमती कल्पना चंसौलिया,
3: राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण,
2: यवतमाल विदर्भ यानी महाराष्ट्र से संतोष खड़ से और विनोद खड़ से,
3: करगी रोड, कोटा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से एकता गुप्ता, उषा, ज्ञानचंद्र गुप्ता, आस्था, अभय, जयदीप गुप्ता,
2: और अपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान, अरजान, अबान और परिवार के अन्य सभी सदस्य गण।
3: तो आइए अब सुनते हैं आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न। प्रश्न है,
2: संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है?
3: प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं,
2: संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है?
3: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे चिरपरिचित नंबर 8800440559 पर।
2: और हमारा ईमेल भी याद रखें, यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप हमारे प्रश्नों के उत्तर या अपना संदेश भेज सकते हैं।
3: तो श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है लंका विजय भाग दो।
2: जी हाँ, पिछली बार आपने सुना था भाग एक।
3: जी।
2: और अब प्रस्तुत है भाग दो।

0: अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु से रावण एकदम टूट गया, विलाप करने लगा, मूर्छित हो गया। होश आया तो उसकी दशा पागलों जैसी थी, क्रोध से बिलबिलाता हुआ।
1: लंका अनाथ हो गई, अब उसका कोई सहारा नहीं, अब मैं स्वयं रणक्षेत्र में जाऊंगा।
0: लक्ष्मण के साथ वानर सेना भी महल में प्रवेश कर गई थी। उनके हाथों में जलती हुई मशालें थीं।

जगत ने नरांतक का काम तमाम कर दिया। लक्ष्मण ने अतिकाय का सिर काट डाला। राक्षस सेना हाँक खड़ी हुई। रावण के पास अब कोई विकल्प नहीं था। युद्ध नाद हुआ।

0: अकेला बचा रावण युद्ध के लिए निकला। फुक्कारते हुए हन कुचले सांप की तरह वो जिधर मुड़ता भगदड़ मच जाती। वानरों को भागते देख लक्ष्मण आगे आए, धनुष बाण लिए रावण के सामने अभेद्य दीवार की तरह खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में विभीषण वहां पहुंच गए। उसके बाद राम उनके सामने रावण की एक ना चली। विभीषण को राम की सेना में देख रावण उबल पड़ा। उसके लिए ये देशद्रोह था, छोटे भाई का विश्वासघात। उसने विभीषण पर निशाना लगाया। लक्ष्मण ने वो बाण बीच में ही काट दिया। उसने दूसरा घातक बाण चलाया। इस बार लक्ष्मण बीच में आ गए। उन्होंने विभीषण को अपने पीछे छिपा लिया। बाण लगते ही लक्ष्मण अचेत हो गए, गिर पड़े। राम ने ये देखा, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं, आग बरसने लगी। उन्होंने लक्ष्मण को सुग्रीव की निगरानी में छोड़ा और रावण को चुनौती दी। कहा,
1: रावण, काल तुझे मेरे सामने ले आया है। आज अन्याय पर न्याय की विजय होगी, तेरा अंत निश्चित है।
0: उधर हनुमान लक्ष्मण को उठाकर रण क्षेत्र से दूर ले गए। वैद्य सुषेण को बुलाया। हनुमान संजीवनी बूटी लाए। चिकित्सा शुरू हुई। धीरे धीरे रक्त का रिसाव बंद हो गया, घाव भर गया। संजीवनी का प्रभाव चमत्कारी था। सुग्रीव ने लक्ष्मण के स्वस्थ होने की सूचना राम तक पहुंचाई। वो सिंह की भांति रावण पर टूट पड़े।

राम रावण युद्ध भयानक था। शस्त्रों की गति से कपा देने वाली ध्वनियां निकल रही थी। हवा थम गई थी। सूरज बादलों के पीछे छिप गया था। शस्त्रों की चमक बिजली की तरह कौंध रही थी। गड़गड़ाहट थी, थर्रा देने वाली। दोनों योद्धा अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे।

कोई एक रत्ती भी पीछे खिसकने को तैयार नहीं। कुछ ही देर में लगा कि युद्ध समाप्त होने को है। दोनों पक्ष के योद्धा हाथ बांधकर खड़े हो गए। छोटे छोटे युद्ध थम गए। सबकी नजरें राम और रावण पर थी। सबकी आंखें फटी रह गईं, पलकें झुकना भूल गईं। उन्होंने ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन महासंग्राम समाप्त नहीं हुआ था। रावण का एक बाण राम को लगा, उनके रथ की ध्वजा कटकर गिर पड़ी। राम ने प्रहार किया, बाण रावण के मस्तक में लगा, रक्त की धारा बह निकली। बीच में युद्ध कुछ पल के लिए रुका। रावण अपने महल चला गया, घोड़े और रथ बदलने। राम को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। युद्ध फिर शुरू हुआ। अब उनके रथ एक दूसरे के सामने थे। योद्धा आंखों में आंखें डालकर देख सकते थे। घोड़ों के मुंह मिल गए थे। राम के बाणों ने रावण के रथ का मुंह मोड़ दिया। ये पराजय का संकेत था। रावण हिम्मत हारने लगा। जब तक वो रथ घुमाता, राम का एक बाण उसके पार निकल गया। रथ मुड़ा, लेकिन रावण के हाथ से धनुष छूट गया। वो पृथ्वी पर गिर पड़ा, मारा गया। बची हुई राक्षस सेना हड़बड़ा गई, जान बचाकर भागी।

0: उनका दिशा ज्ञान शून्य हो गया। जिसे जिधर अवसर मिला भागा। कुछ राक्षस वानर सेना की ओर दौड़ पड़े, कुछ भागते हुए समुद्र में जा गिरे। लंका का विजय अभियान पूरा हुआ। राम की जयकार होने लगी। कुछ समय पूर्व का रण क्षेत्र एकदम बदल गया। शस्त्रों की टंकार की जगह किलकारियों ने ले ली। वानर सेना उछल कूद करने लगी। समुद्र से ठंडी हवा आ रही थी। शस्त्रों से उत्पन्न गर्मी वो अपने साथ बहा ले गई। कोलाहल तुमुल नाद में परिवर्तित हो गया। प्रसन्नता सर्वव्याप्त थी। रण क्षेत्र में केवल एक व्यक्ति दुखी था। शोक से व्याकुल विलाप करता हुआ अपने भाई के मृत शरीर के पास खड़ा।
1: ओ बंधु,
2: मित्र विभीषण, शोक मत करो। रावण महान योद्धा था। उसकी अंत्येष्टि महानता के अनुरूप होनी चाहिए। मित्र, मृत्यु सत्य है, उसे स्वीकार करो।
1: प्रभु,
0: राम ने एक एक वानर का आभार माना। सुग्रीव को गले लगा लिया। लक्ष्मण से विभीषण के राज्याभिषेक की तैयारी करने को कहा। चाहते थे कि रावण की अंत्येष्टि के बाद राज तिलक हो, उसमें विलंब न किया जाए। उन्होंने हनुमान को बुलाया, अशोक वाटिका जाने का निर्देश दिया।
2: हनुमान प्रभु, ये संदेश आपको ही सीता तक पहुंचाना है।
3: जैसी आज्ञा प्रभु।
2: उन्हें लंका विजय का समाचार दीजिए। उनका संदेश लेकर शीघ्र आइए
3: प्रभु।
0: विभीषण के अंत्येष्टि से लौटने तक उनके राज्याभिषेक की तैयारी हो चुकी थी। लक्ष्मण राजमहल पहुंच गए थे। वानर स्वर्ण कलश में समुद्र का पानी ले आए थे। लक्ष्मण विभीषण के पास गए। उन्हें साथ लेकर राज सिंहासन तक आए। सोने का चमचमाता हुआ सिंहासन, रत्नों मणियों जटित। समुद्र जल से उन्होंने सभासदों के सामने विभीषण का अभिषेक किया। अब विभीषण लंका के राजा थे। इस बीच हनुमान अशोक वाटिका से लौट आए। राम के पास उन्होंने कहा,
3: प्रभु, माता सीता लंका विजय का समाचार सुनकर प्रसन्न हुई।
2: हनुमान,
3: वे आपसे मिलने के लिए अधीर हैं।
2: सीते,
0: तब तक विभीषण वहीं आ गए थे। राम उनकी ओर मुड़े, कहा,
2: लंकापति
3: प्रभु,
2: सीता अब भी आपकी अशोक वाटिका में है, उन्हें यहां लाने की व्यवस्था की जाए।
3: जो आज्ञा।
0: वानर सेना चुहल कर रही थी, अटखेलियों में लगी थी। राम का निर्देश सुनकर उनकी उत्सुकता बढ़ गई। सुग्रीव, जामवंत और नल नील भी उत्सुक थे। अंगद को प्रतीक्षा थी। हनुमान को छोड़कर किसी ने सीता को नहीं देखा था। सीता आई तो सबको अपनी कल्पनाओं से अधिक लगी।

एक वर्ष बाद पति से मिलन की प्रसन्नता शामिल थी, कष्ट इतिहास हो गया था।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: आइए अब सुनते हैं दूसरा कार्यक्रम, लेकिन कार्यक्रम से पहले एक खास बात।
2: श्रोताओं, आप जानते हैं कि भारत अब चंद्रमा पर पहुंचने वाला विश्व का चौथा देश और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 की सफलता से सारे विश्व में भारत की सराहना हो रही है।
1: तो इसी क्रम में आइए सुनते हैं चंद्रमा पर ही एक कार्यक्रम, यानी एक विज्ञान गीत।
2: और इस विज्ञान गीत का शीर्षक है चंदा की छुट्टी।

0: तो श्रोताओ, कैसा लगा ये कार्यक्रम चंदा की छुट्टी?
1: जरूर अच्छा लगा होगा, है ना? तो अब हमारे प्रसारण का आज का समय यहीं समाप्त होता है। तो अजीत
0: और विमलेश को,
1: तकनीकी टीम
0: तनु,
1: जगबंधु,
0: मीनाक्षी,
1: कुसुमलता,
0: सौम्या,
1: विकास
0: और मयंक के साथ आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंग

बाहर निकले, दरवाजा जांचे। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड। क्या है खास जानकारी, बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है। फाइबर, कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है। इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से

कठिन से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की, केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन, बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने, केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 FM, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

धरती मेरी धरती। लीजिए प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 28वीं कड़ी, मौसम मौसम लवली मौसम। श्रोताओं, पिछले भाग में आपने जाना कि मॉनसून का मतलब बारिश नहीं होता। हर मॉनसून में बारिश भी नहीं होती। हर मॉनसून के पीछे कुदरत की कई क्रियाएं काम करती हैं। तो लीजिए आगे सुनते हैं विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 28वीं कड़ी, मौसम मौसम लवली मौसम।

0: अरे सृष्टि, ओ सृष्टि।
1: जी मम्मी।
0: ये नल तो बंद कर ना, पानी बह रहा है कब से।
1: अच्छा।
0: और सुन, वो मानव को तो आवाज लगा, सुबह से न जाने क्या कर रहा है छत पे।
1: अरे करेगा क्या मम्मी, छत पर आज बहुत सारी पतंगे आ रही हैं, बस उन्हें इकट्ठा कर रहा होगा।
0: ओ, तो आज भी उसका लवली लवली मौसम है।
1: हाँ मम्मी, सुबह से उसने 5 पतंगे जो इकट्ठी कर ली हैं।
2: अरे भाई, किसके लिए आज मौसम लवली लवली है। अरे हमें तो सुबह से आज चाय भी नहीं मिली है।
0: मैं बस उसी की तैयारी कर रही हूँ।
2: अरे वसुधा, जैसा कि तुमने कहा, मैंने बगीचे का सारा कबाड़ आज साफ कर दिया है। पिछले हफ्ते तो सुबह सुबह ही इतनी गर्मी हो गई थी कि कुछ भी काम करने का मन नहीं किया। तो अब चाय।
0: ओ,
1: तो मानव की तरह आप भी आज खुश हैं।
2: अरे भाई, मौसम ही ऐसा है बेटा।
1: लवली लवली।
3: मानव, आज तो मानव बड़ा खुश है। क्या बात है मानव, ये 5 पतंगों की करामात है।
2: नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, ये मौसम की करामात है। अब मैं बगीचे की सफाई करने की 1 महीने से सोच रहा था, पर मूड नहीं बन रहा था। और आज सुबह सुबह ही उठकर मैंने देखा मौसम इतना बढ़िया है, तो सारा बगीचा भी साफ कर दिया।
0: अरे वाह, आपकी चाय।
2: थैंक यू, यू आर सो स्वीट वसुधा।
0: हाय आप।
2: अरे वाह वाह वाह, आज देखो आपकी मम्मी भी बहुत खुश लग रही है। कल कैसे गुस्सा हो रही थी।
3: अरे पापा, कल आपने देखा ही होगा कि कितनी गर्मी थी, ऊपर से बिजली नहीं। ऐसी गर्मी में आपको चूल्हे के सामने खड़ा होकर खाना बनाना पड़े तो क्या होगा।
2: हाँ वैसे तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये मौसम हमारे तन मन भावनाओं सबको प्रेरित करता है।
1: आखिर ये मौसम है क्या भला।
0: पापा के मूड की तरह, वो जब अच्छा होता है तो कई दिनों तक अच्छा रहता है, और खराब हो जाए तो कई दिनों तक खराब रहता है।
1: तब तो मम्मी का मूड मौसम है और पापा का जलवायु।
2: मुझे क्यों बता रहे हो भाई। वैसे एक तरीके से तुम बच्चे ठीक ही कह रहे हो। जब मौसम बदलता है तो लोगों का मूड बदलता ही है, पर मौसम इतिहास भी बदल देता है।
3: वो कैसे?
2: बच्चों, भारत का इतिहास गवाह है कि शेरशाह ने हुमायूं को हराने में मौसम की भी भरपूर मदद ली थी।
0: और जानते हो बच्चों, हुमायूं ने शेरशाह के बिहार के विद्रोह को दबाने के लिए आक्रमण किया, तो शेरशाह बंगाल की ओर भागता रहा। उसके पीछे हुमायूं भी बंगाल आ गया, तब वहाँ वर्षा हो रही थी।
2: हाँ, और गंगा नदी में भयंकर बाढ़ आने से

0: घातक नहीं होते।
1: बिल्कुल।
0: और ठंडे मौसम में तो कोहरे के कारण सड़क पर दुर्घटनाएं भी ज्यादा होती है ना पापा?
2: हाँ मैडम, पता है एक बार 1952 में लंदन को कोहरे की मोटी मोटी परतों ने ढक लिया और 4 दिन तक ढके रहा।
3: अच्छा।
2: हाँ, और जब कोहरा छटा तो 4,000 के लगभग लोगों की मौत हो चुकी थी।
0: पापा आप तो बुरे मौसम की बातें करके मुझे भी डरा रहे हैं। आज तो मौसम कितना लवली लवली है।
4: मैं भी तो यही कह रही हूँ ना, ये मौसम बदले इससे पहले पिकनिक पर निकल चलो।
2: एक मिनट पहले पूछ तो लो मुझसे।
0: बोलो ना पापा।
5: तो चलो ना भाई।
6: देखो सूर्य प्रकाश, नदी के इस किनारे को हमने पिछले 3 साल में कैसे एक पिकनिक स्थल में बदल दिया है।
2: भाई सुंदर तो बहुत लग रहा है भैया, तुमने सब कुछ कमाल कर दिया भैया।
0: नमस्ते
6: नमस्ते बच्चों, नमस्ते।
2: बच्चों ये है मेरे बचपन के दोस्त डॉक्टर अनुराग।
6: एक बार फिर नमस्ते बच्चों। आओ बच्चों देखो, यहाँ हमने छोटी छोटी कॉटेजेस बना दी है।
2: बड़ी सुंदर है।
6: चलो पहले तुम्हें दिखाऊं कि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं।
3: मैंने सामान गाड़ी से उतार कर कॉटेज में रख दिया है।
2: ठीक है ठीक है ठीक है। और अरे सुनो, अरे वो पकौड़े तो देते जाओ जो तुम घर से बनवा के लाए हो।
0: वो तो मैंने हजम कर दिए
3: रास्ते में।
0: और हजम करके ये कागज और एल्यूमिनियम की पन्नी और खाली पानी की बोतल भी यहीं फेंक दी।
4: मानव कब अपने आप को बदलोगे?
0: मम्मी
4: देखो यहाँ सब जगह कितनी साफ है, हर जगह हरी भरी है, पास में नदी बह रही है। अगर इस जगह पर सभी तुम्हारी तरह कूड़ा फेंकने लगे तो शाम तक ये सुंदर जगह कूड़ेदान बन जाएगी।
6: अरे भाभी जी मानव को डांटिए नहीं। देखो माना बेटा, वहाँ सामने 2 कूड़ेदान रखे हैं।
3: तो उठाओ ये कूड़ा और डाल दो नीले वाले में ये प्लास्टिक की बोतल और अल्मोनियम की पन्नी और कागज हरे वाले में। चल जा फटाफट। अच्छा। जा
7: मानव मैं आ गया।
8: अरे मानव आज यहाँ की सफाई का काम तुमने ले लिया है क्या?
0: अरे गौरव तू यहाँ? लगता है विवेक भैया ने तुझे पहले ही फोन कर दिया होगा।
8: हाँ हाँ विवेक भैया ने मुझे पहले ही फोन कर दिया था।
0: गौरव देखो ये मानव अपनी आदतें बदलता ही नहीं है।
8: सृष्टि दीदी मानव हमारा बहुत अच्छा दोस्त है पर कभी कभी भूल कर बैठता है।
3: कभी कभी
8: पर मानव मैंने सुना है कि आज तुमने 5 पतंगे लूटी है। That's great.
3: गौरव कुछ भी कहो, पतंग लूटने का तो मजा ही कुछ और है।
8: और ऐसी खुली हवा में पतंग उड़ाने का मजा ही कुछ और है। भैया यहाँ जगह भी कितनी खुली खुली है ना।
0: सच गौरव पतंग उड़ाने में मजा आएगा, इसीलिए मैं सारी पतंगे और डोर भी ले आया हूँ।
6: बच्चों पतंग बाद में उड़ाना, पहले कुछ नाश्ता कर लो।
0: नाश्ता?
6: और चाय नाश्ते के बाद मैं तुम्हें यहाँ के वातावरण से अवगत करा दूंगा।
2: वैसे अनुराग यहाँ तो पूरा वातावरण ही बदल गया है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली। ओ, कई पक्षी भी दिख रहे हैं।
6: हाँ भाई हम इसे एक जैव विविधता पार्क के रूप में विकसित कर रहे हैं। हम इस स्थान को एक ऐसे पार्क के रूप में विकसित कर रहे हैं जहाँ लोगों को प्रकृति का नजारा देखने को तो मिले, साथ ही साथ अपने आसपास के वातावरण को भी समझ सके।
3: डॉक्टर अंकल मैंने सुना है आपके यहाँ मौसम संबंधी आंकड़े इकट्ठा करने के यंत्र भी हैं।
6: ठीक सुना तुमने विवेक, ये सभी उपकरण यहाँ लगे हैं। मौसम विभाग के कर्मचारी भी यहाँ दिन में एक बार आते हैं।
2: तब तो तुम्हें भी मौसम विज्ञान की काफी जानकारी हो गई होगी।
6: हाँ भाई मैं भी एक शौकिया मौसम वैज्ञानिक हूँ। यहाँ मैं भी आंकड़े इकट्ठे करता हूँ और उनके आधार पर आने वाले मौसम का अनुमान लगाने की कोशिश करता हूँ।
0: यहाँ भी मौसम की बात। अच्छा अंकल मौसम अच्छा कब और कैसे होता है ये तो मुझे पता चल गया, पर खराब कब होता है?
6: बेटे मौसम कई तरह के होते हैं, जैसे ठंडा या गर्म, सूखा या नम, सुहाना या तूफानी वगैरह वगैरह। परंतु हर मौसम बनता है विभिन्न कारकों की आपसी जटिल क्रियाओं से,
0: और जिनमें शामिल है हवा की गति, दबाव, तापमान, बादलों की उपस्थिति, नमी, हवा।
4: बस बस बस मानव करने लगा परेशान तू अपने अंकल को।
6: अरे नहीं नहीं भाभी, मेरा तो ये शौक है और मुझे ऐसे सवालों का जवाब देना अच्छा लगता है।
0: अगर मैं कहूँ कि वायुमंडल की स्थिति ही मौसम का निर्माण करती है तो क्या ये सही होगा भैया?
3: सृष्टि बिल्कुल ठीक होगा, मौसम से संबंधित सभी क्रियाएं तो वायुमंडल की निचली परत यानी क्षोभ मंडल में ही होती हैं, जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर लगभग 10 किलोमीटर है।

0: और जो ध्रुवों पर और पतली हो जाती है।
1: ठीक कहा तुमने विवेक। अगर देखा जाए तो मौसम के निर्माण में तीन मुख्य कारक हैं।
2: कौन कौन से?
1: सूर्य, हवा और पानी।
3: अंकल, कोई ऐसा तरीका बताओ कि मौसम जैसा आज है वैसा हमेशा बना रहे, यानी लवली लवली।
1: लवली लवली यानी?
3: देखो अंकल, आज सबका मूड कितना अच्छा है और सब खुश भी है। पापा मुझे पढ़ने को भी नहीं कह रहे हैं और आज मम्मी भी घर का काम छोड़कर हमारे साथ आ गई है। क्यों, हुआ ना मौसम लवली लवली?
4: बेटा बेटा, कहीं मौसम एक जैसा नहीं रह सकता। ये कब बदल जाए इसका भी पता नहीं होता। किताब लाओ साथ में
3: पापा।
5: हाँ अंकल, तभी एक मौसम वैज्ञानिक ने कहा है, तितली के अर्जेंटीना में पंख फड़फड़ाने से ध्रुवों पर हिमखंड गिरने लगते हैं।
1: बेटे, इस उदाहरण से वो ये कहना चाहते हैं कि मौसम के निर्धारण की प्रक्रिया कितनी जटिल है। एक छोटी सी घटना कालांतर में किस तरह मौसम को बड़े रूप में प्रभावित करेगी, कहा नहीं जा सकता।
0: यानी अभी मौसम के बनने की प्रक्रिया को वैज्ञानिक पूर्ण रूप से नहीं समझ पाए।
1: कुछ ऐसा ही समझो।
3: पर अंकल, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दो। मौसम बनता और बिगड़ता कैसे है?
1: अरे बेटे, पृथ्वी पर मौसम परिणाम है तापमानों के अंतर का।
3: तापमान में अंतर?
1: हाँ बच्चों, और तापमान में अंतर इस बात पर निर्भर है कि पृथ्वी पर किसी स्थान को सूर्य से प्रति यूनिट कितनी ऊष्मा प्राप्त होती है।
6: तब तो भूमध्य रेखा और उसके आसपास के क्षेत्रों को सबसे ज्यादा ऊष्मा मिलती होगी।
1: लेकिन वहाँ भी सारे क्षेत्र एक जैसे गर्म नहीं होते। भूमध्य रेखा पर सारे क्षेत्र में भूमि नहीं है, वहाँ समुद्र भी है।
0: और समुद्र थल की अपेक्षा कम गर्म होते हैं।
1: हाँ।
0: पर अधिक ऊष्मा ग्रहण कर लेते हैं। सूर्य की रोशनी समुद्र में 600 मीटर तक जा सकती है, पर थल पर केवल कुछ मीटर तक ही।
6: पर थल तो जल्दी ठंडा होता है और जल्दी गर्म,
3: और पानी ना तो जल्दी गर्म होता है और ना जल्दी ठंडा।
1: तभी जितना तापमानों में अंतर थल पर होता है समुद्रों में नहीं।
4: हाँ भाई, साइबेरिया में तापमान -46 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है, परंतु समुद्र में कहीं भी इतना कम तापमान नहीं होता।
3: यानी समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए हमेशा मौसम लवली लवली। अरे वाह पापा, हमें भी अपना घर समुद्र में ही बना लेना चाहिए, तब आपका मूड भी हमेशा ठीक रहेगा।
1: सूर्य प्रकाश,
0: बहुत बढ़िया मानो, बहुत बढ़िया। अच्छा अंकल, अगर मैं कहूँ कि मौसम को सुहाना और खराब करने में हवा का बड़ा हाथ है, तो क्या ये सही होगा?
1: हाँ, क्योंकि वैसे तो मौसम के निर्माण से जुड़े कई कारण अभी भी ठीक ठीक समझे नहीं गए हैं, परंतु हवा एक मुख्य कारक है।
0: अच्छा,
5: तो क्या स्थायी हवाएं जैसे ट्रेड विंड और अस्थायी व स्थानीय हवाओं का मौसम से गहरा संबंध है?
1: बिल्कुल है बेटे, परंतु इसके लिए तुम्हें पृथ्वी पर जो वायुमंडल के विभिन्न संचरण है उन्हें समझना होगा।
3: लेकिन अगर सबका पेट खाली होगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। वो कहते हैं ना, भूखे पेट भजन ना होए।
4: अच्छा जाओ बच्चा, जाओ अपनी मम्मी का हाथ बटवाओ, जाओ तैयारी कराओ, जाओ जल्दी।
1: मजा आ गया खाने का,
3: पर हमें तो पतंग उड़ाने का मजा ही नहीं आया।
1: क्यों?
5: अरे मानव, पहले हवाओं के बारे में समझ तो लो, फिर उसी हिसाब से पतंग उड़ाना।
1: भाई, ऐसी हवाएं जो हमारे मौसम को प्रभावित करती हैं, उन्हें हम तीन वर्गों में रख सकते हैं।
3: कौन कौन सी अंकल?
1: भाई, ऐसी हवाएं जिनका संचार पूरे पृथ्वी ग्रह को प्रभावित करता है।
5: कहीं आप ट्रेड विंड यानी व्यापारिक हवाओं की बात तो नहीं कर रहे?
1: हाँ गौरव बेटे, तुमने पृथ्वी का नक्शा तो देखा होगा, है ना? उस पर एक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है,
3: उसे भूमध्य रेखा कहते हैं।
1: हाँ।
3: इस रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं।
0: बिल्कुल ठीक मानव, और ये क्षेत्र हमेशा गर्म और नम रहते हैं, और यहाँ हमेशा वर्षा होती रहती है।
1: ठीक कहा तुमने विवेक, पर क्या कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है?
5: अंकल मैं बताऊँ? क्योंकि अंकल, यहाँ पर थल और जल दोनों ज्यादा है और दोनों ही गर्म हो जाते हैं।
1: बिल्कुल ठीक, और इस कारण इस क्षेत्र पर जो वायु जल और थल के संपर्क में आती है वो भी गर्म हो जाती है,
3: और गर्म होकर ऊपर उठती है और फैलती है,
1: और ऊपर उठने से वो पुनः ठंडी हो जाती है, और उसमें उपस्थित वाष्प पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है, जिससे बादलों का निर्माण होता है, और इस क्षेत्र में लगभग पूरे साल वर्षा होती रहती है। और मौसम नम बना रहता है।
5: तब तो अंकल नीचे यहाँ कम दबाव का क्षेत्र बन जाता होगा।
6: और इस कम दबाव वाले क्षेत्र को भरने के लिए ठंडी हवा उच्च दबाव क्षेत्र से यहाँ पहुँचती होगी, क्योंकि हवा अधिक दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर गति करती है।
1: और इसी को हम हवा यानी विंड कहते हैं। और ये पवन यानी कि हवा विश्वव्यापी भी हो सकती है, और जैसे व्यापारिक पवने और स्थानीय भी, जैसे जल और थल समीर, है ना।
5: यानी मौसम के मिजाज का पता करना है तो वायुमंडल के दाब का पता कर लो।
1: हाँ बेटे, और जो हवा जिस दिशा से आ रही है उसी के अनुसार मौसम ठंडा, गर्म, शुष्क या नम होगा।
4: अरे तभी तो हवाओं को उनकी आने की दिशाओं से ही जाना जाता है, जैसे पूर्वा या पछवा।
3: हाँ बच्चों, तुम्हारी नानी भी मुझे बताती थी कि पूर्वा हवाएं ठंडी और शुष्क होती हैं और पछवा गर्म तो होती है पर वो शुष्क भी हो सकती हैं और नम भी हो सकती हैं।
6: तब तो अंकल हमें यदि ये पता हो कि पृथ्वी पर कहाँ कहाँ उच्च या निम्न दाब क्षेत्र हैं, तो हम वहाँ के मौसम के बारे में कुछ कुछ अंदाजा लगा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
3: पर उच्च और निम्न दाब क्षेत्र से मौसम का क्या संबंध?
0: अरे भाई मानव, मौसम का मतलब वायुमंडल में हलचल, और हलचल तो तभी होगी जब किसी स्थान पर वायु दाब में अंतर हो।
6: हाँ विवेक भैया, दाब में अंतर होने पर हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहेंगी।
1: बच्चों, भूमध्य रेखा के क्षेत्रों से हवाएं ऊपर उठकर ध्रुवों की ओर यानी कि उत्तर और दक्षिण ध्रुवों की तरफ बहेंगी, और ध्रुवों पर जहां उच्च दाब है वहां से हवाएं भूमध्य रेखा की तरफ बहेंगी।
4: परंतु ऐसा होता नहीं है।
3: क्यों?
4: क्योंकि भूमध्य रेखा पर हर जगह सूर्य की ऊर्जा अलग अलग मिलती है, और फिर कहीं पानी है तो कहीं जमीन, जो सूर्य की ऊष्मा अलग अलग मात्रा में अवशोषित करते हैं। इसके अलावा रात और दिन आदि कई कारक हैं, और इन सबसे एक और बड़ा कारक है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, जो हवाओं पर कोरियोलिस प्रभाव पैदा करता है, जिससे हवाएं अपने निश्चित स्थान पर पहुंचने से पहले ही अपना रास्ता बदल लेती हैं, यानी उसकी दिशाओं में परिवर्तन आ जाता है।
6: तो क्या वे गर्म हवाएं ध्रुवों तक नहीं पहुँचती?
1: पहुँची तो है बेटे, परंतु बड़ी जटिल प्रक्रिया से गुजरने के बाद।
3: जटिल प्रक्रिया मतलब?
4: देखो भाई, भूमध्य रेखा पर हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और फैलती है, और 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के पास कुछ हवा नीचे उतर जाती है। यहाँ उच्च दबाव का क्षेत्र बनता है, परंतु इसकी सारी नमी पहले ही समाप्त हो जाती है, इसलिए इन कम दबाव के क्षेत्रों में मौसम तो शांत होता है परंतु वर्षा कम या बिल्कुल नहीं होती।
3: शायद तभी अमेरिका का दक्षिण पश्चिम इलाका तथा अफ्रीका का सहारा क्षेत्र कम दबाव क्षेत्र में आता है।
0: मानव, इस बेल्ट को जो 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश पर उत्तर और दक्षिण गोलार्ध पर स्थित है, उसे अश्व अक्षांश यानी हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। इस अक्षांश पर शेष हवाएं दो भागों में बंट जाती हैं, एक भूमध्य रेखा की ओर चली जाती है और दूसरी ध्रुवों की ओर।
6: जो हवा अश्व अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर वापस आती है उन्हें व्यापारी हवाएं यानी ट्रेड विंड्स कहते हैं।
0: बिल्कुल ठीक दृष्टि। इन हवाओं को व्यापारी हवाएं इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले यूरोप के जहाज इन हवाओं के सहारे यात्रा किया करते थे।
1: हाँ बेटे, व्यापारी हवाएं भूमध्य रेखा पर पहुँचने पर एक संवहन चक्र पूरा कर लेती है। इस भूमध्य रेखिक संवहन चक्र को मौसम वैज्ञानिक जॉर्ज हेडले के सम्मान में हेडले चक्र कहा जाता है।
6: पापा, भूमध्य रेखा से क्या सभी हवाएं अश्व अक्षांश क्षेत्र तक सीमित हो जाती हैं?
4: नहीं बेटा नहीं, भूमध्य रेखा से कुछ हवाएं उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों तक पहुंच जाती हैं, और भूमध्य रेखा से आई इन हवाओं को पश्चिमी पवन या प्रतिकूल व्यापारी पवन कहा जाता है।
0: और प्रतिकूल व्यापारी हवा मतलब इनकी दिशा व्यापारी हवा के विपरीत होती है।
6: शायद इन हवाओं का कोई व्यापार करने नहीं आया होगा।
1: व्यापार न सही, लेकिन इनकी गति काफी तेज और स्थायी हवाओं में सबसे अधिक होती है।
6: तेज तो अंकल हमारा मानव भी है, लेकिन वो गति में नहीं खाने में तेज है।
3: हाँ दीदी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और मुझे भूख भी लगाई
1: है। अच्छा। लो बेटा, तुम सेब खाओ।
0: हाँ। अंकल सेब तो हम भी खाएंगे।
1: अच्छा बच्चो, तुम सब सेब लो, ये लो ये लो।
4: मैं बच गया भाई।
6: अंकल, मैंने एक पत्रिका में हवाओं के कुछ विचित्र नाम पचासा चालीस, सही से याद नहीं आ रहा, पढ़े तो थे।
0: सृष्टि मैं बताता हूँ, कहीं तुमने गरजती चालीसा, भयानक पचासा और चीखते साठा तो नहीं पढ़े थे?
6: हाँ हाँ भैया, मैंने यही नाम पढ़े थे।
3: लेकिन भैया ये कैसे विचित्र नाम है?
0: मानव घबराओ नहीं, मैं बताता हूँ। जब पश्चिमी पवन तीव्र गति से बहती हुई 40 से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक बनी रहती है तो इसे गरजती चालीसा या रोरिंग 40 कहते हैं।
5: लेकिन हवाओं के अन्य नाम कैसे पड़े?
0: पापा आप ही बता दो।
4: अरे बेटा, जब ये पवन 50 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच होती है तो इसे भयानक पचासा, फ्यूरियस 50s, और 60 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच होने पर इसे चीखते साठा, स्क्रीमिंग 60s कहा जाता है।
6: मुझे तो पता ही नहीं था कि पवन चीखती भी है।
3: अंकल,
1: हाँ
3: आपने जल और थल समीर को स्थाई पवन बताया था ना?
1: हाँ मानव, जल और थल के ऊष्माधारिता गुण में भिन्नता के कारण दिन में पवन जल से थल की ओर तथा रात में थल से जल की तरफ चलती है।
5: इसका मतलब है कि दिन में गर्मी से जल के ऊपर दाब की मात्रा थल के दाब से अधिक होती है
6: और रात में थल के ऊपर अधिक दाब होता है और जल के ऊपर कम, है ना अंकल?
1: हाँ बेटी, ऐसा ही होता है।
4: हाँ।
3: लेकिन अंकल, पर्वतीय घाटियों में तो दिन और रात दोनों समय मौसम सुहाना होता है।
1: हाँ बच्चों, पर्वतीय घाटियों में सुहाने मौसम के लिए हमें आरोही और अवरोही हवाओं को धन्यवाद देना चाहिए जो वहाँ के मौसम को खुशनुमा बनाए रखती हैं।
3: आरोही और अवरोही हवाएं?
0: हाँ।
3: विवेक भैया, कहीं ये गणित के आरोही और अवरोही सिद्धांत की बात तो नहीं है?
0: मानव तू फिर से घबराने लगा।
3: बताओ ना भैया।
0: अरे नहीं, ये आरोही अवरोही तो स्थानीय पवन है।
1: हाँ बच्चों, पर्वतीय घाटियों से पवन का पर्वत की ओर अर्थात ऊपर बहती पवन आरोही पवन कहलाती है। इस प्रकार गर्म होती वायु ऊपर उठती जाती है।
6: अच्छा, इसीलिए दिन में घाटियों में ठंडक रहती है
4: और रात में पर्वत की चोटियां घाटियों की तुलना में तेजी से ठंडी होती हैं। इसीलिए रात में चोटी से ढाल की ओर बहने वाली पवन ठंडी होती है और इन्हें अवरोही पवन कहा जाता है।
1: बच्चों।
6: अंकल, अब बाहर जाकर पिकनिक का मजा भी लिया जाए।
1: हाँ, जरूर।
3: और बाहर जाकर देखें कि कौन सी हवा चल रही है।
1: हाँ बच्चों, अरे हम तो बताना ही भूल गए बातों बातों में कि बाहर हमने टेंट लगा रखा है।
5: अरे मानव, चल बाहर चलकर लवली लवली मौसम का आनंद।
1: हाँ, हाँ, चलो चलो चलो चलो।
2: क्यों डॉक्टर साहब, बच्चों ने ज्यादा परेशान तो नहीं कर दिया?
3: मम्मी, हमने कोई शरारत नहीं की है।
1: भाई बच्चों की मौसम संबंधी जिज्ञासा देखकर तो मेरा मन गदगद हो गया।
6: मम्मी, हम तो लवली लवली मौसम में बाहर बातें करने आए हैं।
2: अच्छा अच्छा, बैठो बच्चों, जरा हम भी तो सुने तुम्हारी लवली लवली बातें।
5: अरे मानव, ऊपर से एक एरोप्लेन जा रहा है।
3: अरे हाँ।
6: मानव चाहे एरोप्लेन में बैठा ना हो लेकिन उसे उड़ते हुए तो देख ही सकता है।
3: अच्छा,
5: अरे बैठना क्या, हो सकता है बड़ा होकर मानव पायलट बने। एरोप्लेन तो क्या जेट विमान भी उड़ाए।
3: अंकल, जेट विमान के बारे में सुनकर मुझे जेट प्रवाह का नाम याद आ गया।
1: बच्चों, धरती की सतह से लगभग 10 किलोमीटर ऊंचाई पर करीब 160 से 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहने वाली घुमावदार पवन जेट प्रवाह या जेट स्ट्रीम कहलाती है।
6: ये पवन किस गोलार्ध में चलती है?
0: सृष्टि, जेट प्रवाह दोनों गोलार्ध में होती है।
4: हाँ, लेकिन बेटा ये प्रत्येक गोलार्ध के 20 डिग्री से 50 डिग्री पर स्थित उष्ण क्षेत्र और 30 डिग्री से 70 डिग्री के ध्रुवीय क्षेत्रों दोनों में बहती है।
5: अच्छा, तो ये जेट प्रवाह वही है ना जिनका गर्मी के दिनों में हिमालय के ऊपर की ओर सरक जाना हमारे देश में मानसून का संकेत माना जाता है।
4: बिल्कुल ठीक, मानसून भी एक तरह की स्थानीय हवा ही है जिसकी उत्पत्ति महासागरों और महाद्वीपों के ताप में अंतर से होती है।
0: पर ये कोई साधारण घटना नहीं है, मानसून तो मौसम की अनेक घटनाओं से संबंधित है।
4: हाँ, पृथ्वी का घूर्णन, पर्वत और अन्य अवरोधों से पवनों की गति मंद हो जाने से मानसून प्रभावित होता है।
3: लेकिन ये मानसून समय का पक्का नहीं है।
4: हा?
3: कभी 10-20 दिन पहले ही आ जाता है और कभी इतनी बाद में आता है।
5: अरे मानव, मानसून तो अप्रैल जून से ही बनने लगता है, जब उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समीप गर्मी पड़ने लगती है।
6: अच्छा, जब हमारी परीक्षाएं खत्म होती हैं, तब ये मॉनसून अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट जाता है।
3: परीक्षाएं? भाई मुझे तो बारिश में नहाना बहुत अच्छा लगता है। वो देखो बाहर बादल छा रहे हैं और हवा भी चल रही है, पर मैं तो बाहर जा रहा हूँ।
6: अरे मानव, ये जेब में क्या लेकर जा रहे हैं बाहर? बिस्किट है क्या?
3: अरे दीदी, बिस्किट नहीं है, बिस्किट का खाली पैकेट है, ताकि हर जाते समय इसे कूड़ेदान में डाल दूं।
4: अरे वाह वाह वाह वाह, लगता है मानव समझदार हो गया। अब मानव कूड़े को इधर उधर न फेंकने का महत्व समझ गया है।
1: भाई ये तो एक दिन मेरे साथ रहने का नतीजा है। भाई अच्छे आदमी के साथ रहेगा तो अच्छे गुण भी सीखेगा।
4: डॉक्टर साहब, अरे हमें तो लगता है कि आप में अपने मुंह में या मिट्ठू बनने का गुण आ गया है।
1: भाई कुछ भी कहो, पर मेरे लिए आज की पिकनिक मजेदार रही। क्यों बच्चों, सही कहा ना मैंने?
3: हाँ, आज की पिकनिक बड़ी मजेदार रही।
2: भाई साहब, आपने पिकनिक को मनोरंजक और शिक्षा प्रद बनाया है,
6: और मानव को लवली लवली मौसम के साथ क्लीन क्लीन बॉय भी।

0: धरती मेरी धरती। अभी आप विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 28वीं कड़ी सुन रहे थे, मौसम मौसम लवली मौसम।
1: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट खड़े हैं रणभूमि में लेकर जागरूकता की तीर कमान, जो ग्रेटर नोएडा से मिटा देंगे टीबी का नामोनिशान। टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है। प्रत्येक टीबी के मरीज को उपचार के दौरान सरकार द्वारा 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं, जिसके लिए मरीज का एक बैंक अकाउंट नंबर और आधार कार्ड होना जरूरी है। स्वास्थ्य सही लाभ कही, टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University. Original credits, album, Heera Panna, singer Kishore Kumar, Lata Mangeshkar, lyricist Anand Bakshi, music director R.D. Burman, aur isi gaane ko recreate kiya gaya hai. So, let's enjoy it. Recreation, credits, artist, Deep Shikha, isi gaane ko recreate kiya gaya hai. So, let's enjoy it. Recreation, credits, artist, Deep Shikha, Rehna, music director Anurag Abhishek. Chali sunte hain, Panna ki tamanna hai, sirf और सिर्फ सुरु शारदा 90.8 FM पर पन्ना की तम

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट हैं 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं

होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की। किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: take Carol Vaz as your lawfully wedded wife?
1: I do.

0: solo Shalva.
1: 94.5.
2: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: अरे हम बोल रहे हेलो कौन, अरे हम बोल रहे हेलो कौन, अरे हम बोल रहे हम बोल रहे हम बोल रहे हम बोल रहे हम बोल रहे
1: सुनो शारदा।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: क्या हुआ बहू? इतनी खांसी?
2: माँजी, मुझे टीबी है.
1: टीबी? और छुपा कर रखा?
2: माँजी, मुझे डर था कि कहीं आप मुझे वापस मायके न भेज दें.
1: जाना तो तुझे पड़ेगा, लेकिन मायके नहीं, डॉट सेंटर. टीबी कोई ऐसी बीमारी थोड़े ही है जो छुपाते फिरें. टीबी छूने, साथ खाना खाने या रहने से नहीं फैलती. टीबी मरीज को जरूरत है आपके प्यार की और डॉट्स के पूरे कोर्स की. टीबी से दूर रहें, टीबी के मरीज से नहीं. याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान.
3: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है. कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है. आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है. राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब. मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है. इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है. और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं. और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय. हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए. जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें. आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं. आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें. तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए. तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें. सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें. धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें. दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें. कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है. कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है. अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM.

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
5: टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी TSS एक दुर्लभ लेकिन जानलेवा स्थिति है जो बैक्टीरिया के शरीर में प्रवेश होने के बाद हानिकारक टॉक्सिन्स के निकालने से होता है। ये अक्सर नव युवतियों में महावारी के दौरान टैंपोन के प्रयोग के कारण भी होता है, हालांकि ये किसी भी उम्र में हो सकता है।
6: ये कुछ विशेष प्रकार के टैंपोन के प्रयोग से बैक्टीरिया के वृद्धि के कारण टॉक्सिन्स के निकलने से होता है।
5: इसके लक्षणों में तेज बुखार, उल्टी, दस्त, मांसपेशियों का दर्द, कमजोरी और चक्कर आना और चकत्ते पड़ना है। ये लक्षण एक साथ आते हैं और समय के साथ बिगड़ते जाते हैं।
6: टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी TSS एक चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति है, इसलिए ये जानना जरूरी है कि इससे बचाव कैसे किया जाए और इसके क्या लक्षण हैं। सही इलाज से ये ठीक हो जाता है।
5: ये लक्षण दिखने पर फौरन नजदीकी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता या ANM से संपर्क करें।
6: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
7: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं, और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सकें। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बता दें। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं, जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं, जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा, और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं, और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव, यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल IQ तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है, जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहां खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: जी हाँ, केवल 45 मिनट के रोजाना योग से दिमाग रहता है चुस्त, मन दुरुस्त और शरीर तंदुरुस्त, वो भी बिना किसी खर्चे के। भारत के इस विज्ञान को अब दुनिया भर के लाखों लोगों ने माना है। आप भी योग अपनाइए और अपने परिवार को भी कराइए।
1: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरी यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा, या यूं कहें कि पिचक जाएगा, या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है, अब बात करते हैं इसी विषय में। पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द

0: राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुनो शारदा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University. शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: नवादा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन, आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।
1: Beautiful track only on Suno Sharda 90.8 FM. So Shart Manzoor, singers Palak Muchal and Muhammad Irfan. Music and lyrics by Sanjeev Chaturvedi. Label Tips Official. So let's listen to it only on Suno Sharda 90.8 FM. So

0: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Hi Priya, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुनो शारदा 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: गच्छ लागे, म्यूजिक प्रोड्यूसर, थिंकर, लिरिसिस्ट अजमेर बलंबिया, म्यूजिक कंपोजर मासूम शर्मा, सिंगर मासूम शर्मा, सॉन्ग नेम इज गच्छ लागे, ऑल योर सुनो शारदा 90.8 FM, सो लेट्स एंजॉय इट।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
2: शारदा। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: बेटा दाई माँ से बात कर लेना, पर सबका समय नजदीक आ रहा है, उन्हें कभी भी आना पड़ सकता है।
1: दाई क्यों माँ, गांव में अस्पताल है, बच्चे का जन्म वहीं कराएंगे।
0: पर बेटा हमारे खानदान में सब लोग दाई के हाथों से ही जन्म लेते हैं, अब ये अस्पताल हाँ। अस्पताल
1: पहले का समय कुछ और था, अब तो इतनी सुविधाएं हैं, बच्चे का जन्म अस्पताल में ही होगा।
2: बिल्कुल सही कह रहा है आपका बेटा।
3: अरे आशा बहू आओ आओ।
2: सुरेश की अस्पताल में प्रसव कराने की सोच एकदम सही है,
4: अस्पताल में प्रसव सुरक्षित और फायदेमंद होती है।
2: जैसे बच्चे का जन्म प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स के द्वारा होता है, प्रसव के बाद खतरे के लक्षण पहचानकर उनका तुरंत इलाज किया जा सकता है, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है ताकि जच्चा बच्चा को कोई संक्रमण ना हो, खून की जरूरत पड़ने पर वो स्थिति संभाल सकते हैं। इसके साथ ही जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर माँ को प्रोत्साहन धनराशि भी मिलती है, और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत अस्पताल में जांचों, दवाओं, एम्बुलेंस, ऑपरेशन, खून और खान पान आदि की भी सुविधा बिल्कुल मुफ्त है।
0: बिल्कुल सही कह रही हो आशा बहू। सुरेश बच्चे का जन्म अब सिर्फ अस्पताल में ही होगा।
2: जी हुई ना बात, तो आप भी समझ गए ना, बच्चे का जन्म सिर्फ अस्पताल में, क्योंकि अस्पताल में प्रसव कराने से फर्क पड़ता है।
5: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्म सिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
7: The world is here.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हवा में फैलने वाला रोग है जो बिना मुंह ढके खांसने से और इधर उधर बलगम थूकने से फैलता है। आप बलगम को कागज के टुकड़े में थूक कर जला सकते हैं या एक राख भरे मटके में थूक कर जमीन में दबा भी सकते हैं। इससे रोगाणु फैलने का कोई डर नहीं होता। अपनी खिड़कियाँ खुली रखें जिससे खूब सारी रोशनी और शुद्ध हवा अंदर आए। ऐसे वातावरण में टीबी रोगाणु ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। और हाँ, अपने इलाज का कोर्स समाप्त जरूर कीजिए। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11666 पर संपर्क करें।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। भाई, जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है। इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुट जाते हैं, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुंचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सबने देखा और जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारा मारी थी, अगर ये ऑक्सीजन हमें क्षण भर न मिले तो सच बात तो ये है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से नेचर का ख्याल रख सकते हैं, कुछ ऐसी ही बातें। यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर अगर आप 5 फल और सब्जियां खाएंगे तो शरीर को भरपूर रूप से मिलेगी आपको एनर्जी। जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कैसे कंट्रोल रखें। लेकिन इससे हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पौधे लगाएंगे, किसी पौधे को सींचेंगे तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा वटवृक्ष का रूप धारण कर लेगा जो कि आगे चलकर आपको ऑक्सीजन देगा ही देगा। इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले कुछ फूड्स के बारे में जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह पानी की जरूरत होती है उसी तरह ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। ये कोशिकाओं को बनाने के साथ साथ उनके बेहतर कार्यों में मददगार होती है। ऑक्सीजन हवा के जरिए शरीर को प्राप्त होता है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है। ऐसे में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ प्रयास की जरूरत है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ खाद्य पदार्थों की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। पालक से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे जानते हैं। पालक स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी होता है। ये न सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है बल्कि इससे आप शरीर में आयरन की कमी को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आयरन की मदद से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बेहतर होता है जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर की मांसपेशियों की मजबूती को भी बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं शकरगंध से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर आप शकरगंध का सेवन कर सकते हैं। शकरगंध एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा स्रोत है। इसकी मदद से आप शरीर के अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत होता है जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बात ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाए एवोकाडो, यानी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में एवोकाडो भी काफी हेल्दी माना जाता है। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है जिससे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार ला सकते हैं। बात नींबू की, नींबू है असरदार। नींबू अगर आप शिकंजी में मिलाकर पीते हैं तो जाहिर सी बात है नींबू यूं कहें कि शिकंजी के बगैर अधूरी है। नींबू अगर आप सलाद में डालते हैं तो सलाद स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू पानी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर नींबू के रस का सेवन करें। नींबू के रस में मौजूद गुड़ शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में असरदार होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम आपके माइंड को अलर्ट रखने में असरदार होता है। बात तरबूज की, जी हाँ, तरबूज गर्मी के सीजन में हर रोज अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा और गर्मी के मौसम में बहुत तादाद में देखा जाता है तरबूज। जी हाँ, तरबूज से ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलती है, कैसे जानते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तरबूज में अल्कालाइन की अधिकता होती है जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और हाँ, नेचर का ख्याल रखें। नेचर का ख्याल रखेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए
1: ग्रामीण और गरीब तबके के मरीजों के लिए 500 बेड समर्पित किए हैं।
0: अब महंगे इलाज और दवाइयों से मिलेगा आपको छुटकारा,
1: क्योंकि सरकारी अस्पताल की तर्ज पर शारदा अस्पताल में आधारभूत जांचें, दवाइयां, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर की सलाह समेत सभी सुविधाएं मुफ्त दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
3: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM,

0: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। मैंने टीवी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा, बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको। इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।